0: अभी आप सुन रहे थे पंडित मधुप मुद्गल का गायन, आपने प्रस्तुत किया राग भटियार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती

अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6:10 और ठीक हमारे स्टूडियो की घड़ी में 20 सेकंड हुए हैं और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के कार्यक्रम वंदना में। दोस्तों, जीवन की हर राह आसान हो जाती है जब भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती है। उनकी कृपा से निराशा आशा में बदल जाती है, कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और मन को सच्ची शांति प्राप्त होती है। आइए वंदना कार्यक्रम में शुरुआत में सुनते हैं इसी मंगल कामना के साथ प्रभु श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, ऐसा ही एक भजन।

इतनी ही कृपा बरसा दो हरि कि जीवन में सभी के सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आनंद का संचार हो। इसी मंगल भावना के साथ आइए सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

मन में भक्ति, वाणी में मधुरता और जीवन में सद्भाव बना रहे, इसी मंगल संदेश के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में भगवान महावीर के दर्शन पर विचार।

इतिहास कहता है ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मां त्रिशला की कोख से राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ। शीघ्र ही उन्होंने घर छोड़ दिया और वर्षों कठिन तप कर एक ऐसे दर्शन की आधारशिला रखी जिसे समझकर अगर आदमी जीवन जीने लग जाए तो सचमुच पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए। जिनेंद्र ने इस पूरे दृग विषय को देखकर 7 तत्व माने हैं। ये हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें जीव अजीव को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य व्यक्त अवस्था का नाम है, अव्यक्त अवस्था का नाम भाव है। अनादि अविद्या के कारण कर्म जीव में प्रवेश कर जाते हैं। जीव के बाद अजीव तत्व के 5 भेद हैं, धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल और आकाश। धर्म के विषय में महावीर कहते हैं वत्थु स्वभावो धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, मगर अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिन अनुशासन के ये 5 महाव्रत हैं। अपने मन, वाणी व शरीर के द्वारा असावधानी से किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, मगर जाने अनजाने हम में से हर कोई हिंसा करता है। करित हिंसा आदमी खुद करता है, कारित हिंसा वह है जिसे आदमी दूसरों से करवाता है। तीसरी हिंसा है अनुमोदन हिंसा, जिसे आदमी होते हुए देखता है मगर कहता कुछ भी नहीं। दूसरे महाव्रत सत्य के विषय में सबसे बढ़िया उदाहरण उनका है जिन्होंने हाथी को सूप, खंभा या रस्सी बताया था। महावीर कहते हैं आदमी का अपनी प्रकृति को पहचान लेना ही सत्य है। और तीसरे महाव्रत ब्रह्मचर्य को साधे बिना सत्य की समझ नहीं होती। चौथा महाव्रत अचौरी है। मन में चोरी का भाव भी अगर पैदा हो जाए तो जिन अनुशासन कहता है चोरी हो गई। परिग्रह यानी संग्रह यानी होर्डिंग का सिद्धांत। तीर्थंकर महावीर को मानव मन की समझ थी, तभी तो उन्होंने अपरिग्रह को 5वां महाव्रत माना। भगवान महावीर कहते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 के कारण आश्रव होता है। अगर आदमी क्रोध, मान आदि छोड़ दे तो भाव और द्रव्याश्रव दोनों से बच जाता है। बाहर से आने वाले हर प्रभाव को रोक देना संवर कहलाता है। जिन अनुशासन में कर्म के प्रवेश को रोकने के 62 उपाय हैं, जो संमितियां और गुप्तियां कहलाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, आश्रव और संवर से जो जीव बच जाता है वो निर्दोष हो जाता है।

भगवान महावीर के दर्शन पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 111।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्या वासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुर वासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

0: रामचरितमानस से बालकांड का भाग 111 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 6:55 मिनट होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं, विद्रोहः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं, शस्त्राणां क्रयविक्रयणं, मानवव्यापारं, वन्यजीवानां क्रयविक्रयणं क्रयणम् इत्यादिनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयीय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता

0: छात्राणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्र में कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार,

सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शाहरुख हसन से भजन। सबसे पहले सुनिए कबीरदास जी की ये रचना।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप शाहरुख हसन से भजन सुन रहे थे और अभी आप सुन रहे थे मीराबाई की रचना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम की पहली पेशकश।

दोस्तों, एक बार फिर बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन आरंभ हो चुके हैं। देश भर में लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ ये कठिन यात्रा तय कर रहे हैं। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। बर्फ से स्वयं निर्मित होने वाले शिवलिंग आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है। आइए हम भी अपने मन में श्रद्धा और दीप जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सफल बनाए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हर घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो।

जी हाँ दोस्तों, जीतेंगे बाजी हम। जी हाँ, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि हालात हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन उन हालात में हम क्या बनते हैं, क्या करते हैं, वो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है कि हम निराश होकर बैठ जाते हैं या उसका डट के मुकाबला करते हैं। जी हाँ, अगर आज हम थक गए हैं तो रुक जाना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से चलना छोड़ देना या उसका मुकाबला करना छोड़ देना, यही असली हार है।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, जैसे दिन की शुरुआत है वैसे ही हमारे जीवन में नई नई चीज़ें आती हैं। हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ नया करने की ठानते हैं, और हर दिन की शुरुआत जो होती है वो एक नया मौका लेकर आती है, और जो कल जो हम हार गए या जो थकान है उससे अलविदा कहकर आगे बढ़ने की राह दिखाती है, और अपने सपनों को नई उड़ान दे ये भी सिखाती है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो सवेरा आता है।

जी हाँ दोस्तों, अगर आज मन थोड़ा भारी है तो याद रखिए कल सब ठीक होगा। और कहते हैं ना कि सूरज को उगने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए होती है, वैसे ही आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना? तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत जो जिंदगी को जीने की राह बता रहा है।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
4: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
4: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप

0: में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे।

0: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाब

0: जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
3: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
2: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
3: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
2: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
2: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
4: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly

0: Moderate rainfall lashed several parts of the national capital this morning, bringing fresh weather and much needed relief to residents. The IMD has predicted cloudy sky with a spell of very light to light rain at many places in the city during the day. In Uttarakhand, the IMD has issued an orange alert for heavy rainfall over the next 36 hours in several districts, including Dehradun. A report.
1: Heavy rains have continued since last night in Dehradun and several other parts of the state. In view of the heavy rain warning, all schools and Anganwadi centers in Dehradun, Champawat, Haridwar and Nainital districts have been declared closed today. The rainfall has affected traffic on several national and state highways in the hill districts. In Bageshwar, highest number of rural roads have been blocked and restoration work is underway. Secretary Disaster Management and Rehabilitation Vinod Kumar Sumant has advised people to avoid unnecessary travel during adverse weather conditions and to stay at safe locations if weather conditions worsen. He has also made a special appeal to Chardham pilgrims to undertake their journey only after checking the latest weather forecast. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: The US launched another round of airstrikes on Iran after President Donald Trump said Iran's latest attacks had effectively ended the ceasefire. US President Donald Trump also accused Iran of attacking commercial ships in the Strait of Hormuz, saying the latest US strikes were carried out in retaliation. On to sports. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarterfinals at the Wimbledon Juniors 2026. The 18-year-old Paparkar defeated Japan's Ryo Tabata 6-2, 6-1 in just 52 minutes in the pre-quarterfinals. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
2: Thank you, Shagun. Indonesia visit concludes. Modi lands in Australia to meet Albanese today, strengthening Indo-Pacific ties. Quad on agenda reads a top story in the Indian Express, while India to help restore Prambanan Temple writes the Pioneer. Financial Express quotes Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan under the headline, July rains 42% surplus, boost Kharif prospects. POK may see flashpoint today, return bodies of 56 martyrs, informs the Asian Age, adding the grim situation and civil rights violations in POK raised international condemnation and protests across the world. Centre intensifies preparedness as El Nino threat looms large, mentions the Statesman. ED freezes Trinamool's 400 crore rupees bank deposits under Prevention of Money Laundering Act, PMLA, informs the Tribune. And finally, a Times of India article titled Summer Push, Durables Eye Double-Digit Growth, informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durable sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Kopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ़ुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकोमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमरीका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
4: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाज़े किया।
4: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
3: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
4: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
3: सीओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में

0: अपने नामानिगार के पास चलते हैं जो वजीर आजम के दौरे के बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वजीर आजम मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है ताकि किसानों के मुफादात का तहफ़ किया जा सके। ज़रात और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमे बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमू घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का

0: तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिला। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली NCR में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोजा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मेहताल अली खां से सितार पर राग अलैया बिलावल, आलाप विलंबित तीन ताल, मध्य लय तीन ताल, द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत कर रहे हैं अख्तर हसन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप मेहताल अली खां से सितार पर राग अलहिया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे अख्तर हसन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
2: कार्यक्रम के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि एक बहुत चर्चित विषय हो गया है। उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं उससे जुड़ी हुई और बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के विषय थे, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्या इनका महत्व गौण हो गया है या उसी की आधारशिला पे अन्य सारी जितने भी विषय आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, वो विकसित हो रही हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो नवाचार का एक माहौल है, अनुसंधान का एक माहौल है, वो किस तरह का है और क्या इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, खास करके कौशल विकास के लिए, खास करके स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। इन सब विषयों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रेरणा गौर। प्रोफेसर प्रेरणा गौर जी डीन हेड हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में, साथ ही ये फाउंडर डायरेक्टर एंड मेंबर सेक्रेटरी भी रही हैं इस विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेंटर के। और आप जो इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन के लिए जो एक अटल इनक्यूबेशन सेंटर की चर्चा है राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भी जुड़ी हुई है। प्रोफेसर प्रेरणा गौर जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्ते, धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं कुछ अपने ज्ञान, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे साझा कर सकूं।
0: सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक चर्चित शब्द है या चर्चित विषय एक उभरा है अध्ययन करने के लिए और उसके उपयोग को देखते हुए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। विश्व के कई विकसित देशों के पास अपना AI मॉडल है, इसमें अमेरिका है, चीन है, भारत भी इस दिशा में प्रयासरत है और उन्होंने नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत रिसर्च फंड के अंतर्गत काफी सारा बजट रखा है ताकि एक इनोवेशन का माहौल बन सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक विकास हो सके। मूल रूप से अगर हम सुनने वालों को बताना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आज के समय में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है, खास करके इसका महत्व क्या है भारत जैसे विकासशील देश के लिए।
1: मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद अपने पिता को पहचानना शुरू करता है और एक महीने के अंदर वो उनको पहचान लेता है। तो उसके बाद वो चाहे अपने शर्ट को बदल के आए, चाहे उनके बाल छोटे हों या बड़े हों, वो पहचान लेगा क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि इस तरह का जो इंसान है वो उनका पिता ही है। तो ये डेटा उसके अंदर फीड हो चुका है। तो ये डेटा ड्रिवन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जो आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे इंजीनियर
0: देश के लिए उपयोगी हो रहा है, खास करके इसमें कैरियर को भी देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज को भी देखते हुए,
1: हमारे इंजीनियर्स हर फील्ड में, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे सिविल इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हर फील्ड में भारत में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी रिसर्च हो रही है। आपने देखा ही होगा मई 2021 में जो हमारे डिफेंस इंजीनियर्स थे उन्होंने एक जगह बैठे बैठे ही विजय प्राप्त की, एक भी क्षति नहीं हुई किसी भी जान की, और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इंजीनियर्स ने किया था। आपने चंद्रयान 3 देखा होगा जो अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री पूरी करके मंगल ग्रह पर उतरा था, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना था। पूरा विश्व चकित रह गया था कि इंडिया भी अब इतना आगे हो चुका है। तो हम यही कहेंगे कि भारत में जितने भी बच्चे अब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं सभी अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मोड़ रहे हैं और अपने आप को जितना भी ट्रेन कर सकते हैं, जितना भी गवर्नमेंट उनको ANRF की तरफ से या DST की तरफ से प्रोजेक्ट दे रही है, बहुत प्रोजेक्ट हैं और डिफेंस सेक्टर में बहुत बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि हमारा 2047 में भारत एक नए मुकाम पर होगा, दुनिया इसका परचम देखेगी।
0: ये एक लक्ष्य भी है जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी यही है कि हमारा देश विकसित देशों के समकक्ष खड़ा हो हर क्षेत्र में। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा, तो इसके आने के साथ क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं अध्ययन के लिए, इनका महत्व गौण हो गया है या और महत्व बढ़ गया है?
1: एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारी कोर इंजीनियरिंग है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे किस पे, हम किसी इक्विपमेंट पे ही लगाएंगे ना, और वो इक्विपमेंट कैसे बनेगा जब तक हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जो रिक्वायरमेंट है और रोबोटिक्स है, रोबोटिक आर्म कैसे बनती है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर रोबोटिक्स में काम करेगा, उसके ऊपर ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगी। तो विदाउट कोर इंजीनियरिंग आई कैन नॉट सी कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज एक प्रोडक्ट पे होती है और वो प्रोडक्ट एक कोर इंजीनियर ही बनाता है, तो कोर इंजीनियरिंग को भुलाया नहीं जा सकता। इसको देखते हुए हमारे कॉलेज में भी और सारे कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, तो हर ब्रांच में बायोमेडिकल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है। तो कोई एक कोर चीज होगी, जैसे आपने डिफेंस में ही ले लीजिए, जो मिसाइल थी, मिसाइल तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही बनाएगा और एक कंप्यूटर इंजीनियर उसको AI से इक्विप करेगा, लेकिन मिसाइल बनेगी तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की हेल्प से ही, तो उसको नहीं बुलाया जा सकता।
0: निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए, उन पढ़ने वाले शोधार्थियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जबकि रोजगार कम होने की बात की जा रही है, लेकिन कोर इंजीनियरिंग के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वगैरह ऐसी चीजें हैं जो AI के साथ ही साथ इसका भी विकास होगा, क्योंकि इसी पे जो बेस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट इसी के आधार पे बन सकते हैं, रन हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो ये किस तरह का है, क्योंकि इंजीनियरिंग

0: तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, DTU है, DU में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई फैकल्टी है, गुरु गोविंद सिंह में भी है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है। तो ये जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी खासियत क्या है, किस किस तरह के महत्वपूर्ण विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं?
1: पहले 1983 में उस समय के चीफ मिनिस्टर ने देखा कि हमारी पॉपुलेशन अब बहुत बढ़ चुकी है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एकमात्र कॉलेज था और एक IIT था, तो वो उतना रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो एक कॉलेज खोला गया DIT, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 1998 में इसका नाम दिया गया नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नई बिल्डिंग का Sector 3 द्वारका में उद्घाटन किया था और 2018 में ये यूनिवर्सिटी बन गई और अब हमारे यहाँ 19 डिपार्टमेंट हैं और इंजीनियरिंग की सारी स्ट्रीम्स हैं और वर्ल्ड रैंकिंग और इंडियन रैंकिंग सिस्टम में ये under 100 है। इसमें 3000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, तो अराउंड 12000 बच्चे टोटल इंस्टीट्यूट में हैं। BTech, BBA, MBA, BArch, BDesign और MTech, PhD सारी स्ट्रीम्स यहाँ रन होती हैं।
0: और इनके प्लेसमेंट रेशियो क्या है?
1: प्लेसमेंट NSUT का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि यहाँ प्लेसमेंट हर बच्चे को कम से कम एक तो मिलती ही है और जो अच्छे बच्चे होते हैं 2 या 3 उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इनका जो पर एनम LPA है वो भी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, तो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए टॉप के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं।
0: बहुत अच्छा, निश्चित रूप से इसके लिए तैयारी भी कठिन करनी पड़ेगी, तभी इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो सकता है। आपके कई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, आपने किताबें भी लिखी है, कई सारे चैप्टर भी आपने जर्नल सबके लिए लिखा है, आपके नाम 4 पेटेंट्स भी हैं, तो ये पेटेंट्स किस चीज के लिए है?
1: जो अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कोई आइडिया होता है, आइडिया के बाद उस पे अगर हम काम करें तो 6-7 महीने में कोई प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है और वो प्रोडक्ट कुछ अगर यूनिक काम कर रहा है, किसी ऐसी एप्लीकेशन के लिए है जो एक नई चीज विकसित हुई है, तो वो टेक्नोलॉजी को हम मार्केट में लाके और सेल भी कर सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को कोई भी एक कह सकते हैं अनएथिकली स्टील चुरा भी सकता है, तो अगर हम उसको पेटेंट कर दें, पेटेंटिंग इंडियन पेटेंट ऑफिस में कर दें या US पेटेंट ऑफिस में कर दें या कहीं पे भी पेटेंट कर दें, तो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास ही रहेगी और हम उससे आगे बिजनेस कर पाएंगे, और अगर हम बिजनेस नहीं कर पा रहे तो हम उसको सेल कर सकते हैं, तो उसको कोई अनएथिकली यूज नहीं कर पाएगा और कोई चुरा नहीं सकता, तो पेटेंटिंग करना बहुत जरूरी है अगर हमारा कोई आइडिया कुछ हम प्रोडक्ट विकसित कर पाए हैं। तो
0: जब आपका पेटेंट किस चीज को लेकर था, किस फील्ड में?
1: मेरे 4 पेटेंट हैं, तो AI तो चारों में ही है, तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इक्विपमेंट था उसमें है और एक कॉपीराइट है, एक आर्टिकल का कॉपीराइट किया था, तो इस तरह से है जो भी मैंने पिछले 4-5 सालों में कोशिश की है पेटेंट कराने की। जी
0: चलिए, बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई आपको, आगे भी आपको इस तरह के रिसर्च एंड पेटेंट के लिए अवसर मिलता रहे। प्रोफेसर प्रेरणा गौर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंस और साथ ही आपके जो नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय के जो आपके कार्य हैं, किस किस तरह के विषय हैं, इन सब बातों पर जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए।
2: नमस्कार, मैं मुकेश कुमार झा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के तहत पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कंपनियों को 4.11 लाख से अधिक गारंटी दी गई है। इससे MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। गारंटी के तहत कुल रकम 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस योजना से भारत के छोटे उद्यमों को काफी लाभ हुआ है। कुल गारंटी में से 98% छोटी कंपनियों और गारंटी की कुल रकम में से 82% हिस्सा MSME को मिला है। ECLGS 5.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न नकदी की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा कर्ज धारकों को 2.55 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जैसे जैसे यह योजना आगे बढ़ेगी, इसकी पहुंच और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश अग्नि एवं सुरक्षा एक्सपो का 5वां संस्करण 10 और 11 जुलाई 2026 को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के हॉल नंबर 1 में आयोजित किया जाएगा। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेफ्टी अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। यह एक्सपो अग्नि और सुरक्षा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन मंच है। यहां लोग उद्योग के प्रमुख विशेषज्ञों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इस एक्सपो का उद्देश्य एक सुरक्षित, स्मार्ट और मजबूत भविष्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। यहां आप औद्योगिक सुरक्षा, आपातकालीन प्रबंधन, आग बुझाने और आपदा प्रबंधन में नई नई तकनीकों और नवीनतम उत्पादों को देख और समझ सकते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने

0: के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी पावर ग्रिड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है। पावर ग्रिड ने JBIC से 80 अरब जापानी येन का ऐतिहासिक ग्रीन लोन प्राप्त किया है। 17 जून 2026 को हुए समझौते के तहत ये राशि खावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना के विकास में इस्तेमाल की जाएगी। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने BSES के साथ मिलकर 29 जून 2026 को नई दिल्ली में विद्युत सुरक्षा दिवस मनाया। इस साल का विषय था आज की जागरूकता कल की रोकथाम। आइए हम सब मिलकर विद्युत शॉर्ट सर्किट से होने वाली आग के खतरे को रोकें। इसका मतलब बहुत सरल है कि आग लगने से पहले जागरूक बनना है। ज्यादातर बिजली से लगने वाली आग को रोका जा सकता है। इसके लिए कोई नई तकनीक या महंगे सामान की जरूरत नहीं, सिर्फ सही जानकारी चाहिए। विद्युत सुरक्षा दिवस 2026 का मकसद यही है कि आज हम जागरूकता फैलाएं ताकि कल हर घर, हर परिवार और हर इलाका ज्यादा सुरक्षित बने। इस कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया। भारत ने रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए पिछले 2 वर्षों में व्यापक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व स्तर पर 35 देशों के साथ रणनीतिक नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें से 24 देशों के साथ समझौते हो चुके हैं और 11 देशों के साथ बातचीत चल रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक जरूरतों, ऊर्जा सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जरूरी खनिजों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि 12,000 करोड़ रुपए से विकसित भारत जी राम जी के तहत राजस्थान के हर गांव का सुव्यवस्थित विकास होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ग्राम सभा से चौपाल तक ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनेगा। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिवराज सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास को नया बल दिया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा द्वारा जारी खुदरा बिक्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में इलेक्ट्रिक कार, दुपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री में देखने को मिली। जून 2026 में इनकी खुदरा बिक्री 107.75% बढ़कर 31,823 इकाई पर पहुंच गई। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को भी NPS में 2 नए निवेश विकल्प चुनने की सुविधा दे दी है। इससे कर्मचारी अपनी जरूरत और जोखिम के हिसाब से बेहतर रिटायरमेंट प्लान बना सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम के जरिए 13 नवंबर 2025 की वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना को NPS के तहत आने वाले सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विकसित भारत जी राम जी के लिए राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का संकल्प था कि 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में बिना किसी व्यवधान के लागू हो। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है और मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है। अब तक किसी प्रकार की तकनीकी और संचालन संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अब देश के लिए किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए प्रति दिन से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले किस्त राज्यों की मांग के आधार पर जारी की गई है और भविष्य में भी इसकी आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाएगा।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: दस्त लगना, अमीबाइसिस, डायरिया, टाइफाइड फीवर, एंटेरिक इन्फेक्शन, वायरल हैपेटाइटिस जिन्हों पीलिया भी कहते हैं, यह वाली बीमारी होने के भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं, तो यह मरीज भी ज़्यादा पाए जाते हैं इस मौसम। तो चौथा हैगा चमड़ी के नाल होने वाली बीमारियाँ त्वचा के नाल संबंधित जड़िया ने, क्योंकि इस मौसम ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, घमूस ज़्यादा है, तो पसीना आंदा है, सुकदा नहीं है, तो उनकी वजह करके स्किन दे विच फंगल इन्फेक्शन दे होने का ज़्यादा चांसिस हो जाता है, जिन्हों असी देसी भाषा कहने दाद खाद खुजली, यह मौसम में ज़्यादा आते हैं, फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा आदियाँ हैं। तो यह जरूरी है कि इस मौसम असी अपने शरीर की सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखिए, तो अपने घर के आस पास भी स्वच्छता बनाए रखिए, सफाई रखिए, जिंदे नाल यह सुहावने मौसम का असी खुशी खुशी अच्छी सेहत दे नाल आनंद लै सकीए।
1: डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं दस्सिया कि सुहावने मौसम का आनंद लैण दे लई जरूरी है कि साडी सेहत जिहड़ी आ तंदुरुस्त होवे, ते इस सेहत दे लई इस मौसम दे विच तुसीं दस्सिया कि चार किस्म दीआं जिहड़ीआं बीमारियां
0: मेजर बीमारियां ज्यादा होंदीआं,
1: जिन्हां चों इक तुसीं दस्सिया कि वायरल इन्फेक्शन हुंदे ने, दूसरा जिहड़ा मच्छर नाल संबंधित ने, ते तीसरा डायरिया वगैरह जिहड़ा कि खाण पीण नाल जां दूषित जो पानी जां खाणा पीणा, ते चौथा तुसीं दस्सिया कि साडे जिहड़े चमड़ी दे रोग
0: जां
1: जे, इहनां नूं वारी वारी आपां मतलब गल करिए, जे आपां पहलां वायरल इन्फेक्शन बारे गल करिए।
0: हाँ, वायरल इन्फेक्शन देखो सब तो ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी हैगी है, यह हवा के जरिए फैलती है, जैसे एक बंदे नूं हो गया इन्फेक्शन और दूसरे के कॉन्टैक्ट च आया, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 जिन्हों स्वाइन फ्लू भी पहले कहते सी, ते फ्लू भी कहते हैं देसी भाषा च, कि इहनूं फ्लू हो गया, फलाने नूं तेज बुखार आया, सिरे च दर्द होई, अखां लाल हो गई, गले च दर्द हो गया, सांस लैण दी तकलीफ शुरू हो गई, ठंड लगती है बहुत तेज, शरीर टुटदा, दर्द होंदी है, ते एक हफ्ता लग जांदा पूरा ठीक होंदे होंदे, ते कमजोरी जांदे आंदे कई बार एक तो दो हफ्ते और लग जांदे हैं। ते इहदे वास्ते जरूरी है कि असी बंद जगह ते भीड़ भाड़ दे जगह ते घट तो घट जाइए, घट तो घट एक दूसरे नूं मिलिए, अगर किसी नूं बुखार है तो जरूरी है कि वह टाइम दे नाल अपना इलाज कराए और बाकी लोगों नाल ना मिले, अगर जिवें कि बच्चे नूं बुखार आ गया है तो माँ बाप नूं चाहिए कि बच्चे नूं घर च रखन, स्कूल च ना भेजन, ताकि बाकी बच्चों नूं यह बीमारी ना होए, क्योंकि यह आस पास बैठन दे नाल ज़्यादा फैलेगी हवा के जरिए, जिवें तुसीं छींक दिता जोर नाल, ते अगर दूसरा बंदा तुहाड़े एक मीटर के दायरे च हैगा तो यह उनके इन्फेक्शन चला जाएगा। दूसरा यह जाता है तुहाड़े जिवें पेन असी शेयर कर लिता, कंप्यूटर शेयर कर लिता, डोर हैंडल टच कर लिता, अगर किसी बंदे नूं बह गया वायरल या सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1, इधर उधर थुकदा फिरदा है, तो दरवाजे के हैंडलों नूं पकड़दा है, पेन पेंसिल असी शेयर करते हैं अगर, तो उनके जरिए भी यह बीमारी जल्दी साढ़े अंदर जा सकती है, क्योंकि तुसीं समझ सकते हो अगर जिस बंदे नूं हैगा सीजनल इन्फ्लुएंजा बुखार फ्लू, उनका पेन दूसरा बंदा यूज़ कर रहा, उनका सैलफोन यूज़ कर रहा, तो उनके हाथे चो कीटाणु लग जाने हैं बैक्टीरिया, वो वायरस उनके दूसरा बंदा जो नक् नूं छूएगा जिवें छूंदा रहिंदा बंदा बारी बारी, तो उनके इन्फेक्शन चली जाएगी। तो यह चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, हाथों नूं धोंदे रहना है और अननेसैसरली इधर उधर चीज़ों नूं नहीं छूना, अननेसैसरी लोगों नाल है पेन पेंसिल सैलफोन यह चीज़ां शेयर ना करा तो ज़्यादा वधिया है, और थोड़ा दूरी बना के रखो, इधर उधर ना थुको अगर कोई बीमार है गया, और अगर कोई बीमार भी आएगा तो मास्क लगा के रखे, तो यह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर, तो असं अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, मोहल्ले को बचा के रख सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं दस्सिया कि जिहड़ा वायरल इन्फेक्शन है एक दूजे तो हुंदा, इस करके जिस व्यक्ति नूं इह हो जांदा है तो उहनूं जिहड़ा है एक तां घर दे विच रहना चाहीदा, मास्क पहनना चाहीदा, ते इस तरह बाकी लोकां दे संपर्क दे विच घट्ट तों घट्ट
0: 5 दिन तक नहीं आना चाहिए, पहले 5 दिन च बीमारी दूसरे बंदे जा सकती है,
1: ते दूसरा इहदा इलाज जिहड़ा प्रोपर करवाउणा,
0: प्रोपर इलाज कराना है, तां सरकार दे जरिए सब दवाइयां फ्री मुफ्त दित्तियां जांदियां, कंसल्टेशन टैस्ट सारे फ्री हैगे हैं, अगर तुसीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी हस्पताल सरकारी डिस्पेंसरी जाके इलाज करा सकते हो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, दूजा जिवें हुण के बरसात दे विच वर्खा दे विच असीं देखदे हां कि जगह जगह ते पानी खड़ा हो जांदा, जदों पानी खड़ा हो जांदा तो उत्थे मक्खी मच्छर जिहड़े ने पैदा हुंदे ने, तुसीं गल कीती सी मच्छरां नाल होण वालियां बीमारियां,
0: हां तुहाडा बहुत ही अच्छा प्रश्न हैगा कि क्योंकि बरसातां च मौसम हैगा पानी इधर उधर ठहर जांदा है, ते इस टाइम ते डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ज़्यादा आउंदे हैं, हुण तुसीं अगर डेंगू दा मच्छर लो एडीज मॉस्कीटो हैगा जिहड़ा, इह ताजे रुके हुए पानी च पैदा होंदा है, जिवें ही बरसात हुई कितने ढक्कन पिया है कि थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, ईवन एक बोतल के ढक्कन ही जब पानी उनके भी अंडे दे देता, तो एक हफ्ते 10 दिन मच्छर बन जाते हैं, एक मच्छर एक महीने च 1,00,000 मच्छर पैदा कर सकता मल्टीप्लाई कर करके, तो बहुत ही जल्दी फैलते हैं।

0: इस मौसम में। तो यह मतलब कहते हैं ना कि अगर एक मच्छर ही चार जगह है डेंगू का वायरस तो उनकी पीढ़ियाँ चो जान चलता रहता है, तो अगले साल भी वो आएगा। तो इस करके जरूरी है कि साढ़े घर के अंदर या घर के छत पर अगर टूटे फूटिया बोतलां डब्बे या पुराने टायर जिंदे पानी इकट्ठा होंगे गमलिया का ध्यान रखन, उन्होंने हर हफ्ते पानी चेंज करना गमलिया च अगर पानी भी है तो। जैसे मनी प्लांट है जो घर के अंदर रखते हैं उनका हर हफ्ते पानी पूरा बदल दिया तो फिर असी मच्छर पैदा होने तो रोक सकते हैं। फ्रिज नीचे की ट्रे हैगी जिमें जरूरी है कि हफ्ते च एक बारी कम से कम तुम्हें चाहिए है कि पूरे घर की सफाई ड्राई डे कहें जिन्होंने कि भाई घर के आस पास घर के अंदर कितने भी छत पर पानी इकट्ठा है तो उन्होंने हटा दईए, क्योंकि अंडे तो जिमें मैं तुम्हें दसिया कि मच्छर बनने ही 7 तो 10 दिन लगते हैं। तो अगर असी हफ्ते च संडे टू संडे भी यह कर देने तो मच्छर पैदा नहीं होएंगे। तो जो डेंगू का मच्छर है 400 मीटर तक उड़ सकता है, तो यह साढ़े घर के अंदर या घर के आस पास ही रहता है, क्योंकि यह जी इनकी फीमेल मादा मच्छर है उन्होंने साडा खून चाहिए ह्यूमन का अंडे देने वास्ते अगे जनरेशन चलाने वास्ते। तो इस करके जड़ी मादा एडीज मॉस्किटो है सानू घर के अंदर आस पास ही दिन के टाइम कटती है तो वारी वारी डंग मारती है। इनका पूरी निशानी है टाइगर मॉस्किटो कहें, जो मच्छरों का काले रंग होंगे तो सफेद सफेद बैंड होंगे उत्ते और टेढ़ा होकर बैठता तो उन्होंने पता चल जाएगा यार जीन्स बैठा तो डेंगू का मच्छर है। तो दूसरी चीज़ हैगी है मलेरिया का मच्छर जो रात के टाइम कटता है, तो मलेरिया भी साढ़े घर के आस पास ही जिते पानी रुकिया उत्थे पानी नालिया इधर उधर पैदा होंगे मच्छर एनाफिलीज, तो उनके नाल भी यह बीमारी फैलती है। तो कहने का मतलब है कि दिन च मच्छर जोड़ा कटदा है उनके नाल तुहानू डेंगू होना है, जोड़ा मच्छर रात को कटूगा अंधेरे चो उनके नाल मलेरिया होना है। तो इस करके मच्छरों तो बच के रहो, तो सवेरे शाम अगर तुसी पार्क ही जा रहे हो या बच्चे खेलन जाते हैं तो पूरी बाजू पूरी पेंट के कपड़े पा टंगा कवर होनी चाहिए, जुराबा पाइया होनी चाहिए, तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम आदि कई लोशन भी आते हैं वो लगा के भेजो ताकि तुहानू मच्छर ना कट सकें, क्योंकि सवेरे शाम सूरज उगन तो 2 घंटे बाद ते सूरज डुबन तो 2 घंटे पहले ज़्यादातर मच्छर तुहानू पार्क के आस पास मिलनगे, क्योंकि इन्हों का मेटिंग टाइम है, सारे मच्छर बाहर आ जाते हैं तो एक दूसरे मिलते हैं तुम उत्थे जाओगे तो भी कट्टे वो। तो इस करके मच्छर तो कटने तो बचाना है अपने आप को, यह गल्लां बहुत जरूरी हैं। घर के दरवाजे उत्थे जालियां लगाओ, शाम को दरवाजे बंद कर दो 5 बजे 4 बजे, क्योंकि यह मच्छर फिर राती वापस भी आते हैं, जिमें सूरज ढलेगा मच्छर थोड़े घर ही वड़ जाने सारे सवेरे भी। तो इस करके इन छोटी छोटी गल्लां ध्यान रखो, और अगर तुहानू फिर भी डेंगू मलेरिया हो गया तो घबराने की गल नहीं है, इन्हें वास्ते तो असी नज़दीकी हस्पताल या डिस्पेंसरी जाके इलाज करवाते हो। तुसी मलेरिया की तो बहुत अच्छी दवाई है साढ़े को, दवाइया बहुत ही इफेक्टिव हैगियाँ, टाइम रहिंदे दवाई मिल जाए तो कोई डर नहीं है, और डेंगू का भी अगर टाइम रहिंदे इलाज करते हो तो भी कोई घबराने की गल नहीं है। लेकिन बेस्ट है कि तुसी मच्छर पैदा ही ना होने दो, मच्छरों तो कट्टन तो बचो, सफाई का ध्यान रखो, सब तो जरूरी गल यही है।
1: डॉक्टर साहब जिवें तुसीं दस्सिया कि मच्छरों तो बचना जरूरी है, क्योंकि मच्छर यह दिन वेले मच्छर कट्टे तो तुहानूं डेंगू हो सकता, जे रात वाले कट्टे तो मलेरिया हो सकता, कहने का मतलब 24 घंटे मच्छर तो खतरा ही खतरा।
0: हाँ, खतरा ही खतरा जी, दिन का मच्छर हो चाहे रात का मच्छर हो।
1: हाँ जी,
0: और शाम के टाइम तो कोई भी कट सकता दोनों ही।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इस तो अगे जी तुम गल की सी खाण पीन की, क्योंकि बरसात के दिनों के कई बार साडा पानी भी प्रदूषित हो जाता है, खाण पीन दीआं चीज़ां जिहड़ियां ने उहनां दे उत्ते मक्खियां बैठदीआं ने, इहदे नाल किस तरह दीआं मतलब कि बीमारियां लग सकदियां?
0: तुहानूं जिवें तुहाडा बहुत ही अच्छे प्रश्न हैगे, देखो असीं देखने आ कि बरसातां च मक्खियां ज़्यादा पैदा होंदियां क्योंकि टैंपरेचर एम्बीएंट है 27 डिग्री 72 डिग्री ह्यूमिडिटी हैगी है, बिल्कुल मच्छर मक्खियां वास्ते वायरस वास्ते भी फ्रेंडली मौसम है बिल्कुल वायरल पैदा होने के लिए। जिवें मक्खियां ज़्यादा हो रही हैं, पानी दूषित हो रहा है, तो जो पानी पी रहे हो वो दूषित ना हो, घर का पानी पियो आरओ वाला या फिल्टर किया हुआ, अगर तुहाडे कोल एक्वा फिल्टर करन दा नहीं है तो कुलरीन की गोली पा सकते हो। जिवें कोई असी देखने 68% साडी जनता गाँव में रहिंदी है, तो उत्थे कई बार बिजली की समस्या तो वह समस्या तो कुलरीन की गोली बड़ी सस्ती मिल जाती है, तो नगर निगम तो फ्री भी मिल जाती है, तो एक बाल्टी 14 लीटर अगर एक ग्राम की गोली डाल दो 1 घंटे बाद पानी पीने लायक हो जाता है। तो दूसरा पानी उबाल के भी साफ कर सकते हो, अगर आप पहले छान के उबाल लो 3-4 मिनट तक उबलता रहना चाहिए पानी ताकि उन कीटाणु ना कोई रह जाए, तो उन्होंने 24 घंटे इस्तेमाल करना है। तो उबले हुए पानी जिंदे बर्तन च उबाल उन ही रहना है, उनके उत्तों डब्बा नहीं पाना, साइड तो पानी डोलना है ताकि अंदर फिर दोबारा वो दूषित ना हो जाए पानी। और दूसरा खान पान का ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाओ, अगर तुसी खाना भी है तो मैक्सिमम 1 दिन फ्रिज रख सकते हो, जैसे आज खाना बच गया तो आज शाम तक या कल सवेरे तक उन्होंने फ्रिज रख के उन्होंने

0: इस्तेमाल कर लो तो जदों उन्हें गर्म करो तो जितना गर्म केक करना है फ्रिज चो उन्ना उन्ना इस्तेमाल करना है, बाकी पूरा गर्म नहीं करना। जिवें तुसीं सवेरे खाना बनाया सब्जी, थोड़ी खा ली थी थोड़ी बच गई, हुण तुसीं राती उन्नी सब्जी निकालो जिन्नी खानी है राती, सारी दोबारा गर्म नहीं करनी है, तो सारी सब्जी फिर दोबारा गर्म करके तब खराब हो जाएगी, दोबारा फ्रिज रखोगे तो। यह छोटी छोटी गल्लां हैगियां, पर प्रेफरेबली अगर तुसीं 24 घंटे सेम डे ताज़ा खाना खाओ, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा ताज़ा खाओ, घर का बने हुआ साफ सुथरा खाना, तो ज़्यादा तुहाडे वास्ते वधिया। लेकिन कई बार मतलब काम ज़्यादा है तो फ्रिज रखता तो शामी खा लेता, उन्होंने ध्यान रखना, ढक के रखना है, ठीक तरह रखना है, और खाना बनाने तो पहले हाथ जरूर धोने हैं, खाना खाने तो पहले हाथ अच्छी तरह साबुन नाल धोने हैं, तो तुहाडे जो नाखून है उंगलियां हैं इन्होंने अच्छी तरह साफ करना है, क्योंकि इत्थे सब तो ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे हैं। बाजार के कटे हुए फल सब्जियां, गन्ने का रस या पानी, नींबू पानी, शिकंजियां जो पीते हैं इन्हें तो बच के रहो, बाजार की खुलिया चीज़ा ना लो, क्योंकि ज़्यादातर उन्हें दूषित होने का ज़्यादा चांस रहा है, तो अपनी बीमारियों न्योता दे रहे हो, टाइफाइड न लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, जो पीलिया जैसी बीमारी है, तो इन्हों सब तो बचने वास्ते जरूरी है कि तुम अपना खान पान साफ रखो, तो पीन का पानी भी साफ रखो, हाथ धोते रहो, सफाई का ध्यान रखो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी दस्या कि किस तरह भी जिहड़ा घर दा जिहड़ा ताज़ा बनया खाना खाना चाहिए, कोई बासी खाना जां इस तरह का कोई बाजार चो जिहड़ा कट्टे हुए फल वगैरह नहीं खाने चाहिए, पानी जिहड़ा है उबाल के पीना चाहिए, जे आरओ वगैरह नहीं लग्या होया तां जां उहदे च क्लोरीन पा लेनी चाहिए।
0: अगर देखो 68% जे प्रतिशत साडी जनता गांव विच रहिंदी है, उन्हां दी अपनी मजबूरियां हैगियां, तां उन्हां वास्ते भी एक तरीका ही होया कि जी फिल्टर करके क्लोरीन दी गोली पाती ते नाल या नू उबाल लिता बच्चे वास्ते, अगर बच्चे नू पानी पिलाना है छोटा बच्चा है तो सफाई और पानी बहुत जरूरी है, खाना पानी दोनों चीज़ें साफ होनी चाहिए, तो हाथ भी थोड़े साफ होने चाहिए जब खाना खा रहे हो, तो उन्हें तो पहले तुम हाथ जरूर धोने हैं खाना खाने तो पहले।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगली तुसी जो गल कीती सी आप चमड़ी दे उत्ते, खास करके जो समस्यावां आउंदियां बरसात दे दिनां च, बरखा दे दिनां च, ते साडी चमड़ी नूं किस किस तरह दीआं समस्यावां आ सकदीआं ने, बीमारियां लग सकदीआं?
0: जिवें तुसीं कह रहे हो बरसातां च पसीना ज़्यादा आउंदा, तुसीं देखिआ होणा, ते पसीना सुकदा भी नहीं है, उहदी वजह है कि जो मौसम है वो ह्यूमिड है, हॉट है, उहदे च नमी ज़्यादा है, वो गर्मी हुंदी है नाल, ते वो जो पसीना आउंदा है वो सुकदा नहीं है, तो उनकी वजह करके जो फोल्ड है स्किन दे, जिवें एक्जिला हो गई तुहाडी, ब्रेस्ट दे नीचे वाला हिस्सा हो गया, ग्राइन वाला एरिया हो गया, तो इन देश की होंदा है कि पानी जब गिले गिले पसीने पसीने रहोगे तो बैक्टीरिया ते और कीटाणु पैदा होंदे हैं, फंगल, उनकी वजह करके तुम देखे होना बरसातें च फंगल इन्फेक्शन जिन्होंने दाद खाद खुजली कहते हैं ज़्यादा होंगी है, तो इस करके नहाना बहुत जरूरी है रोज़ साफ पानी नाल, साबन लगा के, और ज़्यादा पसीना अगर आ रहा है दो बारी भी नहा सकते हो, साफ सूती कपड़े ढीले वाले पाने हैं, टाइट नायलन के कपड़े नहीं पाने हैं, क्योंकि उनके पसीना अगर आएगा तो सुकेगा नहीं फिर। तो दूसरी चीज़ हैगी है कि ज़्यादा गर्मी अगर जा भी रहे हो तो घर आके पूरा नहा धो के अपना, बरसात अगर गिले भी हो गए हो बाई चांस बाहर गए बरसात आ गई गिले हो गए कपड़े, तो घर आके अपना नहा धो के साफ पानी नाल कपड़े बदल के आराम नाल बैठो, यह बहुत जरूरी, छोटी छोटी गलियां आ गई, अगर तुम ध्यान रखते हो तो तुम बीमारियों तो बच सकते हो, और फिर भी यदि दाद खाद खुजली हो भी गई है तो उनका ठीक नाल इलाज होना बहुत जरूरी है। फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होंगे इस मौसम में, पर्टिकुलरली जिन्हों डायबिटीज़ की बीमारी है उन्हें ज़्यादा होगी, या जो अपनी स्किन नू साफ नहीं रखते हैं, त्वचा नू चमड़ी नू नहांदे धोंदे नहीं, गंदे कपड़े, तो उन्हां नू ज़्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत है, हाथ साफ कर रखो, अपने आप नू साफ रखो। कहने का मतलब है कि अगर यह मौसम में असी अपने शरीर नू साफ रखिए, अपने खान पान नू साफ रखिए, अपने घर नू, अपने आस पास जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उन्हू साफ रखिए, तो सुहावने मौसम का असी पूरा स्वस्थ रह के मजा लै सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि साड़ी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, यह भी बहुत जरूरी है, नींद पूरी लेनी है ताकि साड़ा जो प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वैसे बीमार घट पाँगे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं दस्या कि वर्खा रुत्त दीआं जो भी बीमारियां ने, जो भी समस्यावां आउंदियां ने, उन्हां तों बचण दा इक जिहड़ा सौखा तरीका कि सफाई रखना, असीं अपने शरीर की सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखिए, अपना जिहड़ा खाना बनाउने
0: मुहल्ले
1: की सफाई रखिए, तो पूरे मुहल्ले की आस पड़ोस की सफाई रखिए, कितें पानी रुकण ना देईए, उत्ते मच्छर मक्खी पैदा ना होण देईए, तो असी वर्खा रुत्त दे विच जिन्नियां भी समस्यावां आउंदियां सारियां समस्यावां तो बच सकते हैं, सारियां बीमारियां तो बच सकते हैं, तो इस बरसात दे मौसम दा आनंद लै सकदे हैं।

0: बिल्कुल लाना चाहिए।
1: ते ये सारी लाहेवंद जानकारी देन दे ले डॉक्टर साहब तो हरदा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी।
2: सेहत संभाल इस प्रोग्राम च हुणे तुसी वर्खा रुत विच सेहत संभाल विषय ते डॉक्टर सुनील एम रहेजा नाल कीती गलबात सुन रहे सी। इन्हां नाल गलबात कर रहे सन बलविंदर सिंह बराड़। ते हुण सुनदे आ कुछ लोक गीत। लो सुनो उषा सेठ नूं।

माही दूर हसता चे जुल्फां ने नंगियां सूप दिया सुथना ने तेड़ सप रंगियां चिट्टा चक्का ते

रंगली मदानी ओती रेशमी चे पंगना चूड़ा कर छान छान रोला पाया कंगना गोरे गोरे हाथा बिच मक्खन आवे संगना

लोक गीत तुसी उषा सेठ की आवाज विच सुन रहे सी। ते हुण असी तुहानू सुनवा रहे हां ए लोक गीत नी चरखा बोल पिया हर गल नाल भरदा हुंगारे। कलाकार ने प्रकाश कौर ते नरिंदर कौर।

0: प्रकाश कौर ते नरेंद्र कौर दे गाए इस लोक गीत दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
3: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में

0: व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and an energy crisis." He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाई

0: ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी पसंद। मुझे पता है आप सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपके मेल ये चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई जल्दी से हमारा नाम ले लीजिए, जल्दी से हमें शामिल कर लीजिए। तो बिल्कुल आप सबके लिए ही है ये कार्यक्रम, इसीलिए इसका नाम है आपकी पसंद। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कौर, और आपके संदेश तो हमें मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन खूबसूरत से गीत के साथ अगर कार्यक्रम की शुरुआत हो तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये गीत आप सबके लिए ही तो है।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो दोस्तों इस गीत की फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की थी, उनके नाम भी हम शामिल करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि भाई बारिशों का तो मौसम आ चुका है, और बारिश आते ही सबसे पहले हम क्या सोचने लगते हैं, चाय होनी चाहिए, पकौड़े होने चाहिए, और कुछ चटपटा चटपटा सा हमारा जो स्वाद है ना वो होने लगता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि हर मौसम अपने साथ, अपने खूबसूरती के साथ साथ कुछ न कुछ परेशानी भी लेकर आता है। और ये बारिश का मौसम है जनाब, ये भी आपके लिए कुछ तो सौगात लेकर आएगा। एक तरफ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बूंदें जो आप पर गिरेंगी तो आपकी रूह तक तृप्त हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये लाएगी अपने साथ थोड़ी बीमारियाँ। तो उनसे रहना है आपको संभल के, और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको थोड़े से हेल्थ टिप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। वैसे मेरे पास जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपके पास भी अगर इस बारिश से बचने के लिए और इस बारिश के मौसम में बीमारियों से बचकर इस बारिश का मज़ा लेने के लिए कोई टिप्स हो तो ज़रूर बताइए। ipradiodelhi@gmail.com पर मैं कर रही हूँ आप सबका इंतज़ार। फ़िलहाल आप सुनिए इस खूबसूरत से गीत को, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और मुकेश।

आपके लिए एक अमृत बन जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप गंदा पानी पीते हैं और प्रदूषित पानी पीते हैं तो ये पानी आपके लिए बीमारियों का घर बन जाता है। तो इससे बचने का उपाय हमें बताया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज लिखते हैं, बारिश में स्ट्रीट फूड या खुली जगहों पर रखी गई खाने पीने की चीज़ों में दूषित होने की संभावना ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि घर का बना ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। सब्जियों और फलों में कीड़े और बैक्टीरिया चिपक सकते हैं। सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले नमक के हल्के गुनगुने पानी में धोएं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप इस मुश्किल दौर से निपट सकें और इस बारिश का खुल के मज़ा ले सकें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये संदेश हमारे पास जो आया है अगला, ये हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, ये जैन मंदिर वाली कुरावली गली से जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं, प्यारी सिस्टर आरजे आरती जी, आपको प्यार भरा आदाब। तो भाई आपको भी प्यार भरा आदाब। इसके साथ अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने उसी गीत की फरमाइश की है जिस गीत को अभी अभी मैंने आपको सुनवाया है, फिल्म शोर से, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम, मरियम, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता खुराना, रेशु रिदान खुराना, कहते हैं आरती गौर जी नमस्कार, ये साथी यही मीत दर्द काटे गीत, अच्छा ये गीत की फरमाइश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नाइस सॉन्ग पानी रे पानी। तो भाई पानी रे पानी, पानी का सच में अपना अलग ही एक खेल होता है कि एक तरफ नदियों का मीठा पानी और एक तरफ समंदर का खारा पानी, दोनों पानी है लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। इसी तरीके से एक तरफ ऊपर से आती बारिश का पानी, दूसरे तरफ नीचे आते ही जल भराव में गड्ढों में भर जाने वाला वो गंदा कीचड़ वाला पानी। तो पानी तो वही होता है लेकिन वो अपने रूप बदलता रहता है जैसे जैसे वो चीज़ों के साथ मिलता है, लेकिन आप अपने रंग रूप को बिल्कुल मत बदलिएगा, बल्कि आप तो अपने रंग रूप का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए और सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे पानी ऊपर से बहुत सारा बरस रहा है लेकिन उसके बावजूद शरीर में पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिएगा।

चलिए साथ साथ में कुछ संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, राजा दस मानिकपुरी लिखते हैं, आरती दीदी जी, बारिश अपने साथ कुछ बीमारी लेकर आती है जिससे बचने के लिए बारिश में कम भीगे और अपने आसपास पानी जमा ना होने दे व गंदे पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें। भाई बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। आजकल क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर तो हमारा जोर नहीं है, जैसे कि रास्ते में जो जल भराव होता है उस पर तो हमारा जोर भले ही ना हो, लेकिन अपने घर पे अपनों पे तो हमारा जोर चल सकता है ना। तो अपने आसपास गंदे पानी को बिल्कुल भी ना जमा होने दें। अगले जो श्रोता हैं वो हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य कहते हैं आरती जी पानी को उबाल कर ठंडा करके पिए, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। देखिए इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि पानी जो है इस टाइम में गंदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश कीजिए कि पानी को उबाल कर के आप पीजिए, क्योंकि वो जो है बैक्टीरियाज को मार चुका होगा और आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगले जो श्रोता हैं वो हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन और अनब यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, और जुबेर अली खान, सबेहा अंजुमन खान, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये गीत।

0: दोस्तों, बरसात का मौसम अपने आप में एक प्यार का मौसम भी होता है। अपने आप ही पता नहीं कैसे हमारे अंदर जो है चेंजेस आने लगते हैं और हम खुश महसूस करने लगते हैं अपने आप को। लेकिन उस खुशी को जो है वो किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक एडवाइस हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा की। कहते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जी बिल्कुल, याद तो हमने कर लिया है, साथ में आपके एडवाइस बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में सबसे अच्छा विकल्प उबला हुआ शुद्ध फिल्टर किया हुआ पानी है। इससे इस पानी को पीने से फैलने वाली बीमारियों का खतरा कम रहता है। देखिए, इन्होंने भी यही बात बताई है कि एक तरफ तो पानी ही पानी हर तरफ हमें नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें भी पानी से सावधान भी रहना है और उबाल के पानी को पीना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश हमें भेजी है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं किशन वजानी और नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। इसके साथ जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़, रितु सिंह। कहते हैं, बहन आरती गौर जी नमस्कार, बारिश के मौसम में पानी का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये पानी अगर इकट्ठा हो गया तो इसमें डेंगू बुखार के कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं और इससे बचने के लिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पर पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा। उस पानी में कोई ऐसी कीटनाशक दवाई डाल दें ताकि वो मच्छर के अंडे खत्म हो जाएं। और इसके साथ ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, तो गीत तो एक से बढ़कर एक आप सबके लिए हाजिर हो रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, अपने आसपास आप पानी जो है वो जमा मत होने दीजिए, गंदगी जमा मत होने दीजिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया इसी के चक्कर में बैठे होते हैं मच्छर की। बस आपने पानी जमा होने का मौका दिया और वो आ गए आपसे मिलने के लिए, तो बिल्कुल उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनसे दूर रहिए और अपना ध्यान रखिए।
1: अरे अरे अरे ना ना

जी हाँ दोस्तों, बारिश में जितना मज़ा आता है ना, कि बारिश तेज़ हो रही हो और आप उस बारिश में भीग रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए क्योंकि भीगते भीगते पांव फिसल भी सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, बारिश का मज़ा लेने में एक अलग ही आनंद आता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो ये आनंद आपसे दूर भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने संदेशों की तरफ। ये हमारे पास आया है आरती जी, बरसात में अपने खान पान पर खास ध्यान रखें, जैसे बरसात में भाजी सब्जी कम खाएं, गरम खाएं, गरम गरम पानी पिएं। और ऐसा कहना है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल का। साथ ही जुड़े हैं धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो कहते हैं आरती जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, पूरे परिवार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल कीजिए, इनायत होगी। तो भाई ये कहना है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया का। और ये भाई चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। बारिश में चाय अपने आप में कॉम्बिनेशन एक अलग ही बन जाता है, कि एक तरफ संगीत हो, एक तरफ चाय हो, एक तरफ आप खुद हो। अगले जो संदेश में हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं कार्यक्रम आपकी पसंद पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लिखना है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर। और ये जो नगमा आप अभी सुन रहे हैं ये है फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की खूबसूरत आवाज में। साथ ही अब बढ़ते हैं अपने संदेशों की तरफ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, एक नगमा सुनवा दीजिएगा। तो भाई नगमे ही चल रहे हैं और इन्होंने भी एक बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश हम तक की है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ। ये हमें जो संदेश आया है ये लिखने वाले हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापा सैडा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। कहते हैं आरती बहना जी आदाब व नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। और कहते हैं कि आजकल बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में मैं खूब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, रहने चलने और खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो हमारे श्रोताओं के पास भी काफ़ी सारे टिप्स होते हैं बारिश के मौसम में खुद का ख्याल रखने के लिए। अगले जो श्रोता हैं वो हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, ये कहते हैं आरजे साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है। इसके साथ अगले जो संदेश में हमारे साथ शामिल हैं वो भी बार बार अपना संदेश भेज चुके हैं और लेकिन उन्होंने शायद कार्यक्रम को ध्यान से नहीं सुना क्योंकि उनका संदेश ऑलरेडी लिया जा चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह।

तो हमारे एक श्रोता की फरमाइश पर ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये है फिल्म चित्तौड़ से आठ से पहले आठ से ज़्यादा खुशी आज तक मिली नहीं। जी हाँ, मौसम खूबसूरत हो और साथ में आपका परिवार साथ हो, आपके मनपसंद चाय साथ हो, नाश्ता साथ हो, तो फिर अपने आप ही खुशी मिल ही जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ये कहते हैं कि दीदी जी प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, प्रोग्राम में बरसात भरे गीत सुनकर वैसे हम तो भीग ही रहे हैं और इनको प्रस्तुति भी अच्छी लग रही है। चलिए थैंक यू। आगे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे सिद्धार्थ गुणाने कहते हैं भीगे मौसम की भीगी से शुरुआत, भीगी सी याद भूली हुई बात, वो भीगी सी आंखें वो भीगा हुआ साथ, मुबारक हो आपको आज की खूबसूरत बरसात। जी हाँ, बारिश तो आज जम कर हो रही है और उस बारिश में मैं भी थोड़ा भीग चुकी हूँ, लेकिन यकीन मानिए भीगने का ज़रा भी दुख नहीं है क्योंकि एक खुशी अपने आप ही बारिश की बूंदें हमारे अंदर तक दे जाती हैं। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी कहते हैं जल ही जीवन है। और इसके साथ ही आगे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके संदेश ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, उनके संदेश शामिल हो चुके हैं, लेकिन शायद वो कार्यक्रम को ध्यान से सुनना या तो भूल गए या फिर किसी काम में व्यस्त हो गए और उन्होंने अपना नाम नहीं सुना। तो आप सबके नाम बहुत सारे लोगों के लिए जा चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं स्वच्छ पानी उबाल कर पीना चाहिए क्योंकि स्वच्छ पानी ही हमारा जीवन बचाता है, आपकी प्रस्तुति और बेहद लाजवाब गीत सुनवाने की जितनी भी तारीफ करूँ कम होगी। चलिए थैंक यू। और ऐसा लिखने वाले हैं सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया फरुखाबाद यूपी से। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया।

0: आगे क्या होगा?
1: आगे शादी।
2: श्रोताओं, आपके संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास संदेश आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल का। कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खुरवाल साथ में जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता हैं वो भी यही हैं और उसके बाद के श्रोता भी यही हैं, यानी कि ये बार बार अपने संदेशों को भेज रहे हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने झड़ी लगा दी है एक ही संदेश की। तो आप सबसे हमेशा हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने संदेश को एक या दो से दो बार से ज़्यादा मत भेजिए, लेकिन आप शायद शरारतें करने से बाज नहीं आते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ये हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं रामेश्वर कठेरिया और उमा कांति कठेरिया, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। उसके साथ अगले श्रोता जो हमारे साथ आए हैं वो हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में जुड़े हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, किरण ठाकुर, तुलसी मस्कीन जी। साथ में हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं उन्होंने बहुत सारी शिकायतें तो भेजी हैं, लेकिन उसके साथ वो कार्यक्रम को सुनना भूल गए क्योंकि उनका संदेश ऑलरेडी लिया जा चुका है। हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ कुंडाने कहते हैं इस बरसात में हम भीग जाएंगे, दिल में तमन्ना के फूल खिल जाएंगे, अगर दिल करे मिलने को तो याद करना वरना बरसात बनकर परस जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइन के साथ आप सब जो श्रोता हैं इन सब ने इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। बहुत सारी टिप्स हमें बताएं कि कैसे इस मौसम में हमें अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है। और साथ ही मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि बारिश के मौसम का पूरा आनंद लीजिए लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए।

तो श्रोताओं, चलते चलते हम पहुंच गए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि आखिरी गीत पर, और इस गीत के साथ ही आपको छोड़े जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते क्यों ना एक दो संदेश और शामिल हो जाएं, जैसे कि राजू अग्रवाल, केशव मांगेराम चौधरी, ये हमारे साथ जुड़े हैं, अजहर अहमद अलवी, इरशाद अहमद अलवी और शहाना बेगम अलवी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो श्रोता आए हैं वो हैं, आज का प्रोग्राम आपकी पसंद आरती गौड़ की प्रस्तुति प्रसारित किया गया, सभी श्रोताओं के ईमेल शामिल किए गए, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, तो ये अपने आप ही इन्होंने हमारी वाली लाइन खुद बोल दी है। साथ ही हमें एक सलाह भी दी है कि पानी हमेशा ही छान कर पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होते हैं। गाँव चौधरी वास मांगेराम सतौड़, ये है लिखने वाले हैं। फिलहाल ये जो गीत है ये कह रहा है कि आज आपको जिससे भी मिलना है आप मिलने जाइए, लेकिन साथ में जो सामान आप उसके लेकर जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से लेकर जाइएगा, क्योंकि पता है ना कि मौसम बरसात का है, तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सही जगह से सामान लीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर

संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रामबागर निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: for India and Australia to move forward as natural and trusted partners.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है. हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा.
0: India welcomed the $500 million Australian dollar investment from Australian Super announced by the Chief Executive Officer Paul Schroeder this morning in Melbourne. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said that this is another glimpse of the global confidence in India's growth and reform trajectory. He added, it also reflects the immense opportunities that India's dynamic economy offers to global investors. The centre has approved the procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers' Welfare Ministry said this will ensure better price realisation for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. US launched another round of airstrikes on Iran after President Donald Trump said Iran's latest attacks had effectively ended the ceasefire. President Donald Trump also accused Iran of attacking commercial ships in the Strait of Hormuz, said the latest US strikes were carried out in retaliation. The India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh during the day. The waterlogging situation on all major roads in Delhi is under control. Delhi Chief Minister's office said that all concerned agencies are on alert following the directions of Chief Minister Rekha Gupta. It said the Chief Minister has reviewed the situation with officials. The CMO said that the teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground and prepared to deal with any situation. In men's cricket, India will face hosts England in the fourth T20 International at the five-match series at County Ground in Bristol tonight at 10 p.m. India's Arnab Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarterfinals at the Wimbledon Juniors 2026. And that is the end of this news bulletin.
2: स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं, संगीत प्रेमियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. मित्रों, हमारे देश में लोकगीतों का एक विशाल खजाना है. उन गीतों में हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और ऐतिहासिक बातों का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन है, जो पर्व त्यौहार, जन्म, शादी विवाह जैसे विभिन्न अवसरों पर गाए बजाए जाते हैं. तो आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक किस्सा नौटंकी सुनवाएंगे, जिसमें आस्था, निष्ठा और कर्तव्य भी है और रीति विधि भी. यह किस्सा है राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती का. कलाकार हैं शिवराम और साथी. इसे सजाएंगे संगीत से. हारमोनियम पर मास्टर हरिबाबू, नगाड़े पर रशीद, ढोलक पर प्रेम कुमार नागर और बेंजो पर मास्टर चुन्ना. हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल और आकाशवाणी दिल्ली के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं.

मैं क्या देख रहा हूं, मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है। अच्छा, पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं, और अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो मेरे सिंहासन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मुझे मुनिवर विश्वामित्र जी का आह्वान करना चाहिए।

0: भाई संत से आपको भय लग रहा है?
1: महाराज
0: आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं, आपको भय कैसा?
1: मुनिराज मेरी इस चिंता का निवारण कीजिए।

0: राजा इंद्र
1: जी महाराज,
0: आप हमको 3 वरदान दो
1: जी महाराज,
0: और भयभीत ना हो, आप खुश रहो। एक 12 का।
1: कौन कौन से महाराज?
0: एक 12 का और एक नाग का, सर्प का, और पंडित तो हम है ही, मैं देख लूंगा उसको। आप गुणदान सुनिए, बैठिए। लगा के समस्त शक्ति को उसे मैं आजमाऊंगा, अटल भक्ति से सत उसका डिगाऊंगा।

0: भैया मेरा नाम बहरा माली है और मेरी नौकरी लग गई है महाराज हरिचंद के सत्य के बगीचा में। और भैया वो बगीचा की तरफ चलना चाहिए और बगीचा की देखभाल करनी चाहिए। अब मैं बगीचा में जा रहा हूँ भैया। मालर आ रही होगी रोटी लेके। मालर रोटी लेके आ रहा है, बहुत लेट है गई है मालन। दोपहर है गो, मालन अभी तक आई ना है। इतने मालन आवे इतने मैं भैया सो ले हूँ थोड़ी देर।
1: आज तो मुझे भी बहुत देर हो गई है। ऐसा ना हो कि माली मेरे मुंह में झगड़ा हो जाए। भूखो सो रहो बेचारो, बहुत देर हो गई है, जल्दी चलना चाहिए।

सो रो है, बगीचा तो सब रोई उजर गो है। ना स्पीकर तो रोटी खवाऊंगी, रुक जा, सोते रहे वे, सोते रहे, बगीचा को कोई ध्यान ना है, है? ओ बाली, यार बताऊंगी मैं भी क्या हाल हो रहा पूरे बगीचे का, समझाते समझाते हार गई हूँ मैं तो।

0: मालूम तू आ गई का?
1: आ गई दीदन ने फोन ले अच्छी तरह से।
0: रे मालूम इन हाथ ने एक नचा बे रख मोहते काम ले।
1: देख ले कहा ले रो है?
0: कहा है रो?
1: देख तो से अखन ने खोल के।
0: पूरा सगरो बगीचा उजरो पर है। मालूम ये पपीता सबरे फटे पर है का चक्कर है? हाँ। सबरे रोज टूटी पर ये मालूम है ये कैसे है वो?
1: कैसे है वो? हाँ। जल्दी देख क्या?
0: देख क्या हूँ का?
1: जल्दी जा।
0: पूरा मालूम मालूम वो पता लग गो ये बार हाने जा रहा सगरो बाग।
1: वही तो बता रहे।
0: हाँ ला मेरे लठिया ला।
1: अच्छा
0: आ जा देखूंगा बारा। ये लठिया
1: जल्दी जा।
0: जल्दी जा रहा हूँ
1: और मैं भी कॉलम बैठी हूँ।

सबरो बाग उजार के पटक दिया, सबरी रोस तोड़ दई, सबरे फरफरूड़ तोड़ दिए।

बांधता था बाबा के बाबा खुल कर रहा है।

बहरा माली बगीचे में जो नुकसान हुआ है कोई बात नहीं,

शिकार के लिए जाएंगे और उस बाराह को देखेंगे जिसने हमारे बगीचे का नुकसान किया है। जाओ अपनी चिकित्सा करवाओ।

0: धर को भाग। ऋषिराज मेरा शिकार यदि यहां हो के आपने देखा हो तो बताइए कृपया किस दिशा में गया है।
1: राजन आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपका बारा मैंने देखा है या नहीं देखा?
0: जी महाराज।
1: हम बाबा लोग हैं, हम तपस्या से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें क्या मालूम कौन कहाँ गया, किधर गया, कैसे गया। लेकिन फिर भी आपका नाम?
0: दास का नाम हरिश्चंद्र है।

अजय हुआ मेरा। आपका बड़ा दान पुण्य धर्म का बहुत शोर हो रहा है राजन।

0: मुझ पर है कौन सहजो प्रभु के पसंद आई, श्रीमान बस उसी का संकल्प लो कराई।
1: हमको भगत तमन्ना कुंजी लगाम की है, संकल्प कर थोड़े से दाम की।
0: ये आपकी इच्छा है, चाहे सो मांग लीजिए, कुंजी लगाम ही का संकल्प बोल दीजिए। प्रभु आप जैसे
1: जैसे कि यज्ञ जब तक सब राम नाम में है, वैसा ही तेरा वैभव सब कुंजी लगाम में।
0: प्रभु ये आपकी इच्छा है, जो आप मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, संकल्प कराइए आप।
1: करिए राजन, जैसा मैंने सुना था वैसा माया पाया तो अब आचार्य भूपुवर देव दक्षिणा मो।
0: हाँ प्रभु, आपने जो संकल्प कराया है, आचार्य की दक्षिणा होती है, जहां संकल्प किया जाता है वहां यजमान दक्षिणा देते हैं, आप आचार्य हैं।
1: राजन जैसे खुशी खुशी
0: जैसे जैसे मन माना लिया, मांग आपने दान, तैसे ही मांगो दक्षिणा दूं सहज सम्मान।
1: तो दीजिए दीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है, और ऐसे महादान में कमती ना जरा होना है।
0: 60 भार सोना लीजिए लीजिए, मैं दूं 60 भार सोना है, चला बतला दूं खजाने का एक
1: कोना किसका कोना।

से ये पाप हो गया ऋषिराज, क्योंकि मैंने राजपाट का आपको संकल्प देके पूरा राजपाट दे दिया मैंने, पहले तो मेरे पास बचा ही क्या है, ये मुझसे भूल हुई महाराज। सिद्ध

0: अयोध्या नगरी आप पधारे और वहां मेरी महारानी है उनसे कहूंगा मैं, और वो भी सत्यवती है।
1: चलिए राजन, आप कहते हैं तो हम चलते हैं।
0: आइए।
2: प्रणाम माँ।
3: खुश रहो बेटा रुद्राक्ष।
4: मुझे बड़ी चिंता है।
5: क्या है माँ?
4: तुम्हारे पिताजी अभी तक शिकार से नहीं लौटे हैं।
5: हे माँ,
4: बहुत देर हो गई।
5: चिंता मत कीजिए, पिताजी आते ही होंगे।

0: प्रणाम है पिताजी।
1: क्या बात है महाराज, आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, क्या कारण हो सकता है महाराज?

0: मेरा संकल्प करा लिया राजपाट धनधाम का,
1: तो दे दीजिए महाराज।
0: दे दीजिए, मेरे पास ना एक छदाम। हम हमारा क्या है, संकल्प हो गया सब। मेरे पास ना एक छदाम, किस तरह पूरा करूं परण को। ये सत्यवादी मैं, सत को छोड़ूं तो मेरे लगे।

अवश्य होता हमारा धर्म। प्यारे गुंचे दहन उस यतन को बता, किस यतन से अदा होवे ध्वज की रकम।

और तुम्हें पता है मेरे दर से अगर विप्र निर्मुख गया तो मरू मार के गल में तेगे दुदम। ना दिखाने का मुंह अपना।

0: ऐसा है महारानी तारा।
1: राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, मेरे पुरखाओं को दाग लग जाएगा यदि मैं उस ब्राह्मण को वैसे ही भेज दूं, संकल्प वापस ले लूं। बताओ,
2: हमारे पास एक उपाय है।

तो साथियों, आज स्वरांजलि कार्यक्रम में राजा हरिश्चंद्र तारामती का किस्सा नौटंकी आप सुन रहे थे। शिवराम जी भगवान विष्णु इंद्रदेव की भूमिका में थे, रानी तारामती की भूमिका निभाई रानी लता ने। राजा हरिश्चंद्र के रूप में ताराचंद प्रेमी थे, सेठ माली का रोल अदा किया कमल कटिला ने। हुकुम ने पंडित की भूमिका निभाई, कलुक रोल में थे मटूल। ऋषि विश्वामित्र की भूमिका में गुड्डू ने भूमिका निभाई। मलिन के रूप में थी तमन्ना और बालक रोहताश की भूमिका धारा ने निभाई। इस किस्से को सुरों से सजाया हारमोनियम पर मास्टर हरि बाबू ने, नगाड़े पर रशीद, ढोलक पर प्रेम कुमार नागर और बेंजो पर मास्टर चुन्ना। आज का स्वरांजलि कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा था मनीष कुमार आनंद, सुनील कुमार के तकनीकी सहयोग से। प्रस्तुति सहयोग रहा नूतन झा, आर एस मीणा, दिनेश मीणा, विशाल कुमार, दिव्या और रेवती राजन का। कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और इसे आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पराशर ने। हम आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि स्वरांजलि कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को प्रातः 11:10 पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय गायन, वादन, गीत, गजल, भजन, लोक संगीत, गीत, शब्द का सजीव प्रसारण किया जाता है।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।

0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement, along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years, and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA par, तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals.

0: घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कल्पना,
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों और कल्पना तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: मेरा भी नमस्कार। और हमने ये तो बताया ही नहीं कि भाई एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे दोस्त जो है वो हमें सुन सकते हैं, और मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी हमें सुने आप। और हम रोजाना अपने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज भी हम वो प्रश्न पूछेंगे, तो आपको बतानी है
1: जी। बड़ा रोचक सा प्रश्न है, और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और हम सब चाहते हैं हमारे पूरे देश भारत में संतुलित बारिश होती रहे, हमारा जो देश है, हमारा पूरा भारत देश अन्न धन से भरा रहे, है ना?
0: बिल्कुल भरा रहे। और जब बारिश होती है ना तो हमें अपना बचपन बड़ा याद आता है, तो मैं वहीं से एक प्रश्न लेकर आई हूँ, वही मैं आज अपने दोस्तों से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें बताना है कि उनके बचपन की एक मासूम सी शरारत क्या है, और उन्हें
1: और अगर कल्पना वो शरारत थोड़ी मासूम ना हो तो
0: कोई बात नहीं,
1: वैसे शरारत बता दीजिए
0: बस शरारत बता दीजिए। अगर आपको अपनी याद आती है अपनी बता दीजिए, या फिर अपने बच्चों की याद आती है तो वो भी बता सकते हैं आप। बस शरारत आपको बतानी है कि बचपन में क्या क्या आपने शरारतें देखी हैं।

0: और की है, और हमें ईमेल करना है fmgoldg@gmail.com पर।
1: fmgoldg@gmail.com पर हम इंतजार कर रहे हैं आपकी मासूम शरारत सुनने का। और आइए इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं इस खूबसूरत विचार के साथ, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि समय पर समय देने वाले लोग सही समय पर मिल जाए तो समय बदलते भाई देर नहीं लगती कल्पना।
0: बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को हमें संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें ये बताते भी रहना चाहिए कि भाई उनके होने से ही हमारा जो जीवन है ना वो बहुत सुंदर है।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और देखिए, बरसात का मौसम है, ये मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडी फुहारे तो लाता ही है, लेकिन यदि पहनावे का सही चुनाव ना किया जाए तो ये मौसम असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि महिलाओं के लिए तो इस मौसम में ऐसे ही कपड़े चुनना बेहतर होता है जो हल्के हों और जल्दी सूख जाएं, यानी कि कॉटन ब्लेंड, रेयन या ड्राई फिट जैसे जो कपड़े हैं वो आरामदायक रहेंगे। बहुत लंबे घेर वाले जो सूट होते हैं ना कल्पना, जैसे प्लाजो हो या साड़ी का पल्लू, कई बार ऐसा होता है ना बरसात में पानी और कीचड़ में भीग जाता है, तो मुझे लगता है सुविधाजनक पहनावा अपनाना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब हम आगे बात करते हैं फुटवेयर की। जैसे हम कुछ भी पहन लेते हैं तो बारिश के मौसम में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि चमड़े या कपड़े के जो जूते हैं उनकी बजाय ग्रिप वाली रबर या फिर वाटरप्रूफ जो सैंडल और फ्लोटर्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। बहुत ऊंची हील्स या फिसलन वाले जो चप्पल होते हैं वो भी अगर पहनेंगे तो फिसलने का खतरा रहेगा और वो आरामदायक भी नहीं रहती।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कि अच्छी ग्रिप वाली सैंडल आप पहने, ताकि जो भाई बारिशों में ऐसा होता है ना, जो तेल और जो पानी होता है उसका जो मिश्रण बनता है वो वाकई, और अगर खासकर उम्र थोड़ा सा आपकी बड़ी हो महिलाओं की, हाँ, या पुरुषों की भी, तो अगर गिरे और वजन ज्यादा हो तो वो भयंकर कुछ
0: दिक्कत
1: हो सकती है। और इतना भी होना चाहिए, जैसे आप फुटवेयर तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन पैरों का भी ध्यान रखें। बारिश में जब आप बाहर से घर लौटें तो पैरों को साफ पानी से धो लें, अच्छी तरह सुखाएं, और इससे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो उससे आप बच सकते हैं, त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी कल्पना काफी कम हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मौसम कोई भी हो, सही पहनावा और सुरक्षित जो फुटवेयर है वो आपकी सुविधा भी बढ़ाते हैं और आपकी सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। और ऐसे मौसम में अगर आप कपड़े पहनते हैं, दुपट्टा उपट्टा पहनते हैं, तो थोड़ा उसको ढंग से पहनिए, क्योंकि हवाएं जो चल रही होती है बड़ी ठंडी चल रही होती है
1: जी, थोड़ी ठंडक और आर्द्रता हवाओं में आ जाती है, तो ठंडी हवाओं से थोड़ा सा मजा भी लें और बचें।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम नगर फिल्म से, और जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और कल्पना, जो प्रश्न हमने पूछा था, बचपन की मासूम शरारत, ये हमारे पास ईमेल्स आने लग गई हैं। भास्विता हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई उन्होंने क्या किया कि बचपन की शरारत जो है वो आलू ज़मीन में खोद कर लगाया था और फिर उसे रोज़ खोद खोद कर देखती रही कि आलू आए कि नहीं, और साथ ही उन्होंने 50 पैसे भी ज़मीन पर दबा के रखे थे कि शायद उसका पेड़ आ जाएगा, पर पेड़ तो नहीं आया, पर वो पैसे भी चले गए, तो वो भूल गई, बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ। वाकई ये तो बहुत ही मासूम शरारत है, छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल जी हमें लिखते हैं कि मेरी उम्र उस समय शायद 14 साल रही होगी, भांजा घर आया हुआ था, उसका जड़ूला नहीं उतरा हुआ था, उसके बाल इस कारण बड़े हुए थे, मैंने चाबी वाले हेलीकॉप्टर खिलौने में चाबी भरकर उसके सर पर रख दिया और उसके बाल उलझ गए, जैसे जैसे भैया ने सुलझाना चाहा बाल खींचने के कारण वो बहुत रोया। हाँ। मेरी बहुत पिटाई हुई होनी थी फिर तो।
1: जी बिल्कुल। और नवीन भाटिया जी कह रहे हैं कि 9th में था और घर से निकला था, दोस्त के घर जा रहा था और फिर बारिश में भीगते भीगते साइकिल में काम, जिसे कहते हैं ना, 1 घंटा घूमता रहा, खूब भीगा, खूब नहाया, और मुझे लगता है उसके बाद तो शायद घर में पहुंचे होंगे, जुकाम वगैरह तो घर में डांट भी पड़ी होगी, भाई ये कहां से क्या कर रहे थे तुम बारिश में, है ना।
0: सही है, शरारतें चल रही। तो एक शरारत भूमिका शुक्ला ने लिख के भेजी है कि भाई मैं पढ़ने में थोड़ी वीक थी, तो जब मेरे पेपर स्टार्ट होते थे तो हमारे चाचा जी जो हमें पढ़ाते थे वो मेरा पेपर चेक करते थे, तो मैं उनके आने पर सोने का नाटक करती थी ताकि वो मुझे कुछ डांट ना पाए और अच्छा, कुछ पूछ ना पाए मुझसे।
1: और देखिए एक और मेल आया है, राधा वासुरोहिणी से कह रहे हैं कि मैं तो बारिश होते ही कागज की नाव बनाकर सड़क पर भरे पानी में तैरने डाल देती थी, और मेरी जब शादी पक्की हुई, अच्छा, उसके बाद भी जब बारिश हुई तो मैंने कागज की नाव बनाई, तो सब मुझ पर बहुत हंसे, आज ही मुझे कागज की नाव बनाने का बहुत शौक है। भाई ये शौक तो मुझे भी है कल्पना।
0: बिल्कुल सही है। और हमारे अन्य श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी वास जिला हिसार हरियाणा से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष और विवेक प्रियांशी, वो सब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम हमारा अच्छा भी लग रहा है। और उनसे ये भी कहना चाहूँगी, और हमारे जो अभी नए जो अन्य श्रोता जुड़े हैं उनको भी बताना चाहूँगी, हमारा जो प्रश्न है कि भाई आपको अपने बचपन की जो मासूम शरारत है वो हमें लिख भेजनी है, हमें ईमेल करनी है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: तो जल्दी से लिख भेजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी ईमेल्स का।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।
1: और कल्पना, मेल्स लगातार हमारे पास आ रही हैं। आप हैं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि प्रकाश गोगिया करकरडूमा दिल्ली से कह रहे हैं, हमारे समय में स्कूल में स्याही कलम और तख्ती का प्रयोग होता था और हम अपने आगे बैठे हुए छात्र मित्र पर की कमीज पर स्याही डाल देते थे और बड़े मासूम से बनकर चुपचाप वहां से 3-4 बच्चों के पीछे जाकर बैठ जाते थे। भाई प्रकाश जी, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत शरारती रहे होंगे।
0: बिल्कुल। और नवीन कुमार भी जी ऐसे कुछ लिखते हैं कि बचपन में हम दोस्तों के साथ खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाते थे, टॉफी बिस्कुट और नमकीन बेचते थे। ग्राहक आते तो सामान देने में बहुत खुशी होती थी, कमाई से ज्यादा मजा दुकान चलाने और दोस्तों के साथ बिताए उन सुनहरे पलों में आता था, पर इसमें शैतानी तो कोई थी ही नहीं।
1: उमेश कुमार ख्याल ऐसे कह रहे हैं कि बचपन में हम स्कूल से भागकर खेलने निकल जाते थे और जब स्कूल आते थे तो कुछ भी बहाना बना देते थे। भाई देखिए, ये तो शरारत सही नहीं है ना। स्कूल तो बच्चों जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये भी करते हैं शरारत बच्चे, कम से कम खेलने के लिए की अच्छी बात है।
0: और ये देखिए, चरण दास जी ने भी ईमेल किया है कि बचपन के दिन याद करने से आधी बीमारी कम होती है। हम स्कूल में कपड़े का बैग लेकर जाते थे, उन्हें पूरी क्लास के बैग के साथ बांध देते थे, किसी की कमीज के साथ बांध देते थे। ऐसे ही हम शरारते करते थे, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार पहुंच भी जाता था।
1: अच्छा, और मधुकिरण दिल्ली से कह रही है कि बरसात के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ डेस्क पर बैठने वाली जगह पर कीचड़ लगा देती थी, अरे, और इस वजह से स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, परंतु एक बार किसी ने देख लिया और हम चारों सहेलियों की खूब पिटाई हुई, और वो दिन आज भी याद आता है तो मन रोमांच से भर जाता है। भाई वाह मधु जी, मतलब आप भी काफी शरारती थी बचपन में। और एक और मेल आया है हमारे पास, सुशील पठानिया नादौर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं अभिनंदन। और वो कहते हैं, मैं बहुत शरारती था, एक बार मैंने मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद कर दिए और पत्थर को धीरे से तोड़कर बड़ा कर दिया और दादाजी से बहुत मार पड़ी, प्यार वाली मार पड़ी, क्योंकि छेद पड़े मिट्टी के घड़ों को किसी टूटे घड़े का छोटा टुकड़ा देकर सीमेंट के साथ जोड़कर ठीक हो जाते थे। भाई मार थोड़ी बहुत बच्चों को पड़ती रहती थी उस समय तो, है ना, और वो बड़े प्यार से प्यार भरी मार होती थी, उसमें ममता भी होती थी उस मार में।
0: बचपन में तो शरारते करो तो मार तो पड़ती ही थी, लेकिन वही जो मार है, वही जो अनुशासन जो बनता था, उससे ही हम आगे बढ़ते थे।
1: और महेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए, वो कह रहे हैं, नमस्कार, मुझे अपनी शरारत जो है वो बस ये याद आता है कि मैं फुटबॉल खेलता था और अक्सर मुझे चोट लग जाती थी, तो फुटबॉल खेलते हुए तो फिर ऐसे में पिताजी जब डॉक्टर के पास ले जाते थे तो वहाँ कहते थे कि बहुत शरारत करते हो। मुझे याद आता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मुस्कुराते थे और मुस्कुराकर बोलते थे, तो यानी कि उस शरारत में भी आपको शाबाशी ही मिल जाती थी, है ना, जब वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते
0: थे। बिल्कुल सही बात है। और आपने जब शाबाशी की बात की है तो एक जो शाबाशी की बात है वो हम भी करना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: आज बात करेंगे। कहते हैं कि सुई धागा जो है वो केवल कपड़ों को ही नहीं जोड़ते बल्कि संस्कृति और परंपराओं को भी पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी कला के बलबूते अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री 2026 तृप्ति मुखर्जी की।
1: भाई अभी इससे पहले तुमने बताया था कि पहनावा कैसे होना चाहिए और यहाँ पर पहनावे के सजावट की बात हो रही है, तो तृप्ति मुखर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई कलाकार हैं। उन्होंने 37 वर्षों से इस पारंपरिक लोक कला को संजोने और नई पहचान दिलाने का कार्य किया है, और हम तो कहेंगे उन्होंने जो देश विदेश तक इस कला को पहुंचाया है, तो हजारों ग्रामीण महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है।
0: बिल्कुल, और उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2026 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान केवल एक कलाकार का नहीं बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और महिला सशक्तिकरण का भी सम्मान है।
1: भाई कांथा की साड़ियां तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे पास भी है कांथा की साड़ियां, और इसकी जो कढ़ाई होती है ना कल्पना, वो बड़ी मनमोहक होती है, बहुत सुंदर लगती है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे।
1: क्या बात है, वाह।

0: थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोंसले जी की आवाज में।
1: और एक और ईमेल आ गई है, मांगेराम पारिक नुइया वाली सिरसा से कह रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं गीतों की, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारा जो विषय है आज का बचपन की मासूम शरारत, उस पर कुछ दो लाइनें लिखकर जरूर हमें भेजें। और इसके साथ एक और मेल है अमीन खान, वो कह रहे हैं सोरोनी सेक्टर 5 से, कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर पानी में चलाना बहुत अच्छा लगता था, बरसते पानी में उछल उछल कर मैं नहाता था। तो भाई नावों का मौसम आ गया है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक ईमेल और आ गया है हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का, और वो लिखते हैं कि 1969 की बात है, हम चार दोस्त अमरूद के बाग में जाते थे, माली के लड़के को 10 पैसे दे दिया करते थे, माली बाग में आता जब वह सीटी बजा दिया करता था हम भाग जाते थे। अच्छा। एक दिन माली ने सोचा कि मैं जब आता हूं तो मेरा लड़का सीटी क्यों बजाता है। एक दिन माली ने एक दोस्त को पकड़ लिया और फिर सब इकट्ठे हो गए, और जब वह बाग हमारे पड़ोसी का ही था और फिर जब हम भागे तो हमें उस माली ने पकड़ा और पकड़ के हमारी धुनाई कर दी।
1: और यहां पर मैं एक और जरा जो सावधानी है वो बताने जा रही हूँ, डॉक्टर जो राजेश राव है वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज गुरु दत्तात्रेय जयंती है और हम आज के दिन ये मनाते हैं, और ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं, खाली जगहें होती हैं, खाली गलियां होती हैं और ध्यान नहीं देते, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और बहुत ध्यान से चलें, फुटपाथ पर चलते हुए ध्यान दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है तो उसमें भी ऐसा ना हो आपका कहीं पाँव पड़ जाए। तो बारिश में ये भी सावधानी की ज़रूरत है। तो ये सारी शरारतों के बीच हम कह रहे हैं ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कल्पना
0: शरारतें तो करें ही लेकिन सावधानियाँ भी रखें थोड़ी सी। और आपने एक ऐसी बात की, इसके बाद मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ। एक ईमेल और आया है, धर्मेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि एक बार मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, मेरे घर फूफा जी आए हुए थे, कथा के बाद प्रसाद पाया पंजीरी वाला, फूफा के सामने फूफा बोलकर पंजीरी उड़ा।

0: दी फूफा के मुंह पर। फिर मम्मी ने दो बेलन चुका दिए।
1: भाई ये तो होना ही था, फूफा। ओहो मैं समझ गई। अच्छा तो ऐसी ही एक मेल हमारे पास रोहिणी से सोनाली लिखती हैं कि जब मेरा बेटा 2 साल का था तो एक दिन बड़ी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आई तो चिंता की विषय हो गया और उन्हें तनाव हो गया क्योंकि वो बड़ा शरारती था। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद आखिर में वो मिला कहाँ पता है? रसोई घर में आलू प्याज के ढेर के बीच में बैठा हुआ था। सब तरफ आलू प्याज बिखरे हुए थे और वो उनके साथ खेलता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था और फिर टोकरी उठाकर सब्जी वाले की नकल करने लगा। ऐसे में तो मैं उसे क्या ही डांटती, मैं लाड से हंस पड़ी। भाई वाह,
0: बिल्कुल सही बात है। मम्मियां तो बच्चों की शरारतों पे मुस्कुराती ही हैं
1: जी, वारी वारी जाती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे और श्रोता जैसे सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हमारे जो अन्य श्रोता है वो भी हमसे जुड़े रहे और हमें ईमेल करते रहे, अपनी शरारतें बताते रहे fmgoldga@gmail.com पर
1: जी।
0: और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। यदि आपको
1: काफी देर से हम लोग बोल रहे हैं तो हम बताएं।
0: बिल्कुल, जानकारी भी तो देनी है अपने दोस्तों को। तो पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे और हमारे बहुत से दोस्त हैं जो मंच पर जाते हैं लेकिन मंच पर जाने से पहले घबराहट होती है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। लगभग हर अच्छे वक्ता ने कभी ना कभी स्टेज फियर का सामना किया है। आज हम बात करेंगे इसी को कम करने के कुछ असरदार उपायों
1: जी। बिल्कुल, तनाव में ना रहें, पूरी तैयारी करें, अपने विषय को अच्छी तरह से समझ लें, शुरुआत और अंत की पंक्तियां याद रखें ताकि आत्मविश्वास बना रहे, बार बार उसका अभ्यास करें। पहले ऐसा करें कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और सुने। हम रेडियो वाले ये करते हैं ना, कितनी बार ना कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर खुद ही सुनते हैं और खुद ही डायरेक्टर होते हैं और खुद ही एक्टर होते हैं, और उसके बाद परिवार और दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मंच पर जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको 4-5 बार गहरी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ना है, इससे घबराहट कम होती है। और आपको धीरे धीरे बोलना है, स्पष्ट बोलना है, बहुत तेज यानी स्पीड में बोलने की कोशिश नहीं करनी है। यदि 1-2 सेकंड का विराम भी लेना पड़े तो बिल्कुल सामान्य है। श्रोताओं को अपना साथी समझें, ये ना सोचें कि लोग आपकी गलती ढूंढेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी परीक्षा लेने कोई नहीं आता
1: जी। और छोटी शुरुआत करें, पहले छोटे छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़े मंच पर जाने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और याद रखें, गलती से बिल्कुल डरना नहीं है। अगर कोई शब्द छूट जाए या थोड़ा रुक जाए तो मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। और अधिकांश श्रोता ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कल्पना, कि आत्मविश्वास को लेकर कोई मंच पर नहीं जाता बल्कि मंच पर बार बार जाने से आत्मविश्वास आता है।
0: क्या बात
1: जी। और जब आप आत्मविश्वास से कुछ बोलेंगे ना तो देखना पूरी दुनिया को आपकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, है ना।
0: और आपने अच्छी बातों की बात की है तो अब हम दोस्तों को एक अच्छा सा गीत भी सुना देते हैं
1: जी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के, फिल्म से आवाज़ लता मंगेशकर की।
1: और कल्पना, एक और मेल मेरे पास आई है। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कह रही हैं कि एक बार घर में मेहमान आने वाले थे और माँ ने बड़े प्यार से मिठाइयाँ बनाकर डिब्बे में रख दी और सख्त हिदायत दी कोई मिठाई नहीं खाएगा। लेकिन भाई मिठाई की खुशबू से सब्र कहाँ होता, तो मैं और मेरा भाई हम चुपके से उठे, हमने रसोई में पहुँचे और मिठाई खा ली और फिर लगा कि डर गए कि कम दिखेगी तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिब्बे में रूई भर दी और ऊपर से मिठाइयाँ सजा दी। जब मेहमानों के सामने डब्बा खुला तो मेहमानों मिठाइयों के नीचे रूई देखकर सब हैरान रह गए। माँ ने हमें देखा और हमारी झुकी हुई नजरों ने सारी कहानी बता दी। पहले तो माँ नाराज हुई, फिर हमारी मासूम हरकत पर खुद ही हंस पड़ी। भाई वाह। और एक और मेरे पास संदेश आ गया है, आप है गुड़गांव से जितेंद्र। वो कह रहे हैं कि पापा की बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमना किसी रोमांच से कम नहीं होता था। दो कदम चलते थे, फिर तीन बार फिसलते थे, खुद को बहुत बड़ा समझते थे। घर वाले हमें देखकर हंसते थे, हम पूरे रौब से कहते देखो मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। कहते हैं ना कि अगर पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे तो वो बड़ा हो जाता। तो ऐसा ही कुछ जितेंद्र जी कहना चाह रहे हैं ना।
0: बिल्कुल सही बात है, और इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वे कहते हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन्हें कहने के तरीके से भी होती है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने से बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है।
1: जैसे हम सब जब परिवार की बात करते हैं तो भाई प्यार और सम्मान ही तो रिश्तों की नींव होती है। भाई एक पल का गुस्सा और कठोर बातें वर्षों का अपनापन भी आहत कर देती हैं। बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का आत्मविश्वास खत्म हो सकता है। इसलिए अपनी बात को ना कल्पना हमेशा शांति से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम जैसे अस्पताल में जाते हैं तो हमने कई बार देखा है कि लोग डॉक्टर्स पर भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनसे बस यही कहना है कि भाई उससे कुछ बदलता नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे होते हैं, बल्कि आप उन पर गुस्से में चिल्लाकर अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। अस्पताल में भी धैर्य और संवेदनशीलता की बेहद ज़रूरत होती है, तो वही बनाए रखें।
1: और सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, यदि आप कभी इस प्रकार का मौका पड़ जाए कि पुलिस से कभी बात करनी पड़े, सामना हो जाए, भी ट्रैफिक में आप कभी हो सकता है रेड लाइट क्रॉस कर जाए, तो पुलिस के सामने भी फिर शांत रहकर अपनी बात रखें, वो ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है क्योंकि वो भी हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोगों को ना कल्पना सड़क पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और फिर कई बार बहुत अनचाही घटनाओं की वजह भी वो सब बन सकता है, तो इसमें क्या होता है, नुकसान अपना ही होता है ना।
0: बिल्कुल सही है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो अपनी आवाज़ नहीं अपने धैर्य को ऊँचा रखिए, क्योंकि संयम से लिया गया एक सही निर्णय कई परेशानियों को आने से पहले ही रोक देता है।
1: तो याद रखिए, ऊँची आवाज़ नहीं बल्कि ऊंचे विचार और व्यवहार आपको बेहतर पहचान दिलाते हैं, है ना।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं गोरा और काला फिल्म से लता और मुकेश की आवाज़ में। और देखिए, हमारे एक श्रोता ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि नमस्कार जी, एफएम गोल्ड पर घर आंगन जैसा बेहतरीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए गोल्ड के अधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एफएम गोल्ड के समस्त पुराने श्रोता सत्य प्रकाश गोयल, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, स्वामी अनिल त्यागी, प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, किशन वंजानी, दिल्ली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल एफएम गोल्ड के साथ। और चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ कि भाई जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा स्कूल जहाँ ना कोई फीस हो, ना कोई बड़ी इमारत, ना ब्लैक बोर्ड, ना बेंच, ना डेस्क, और सबसे दिलचस्प बात, जहाँ कक्षा नदी के बीच लगती हो। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना
1: जी? मुझे लग रहा है कि बरसात की बात हो रही है तो तुम कुछ ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ पे भाई नदी, यानी बरसातों में तो नदियों में पानी बढ़ जाता है ना, तो तुम किसी कौशल की बात करने जा रही हो नदी में? मतलब मैं नहीं बोलूंगी, तुम ही बोलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जिक्र तो कर रही थी, आपको याद है तो आप बताओ ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको।
1: भाई ये कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की एक प्रेरणादायक पहल है ना। तो जो केरल के अलपुझा जिले में एक अनोखा स्विमिंग स्कूल चलाया जा रहा है, यहाँ बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को निशुल्क तैराकी सिखाई जाती है। इस स्कूल की कक्षा किसी कमरे में नहीं बल्कि नदी के पानी में लगती है।
0: वाह वाह वाह। और इस पहल की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि केरल में मॉनसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की स्थिति अक्सर बन जाती है, ये तो कहीं पे भी बन जाती है स्थिति। ऐसे समय में तैरना केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला कौशल बन जाता है। तो स्थानीय स्वयं सेवकों ने मिलकर लोगों को तैराकी और जल सुरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि कोई भी व्यक्ति पानी से जुड़ी दुर्घटनाओं का शिकार न बने।
1: और इस अनोखी पहल की सराहना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में की थी। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हमेशा बड़ी इमारतों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ये पहल हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि जीवन में कुछ ऐसे हुनर भी होते हैं जो सही समय पर किसी का जीवन भी बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए हम भी अपने बच्चों को तैराकी जैसे जीवन रक्षक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें और समाज में ऐसे सकारात्मक पहलों का समर्थन करें।
1: हाँ, और बरसात में अगर नदी के किनारे जाएं तो थोड़ा सावधान ओके जाए, है ना?
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों मुझे जीना तो फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो से की कल्पना
1: और रश्मि कुकृति को दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: 당근.
1: 아프게 아스티트와 아프게 벽티트와 세 주라. 아프가 घर 아프간.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the third India-Australia annual summit. The two leaders hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. Prime Minister Modi declared that the bilateral partnership is a definitive bond built for the future. Addressing the media, he highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration. Building on the success of the 2022 Economic Cooperation and Trade Agreement, the two nations have committed to fast-tracking a balanced, ambitious and mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement alongside a bilateral investment treaty. In a massive breakthrough for energy security, a critical agreement was signed to pave the way for long-term Australian uranium supply to India, injecting major strength into India's clean energy objectives. This complements the thriving renewable energy partnership under which both nations have jointly established a rooftop solar training academy in Gujarat to empower women and youth. Strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor. To secure the Indo-Pacific, the leaders issued a historic joint declaration on defense and security cooperation, launching a maritime security collaboration roadmap and an innovative defense innovation corridor to connect startups and industries. Prime Minister Albanese underscored that the relationship has never been more consequential or dynamic.
1: Comprehensive Economic Cooperation Agreement यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस और विन-विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जिस फिल्म को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक यादगार धरोहर है। ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं इस खूबसूरत फिल्म के सदाबहार गीत से शुरुआत करते हैं और यकीन मानिए गीत सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

भावनाओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से पर्दे पर उतारा। राज कपूर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी और वो गंगा नदी की निर्मलता और समाज में फैले प्रदूषण के बीच एक गहरा प्रतीकात्मक संबंध दिखाना चाहते थे और इसी सोच में उन्होंने फिल्म का जन्म हुआ राम तेरी गंगा मैली का। क्या आपने गौर किया है कि इस फिल्म की कहानी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी ही गहरी भी है। पहाड़ों की मासूम गंगा और शहर का युवक नरेंद्र, दोनों का प्रेम और फिर बिछड़ना, संघर्ष और समाज की कठोर सच्चाई से सामना। फिल्म में गंगा का किरदार निभाया था मंदाकिनी ने। ये उनकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म से उन्हें रातों रात स्टार बना दिया गया। वहीं नरेंद्र के किरदार में थे राजीव कपूर, जो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे।

इस खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाले गीत को लता जी की आवाज़ में सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारी आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, वो फिल्म जिसने प्रेम की पवित्रता, समाज की सच्चाइयाँ और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, और आपके साथ जुड़ी हूँ मैं यानी अर्चना गोयल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज कपूर की ये आखिरी फिल्म थी, साथ ही 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बनी। इस फिल्म की अगर आत्मा है तो वो है फिल्म का संगीत, जिसे रविंद्र जैन ने संगीतबद्ध किया। हसरत जयपुरी का गीत सुन साहिबा सुन और बाकी गीत खुद रविंद्र जैन ने लिखे। गीतों को आवाज दी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, और सभी गीत एक से बढ़कर एक रहे।

आपको बता दें कि राज कपूर को शोमैन कहा गया क्योंकि उनकी फिल्में समाज से जुड़ी होती थीं। इस फिल्म के बारे में उनके पुत्र रणधीर कपूर का कहना है कि वो अपने पिताजी के साथ दिल्ली एक शादी में गए। वहां उन्होंने रविंद्र जैन को राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाते सुना, जिसे सुनकर उन्होंने बार बार उनसे गाने की गुहार लगाई और अपने घर आने का निमंत्रण दिया और अपने परिवार को भी वो गीत सुनाए। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और वो राज कपूर के फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने गए। वापस आने पर राज कपूर बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के संगीतकार को चुन लिया था और रविंद्र जैन ने संगीत में ऐसी जान डाली कि लोगों के हृदय पर इसका इतना असर हुआ कि वो आज 41 साल के बाद भी ये गीत आज भी उतने ही ताज़ा और सबको पसंद आते हैं।

फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में हर्षिल और गंगोत्री में शूट हुआ। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां और प्राकृतिक सौंदर्य फिल्म की पहचान बन गए। कहते हैं कि आज भी मंदाकिनी के नाम से एक झरना है जिसमें मंदाकिनी पर झरने में एक गीत फिल्माया गया था। एक रोचक बात यह भी है कि फिल्म अपने कुछ बोल्ड दृश्यों को लेकर काफी विवादों में रही, लेकिन राज कपूर का कहना था कि उनका उद्देश्य कभी भी सनसनी फैलाना नहीं था, बल्कि गंगा की निष्कलंक पवित्रता को प्रतीक रूप में दिखाना था। काफी विवादों के बाद भी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आपको बता दें कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, साथ ही राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला। रविंद्र जैन ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का सम्मान प्राप्त किया और सुरेश सावंत सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और राज कपूर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के तौर पर 9.5 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया।

और दोस्तों अब बात करते हैं हमारे बहुत से श्रोताओं के मेल हमें मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बिरमगांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और उनकी पत्नी संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, पंचूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी। आप हैं शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी और आप हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, गांधीनगर गुजरात से और इन सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से सुन रही हैं।

दोस्तों, राज कपूर ने इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश दिया कि इंसान का मन साफ होना चाहिए, गंगा चाहे कितनी भी मैली क्यों न दिखाई दे, उनकी मूल पवित्रता कभी भी समाप्त नहीं होती। यही संदेश फिल्म के शीर्षक में भी छिपा है। दोस्तों, जब भी भारतीय से फिल्मों की, क्लासिक फिल्मों की चर्चा होगी तो राम तेरी गंगा मैली का नाम सम्मान से लिया जाएगा। ये फिल्म प्रेम की कहानी है, संघर्ष की कहानी है और सबसे बढ़कर इंसानियत की कहानी है। राज कपूर ने अपने शानदार करियर का यादगार अध्याय इसी फिल्म के साथ लिखा।

उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सांझे तौर ते परिवर्तनशील तब्दीली दा स्वागत कीता ते खेतरी स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा ते तकनीकी नवीनता लई व्यापक ढांचे नूं अंतम रूप दित्ता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नवी दिल्ली विच पंजाब समेत सरहदी जिलियां दे पुलिस सुपरिटेंडेंटां दी कॉन्फ्रेंस दी प्रधानगी करनगे। सरकार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से आधारित हलों लई एक आलमी केंद्र वजो कायम करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत की ब्रिक्स 2026 प्रधानगी हेठ ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की तीजी ब्रिक्स मीटिंग के मौके पर आज नागपुर विच ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। ते केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों विच 9वीं तो 12वीं जमात विच पढ़ रहे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के विद्यार्थियों लई स्कूल फीसां की पूरी मुआफी नूं मंजूरी दे दित्ती है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने विक्टोरिया दे सरकारी हाउस विखे तीजे भारत आस्ट्रेलिया सालाना सम्मेलन की समाप्ति तो बाद एक सांझा बयान जारी कीता। दोवां नेतावां ने दवल्ले संबंधां विच परिवर्तनशील तब्दीली दा स्वागत कीता अते खेतरी स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा ते तकनीकी नवीनता लई व्यापक ढांचे नूं अंतम रूप दित्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया भाईवाली भविख लई बनाई गई एक मजबूत अते स्थाई भाईवाली है। मीडिया नूं संबोधन करदे उन्हां कहा कि दोवां देशां विचकार संबंध डूंघे आपसी विश्वास ते आधारित एक नवे अते व्यापक पड़ाव विच दाखल हो गए ने।
2: भारत और आस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: सम्मेलन दी मुख प्राप्तियां विच आर्थिक ते व्यापारक सहयोग नूं नवा हुलारा देना शामिल है। 2022 दे आर्थिक सहयोग ते व्यापार समझौते दी सफलता दे आधार ते दोवें देश एक संतुलित देशपूरन ते आपसी तौर ते लाभदायक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते ते इक तवल्ले निवेश संधि नूं तेजी नाल अंतम रूप देण लई सहमत होए।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी

0: पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: ऊर्जा सुरक्षा के खेत्र विच एक बड़ी प्राप्ति विच भारत ने लंबे समय लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई लिए राहपदरा करने लिए एक महत्वपूर्ण समझौते के दस्तखत किए गए जो भारत के साफ सुथरी ऊर्जा टीचियां नूं होर हुलारा प्रदान करता है। ए दोवां देशां दी सफल नवियाउणयोग ऊर्जा पाईवाली नूं पूरा करदा है जिस विच औरतां ते नौजवानां नूं मजबूत बनाउण लई गुजरात विच सांझे रूप विच सूरज सिखलाई अकैडमी दी सांझी स्थापना है। भारत प्रशांत खेतर विच सुरक्षा नूं मजबूत करन दे उद्देश नाल दोवां नेतावां ने रक्षा ते सुरक्षा सहयोग ते इक सांझा ऐलाननामा जारी कीता। इस विच एक समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप दी शुरूआत अते स्टार्टअप ते सनअतां नूं जोड़न लई एक नवीनताकारी रक्षा नवीनता कोरीडोर दी शुरूआत शामिल है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध कदी भी इन्ने महत्वपूर्ण गतिशील अते व्यापक नहीं रहे। भारत प्रशांत खेतर विच शांति अते स्थिरता नूं यकीनी बनाउण लई दोवां नेतावां ने रक्षा अते सुरक्षा सहयोग ते सालाना रक्षा मंत्रियां दी गल्लबात नूं संस्थागत बनाया ते इक सांझा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप शुरू कीता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अज नवी दिल्ली विच सरहदी जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंटां दी कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ते उत्तर पूर्वी राज्यां समेत सरहदी राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पुलिस सुपरिटेंडेंट इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैणगे। गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस विच शामिल होणगे। कॉन्फ्रेंस दा उद्देश कमजोर सरहदी खेतरां विच मौजूदा स्थिति दा मुलंकण करके ते लागूकरण नूं बेहतर बनाउण लई उपावां दी पछाण करदिआं देश दे सरहदी सुरक्षा ढांचे नूं मजबूत करना है। ए मीटिंग केंद्र वल्लों गैर कानूनी प्रवास विरुद्ध तेज मुहिम दरमियान महत्वपूर्ण मनी जा रही है जो कि देश दे पूर्वी हिस्से विच अंतर्राष्ट्रीय सरहद दे नाल स्थित जिलियां दी आबादी संरचना नूं बदलण दी एक संगठित कोशिश कर रही है। घुसपैठ तों इलावा गैर कानूनी प्रवास अते आबादी तब्दीलियां, सरहदी सुरक्षा, ड्रोन खतरियां ते नशीले पदार्थां दी तस्करी बारे चर्चा कीते जाण दी उम्मीद है। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @AIRR सरकार ने भारत नूं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI ते आधारित हलां लई इक आलमी केंद्र वजो कायम करन दी अपनी वचनबद्धता दोहराई है। अज नवी दिल्ली विच भारतीय सनअतां दे संघ CCI दे ग्लोबल कॉम्पीटेंस सेटर्स बिजनेस समिट 2026 दे उद्घाटनी सैशन विच बोलदिआं इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनालोजी मंत्रालय दे सकत्तर एस कृष्णन ने कहा कि सरकार शुरू तों ही AI नूं सकारात्मक तौर ते देखदी रही है। उन्होंने कहा कि AI दी वरतों करदे होए वख-वख खेतरां विच उत्पादकता, कुशलता ते प्रभावशीलता वधाउण ते ध्यान केंद्रित कीता गया है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार इस गल ते काम कर रही है कि भारत AI नूं प्रभावशाली ढंग नाल किवें अपना सकदा है ते आलमी AI इकोसिस्टम विच योगदान पा सकदा है। इस मौके ते सरकार दे मुख आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत इस समय करीब अद्धे ग्लोबल कॉम्पीटेंस सेंटरां दी मेजबानी करदा है। उन्होंने कहा कि यह प्राप्ति लोकां दे यत्नां राहीं हासिल कीती गई है। भारत दी ब्रिक्स 2026 प्रधानगी हेठ ट्रांसपोर्ट मंत्रियां दी तीजी ब्रिक्स मीटिंग दे मौके ते अज नागपुर विच ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप दी मीटिंग शुरू हो गई है। वर्किंग ग्रुप दी मीटिंग तों बाद पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय ट्रांसपोर्ट सकत्तर वी उमा शंकर ने कहा कि सीनियर अधिकारियां ने सर्कुलैरिटी, आवाजाई, शहरी बुनियादी ढांचा, निरंतर रहण योग विकास ते मुख मुद्दिआं ते विचार वटांदरा कीता। इसे तरह इन्हां अधिकारियां दे सहयोग नाल ट्रांसपोर्ट खेतर विच सब तों वधिया ढंग तरीकिआं ते आवाजाई दे मुद्दिआं ते चर्चा कीती गई। इस दौरान नागपुर शहर विच इस महीने की 11-12 तरीक नूं होण वाली ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मंत्रियां दी तीजी मीटिंग भारत दे ब्रिक्स प्रधानगी विषय लचकीलापन, नवीनता, सहयोग ते स्थिरता लई निर्माण दे तहत बुलाई जाएगी। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी इस महीने की 11 तरीक नूं ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मंत्रियां दी मीटिंग दी प्रधानगी करनगे जिस विच होर मैंबर देशां दे मंत्री हिस्सा लैणगे। सरकार ने खेतीबाड़ी मशीनीकरण उपमिशन तहत हुण तक देश भर विच व्यक्तिगत किसानां नूं 9,404 करोड़ रुपए दीआं करीब 22 लाख खेतीबाड़ी मशीनां वंडण दी हमायत कीती है। इह मिशन 2014-15 विच खेती मशीनीकरण नूं उत्साहित करन लई शुरू कीता गया सी जो कि देश विच खेतीबाड़ी उत्पादकता वधाउण विच अहम भूमिका निभाउंदा है। इस विच फसल उत्पादन चक्कर विच खेतीबाड़ी कारजां लई मशीनां, उपकरणां ते आधुनिक तकनालोजियां दी वरतों शामिल है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दा फाश किया और दो हथगोले बरामद किए। साढ़े पत्रकार ने दस्सिया है कि जिले के बिलावर खेतर के उपरले हिस्से में स्थित

0: ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਵਰਕਰ ਹਾਜੀ ਲਤੀਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਬਾਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਤੀਫ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਏ। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में 9वीं तो 12वीं जमात में पढ़ रहे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के विद्यार्थियों लिए स्कूल फीसा की पूरी माफी को मंजूरी दे दी है। साढ़े जम्मू वाले पत्रकार ने खबर दी है कि स्कूल शिक्षा विभाग वालों जारी एक आदेश में कहा गया कि यह फैसला तुरंत लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों से माली बोझ को घटाना और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने लिए उत्साहित करना है। फीस माफी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के उन्होंने विद्यार्थियों लिए उपलब्ध होगी जिन्हों को एक वैध अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड या योग्यता साबित करने वाला सरकार वालों निर्धारित कोई होर दस्तावेज है। यह छूट सरकारी स्कूलों वालों ली गई सारिया फीसा नूं कवर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने सांझे तौर पर परिवर्तनशील तब्दीली का स्वागत किया। क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तकनीकी नवीनता लिए व्यापक ढांचे को अंतिम रूप दिता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पंजाब समेत सरहदी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट की कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करेंगे। सरकार ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित हलों के लिए कालमिक केंद्र वजों कायम करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत की ब्रिक्स 2026 प्रधानगी हेठ ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की तीजी ब्रिक्स मीटिंग के मौके पर आज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। इस नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है और वियतनाम में होने वाले पिकबॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बानीज आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराह मुलाकात में शिरकत की, जिसके तहत वफ्द की सतह की बातचीत की गई। दोनों वज़राए आजम ने समिट के इख्तिताम पर विक्टोरिया में गवर्नमेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस बयान जारी किए। दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात में यकसर तब्दीली को एक अहम कदम करार देते हुए इसकी सताइश की। भारत बहरुल काहिल में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी इश्तराक के सिलसिले में एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियतें और अहम समंदरी कुवतें करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल सिर्फ दो समंदरों का संगम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक जहीन जमहूरियतों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसत पैदा हो रही है जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है।
2: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए

0: बैलेंस एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी और अहम मादनिया से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज को भी नई बुलंदी हासिल हुई है।
0: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में अवसर से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से निमटने के लिए सरगर्म हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में उड़ीसा की जरई और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारत के गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज किया। बहरी मईशत को कौमी खुशहाली के मामले में एक यकसर तब्दीली वाला इंजन करार देते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि विकसित भारत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहीगीरी और बहरी पेशावराना खिदमात को इख्तियार करें। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत ने आज गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज करके बहरी शोबे की तरक्की में अहम संगे मील हासिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दूर दराज समंदर में काम करने वाले माहीगीरी के भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों के लिए इजाजत नामों के कौमी सतह पर नफाज का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक इंतहाई अहम डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी जारी की। उन्होंने नौजवान भारतीयों से अपील की कि वो माही परवरी को जदीद साइंस पर मबनी पेशे के तौर पर अपनाएं, जहां आलमी सतह पर रोजगार के मौके मौजूद हैं। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उत्तराखंड कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और ULLAS माशरे में ताहयात सीखने की तफहीम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बालिगों की खानदगी के मुकर्रर मेयारात को पूरा करने के बाद मुल्क की छठी मुकम्मल तौर पर खानदा रियासत बन गई है। हुकूमत हिंद की वजारत तालीम की स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे की तरफ से तय करदा खानदगी के मेयारात को पूरा करने के बाद गवर्नर की जानिब से 8 जुलाई 2026 को इस ऐलान की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक ज़ेली मिशन के तहत मुल्क भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 22 लाख ज़रई मशीनें फराहम करने की हिमायत की है। ये मिशन ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए साल 2014-15 में शुरू किया गया था, जो मुल्क में ज़रई पैदावारियत को बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई अहम रोल अदा करती हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को उसके योम तासीस के मौके पर तमाम तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुकद्दम जज्बे के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क की खिदमत, रहनुमाई और समाजी जिम्मेदारियों की तरफ रागिब करती आ रही है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि इस तंजीम ने कौम परस्ताना नजरियात, भारतीय सकाफत, कौमी यकजहती और समाजी शऊर को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दिफा ने यह यकीन भी जाहिर किया कि यह तंजीम तलबा की फलाह व बहबूद और कौमी मफाद के लिए नई तवानाई और जोश व जज्बे के साथ आइंदा भी अपना शानदार सफर जारी रखेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी वर्करों को उसके योम तासीस पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के नजरियात पर चलते हुए तंजीम तलबा की कुव्वत को मुनज्जम करने और नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने का अहम काम कर

रही है। भारत की ब्रिक्स 2026 की जेर सदारत तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वज़रा की मीटिंग के मौके पर आज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आगाज हो गया है।

पायदार तरक्की जैसे अहम मामलों पर तबादले ख्याल किया। भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन ने पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया है। पिकल बॉल आलमी कप 2026 का इनेकाद वियतनाम के दानांग में 30 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा। हर्ष मेहता टीम की कमान संभालेंगे। टीम में अर्जुन सिंह भी शामिल हैं, जो आलमी कप में अंडर 18 जुमरे में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है, जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खत्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरों के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है। और इसी के साथ ये खबरें खत्म हुईं।

0: points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके

0: अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा

0: डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल

0: मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले वर्जनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेन

भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग

आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। साथ ही उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें आज भी विश्व सिनेमा की बेहतरीन कृतियों में गिना जाता है। दोस्तों, उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी गहरी संवेदनाएं, बेहतरीन कैमरा वर्क, अद्भुत प्रकाश व्यवस्था और ऐसा संगीत जो सीधे दिल में उतर जाए।
1: Mare, tell Mare, jump in, yeah.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, गुरुदत्त का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। परिवार कई शहरों में रहा। उन्हें बचपन से ही साहित्य, संगीत और नृत्य की गहरी रुचि थी। साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध नृत्याचार्य उदय शंकर के सांस्कृतिक केंद्र में डांस का प्रशिक्षण भी लिया था। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनकी फिल्मों की दृश्य भाषा का आधार बना। साथियों, फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी में कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में की थी। यही उनकी मुलाकात हुई अभिनेता देवानंद से। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर देवानंद निर्माता बनेंगे तो पहली फिल्म गुरुदत्त निर्देशित करेंगे, और अगर गुरुदत्त निर्देशक बनेंगे तो देवानंद उनकी फिल्म में हीरो होंगे। और ये वादा पूरा हुआ फिल्मबाजी के साथ। इस फिल्म ने गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया।

साथियों, इसके बाद दत्त साहब ने लगातार कई यादगार फिल्में बनाई। पहली फिल्म आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, CID प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम। दोस्तों, इन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को बहुत नई पहचान दी।

दोस्तों, गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को दुनिया की महान फिल्मों में गिना जाता है। कागज के फूल अपने समय में असफल रही, लेकिन बाद में इसे विश्व सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल किया गया। साथ ही उनकी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी और प्रकाश व्यवस्था आज भी फिल्म संस्थाओं में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, अब समय है उस अमर गीत का जिसने गुरुदत्त की संवेदनशील अभिनय शैली को अमर बना दिया।

साथियों, गुरुदत्त का जो नाम बदला गया वो एक दुर्घटना के बाद बदला गया था। ऐसा माना जाता है कि यह भी एक शुभ संकेत माना गया। और उनके पिता शिव शंकर राव पादुकोण एक बैंकर थे, उनकी माता वसंती एक शिक्षिका और लेखिका थी। दत्त ने अपना प्रारंभिक बचपन कोलकाता के भवानीपुर में बिताया और वे धारा प्रवाह बंगाली बोलते थे। साथ ही उनकी एक छोटी बहन थी ललिता लाजमी, जो एक भारतीय चित्रकार थी, और तीन छोटे भाई थे आत्माराम, देवी और विजय।

साथियों, दत्त साहब का वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं रहा था। उनके कई वजह से वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया गया। अपनी मृत्यु के समय वे गीता से अलग हो चुके थे और अकेले रह रहे थे।

साथियों, इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। मैं हूँ आज आपके साथ अर्चना गोयल। कार्यक्रम को लेकर आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के मैटनी मेलोडीज में हम बात करेंगे बारिश के मौसम की। जैसे कि आज मौसम बेहद सुहावना है और रिमझिम बारिश की बूंदें मन को सुकून दे जाती हैं, तो क्यों ना शुरुआत की जाए ऐसे ही भीगे भीगे गीतों के साथ।

बारिश सिर्फ मौसम नहीं, एहसास है। जैसे ही आसमान से पहली बूंद धरती पर गिरती है, एक भीनी सी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। लगता है जैसे सूखी धरती ने राहत की लंबी सांस ली हो। पेड़ पौधे धुलकर और भी हरे हो जाते हैं, हवाओं में ठंडक उतर जाती है और मन अनायास ही किसी पुराने गीत को गुनगुनाने लगता है।

बारिश की बूंदों में एक अजीब सी जादूगरी होती है। ये बच्चों को कागज की नाव याद दिलाती है, किसानों के चेहरे उम्मीद की मुस्कान ले आती है और प्रेमियों के दिलों में एक नई धड़कन जगा देती है और कई लोगों की आंखों में पुरानी यादों के रंग भर देती है। कहते भी हैं कि बारिश सिर्फ धरती ही नहीं भिगोती, मन के सूखे कोनों को भी सींच देती है। कभी खिड़की पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए बारिश देखना, कभी छत पर जाकर भीग जाना और कभी सिर्फ उसकी रिमझिम सुनना, हर किसी की अपनी कहानी होती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। दोस्तों, आज का हमारा मैटनी मेलोडीज भी भीगी यादों, सुरीले नगमों और खूबसूरत गीतों के नाम है। आप और हम मिलकर महसूस करेंगे उस मौसम को जिसमें बादल गुनगुनाते हैं, हवाएं मुस्कुराती हैं और हर धुन में बारिश की महक घुल जाती है, साथ ही कोई किसी का दिल भी चुरा ले जाता है।

दोस्तों, बारिश का ये मौसम हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी तपिश क्यों ना हो, एक दिन राहत की फुहार जरूर पड़ती है। जैसे बादल बरसकर अपना बोझ हल्का कर लेते हैं, वैसे ही इंसान को भी अपने मन की उदासी बह जाने देनी चाहिए, क्योंकि मन खुश हो तो हर तरफ खुशियां दिखती हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश में शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। लोग छतों के नीचे रुक जाते हैं, चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा और अपनापन लिए आगे बढ़ता है। ये बारिश हमें कुछ पल ठहरना भी सिखाती है।

दोस्तों, जब भी बारिश हो तो कुछ पल रुकिए, उस भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए, आसमान की ओर देखिए और अपने दिल से पूछिए कि कौन सी याद इन बूंदों के साथ चल पड़ती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आज के मैटनी मेलोडीज से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए इजाज़त। मुस्कुराती रहिए, गुनगुनाती रहिए और जीवन की हर ऋतु का स्वागत खुले दिल से कीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू मजलिस के तमाम सामीन की खिदमत में मुदस्सिर राशिद शमसी का पुरखलूस आदाब। सामीन, अंदाज़े नज़र प्रोग्राम में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। ये वो प्रोग्राम है जिसका हर लम्हा उम्मीद, जज्बे और हौसले की खुशबू से महकता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम नौजवानों के नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं और उन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं जो आज के यूथ के मुस्तकबिल से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ

0: पढ़ने के तरीके बदल चुके हैं, क्लासरूम्स डिजिटल हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम का हिस्सा बनती जा रही है और दुनिया की बेहतरीन किताबें और रिसर्च सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी ने तालीम को वाकई ज़्यादा आसान और इम्पैक्टफुल बना दिया है, या फिर इसने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शंस, मालूमाती अफराद और शॉर्टकट्स की तरफ भी धकेल दिया है? क्या डिजिटल तरक्की के सफ़र में हमारी तहजीब, ज़ुबान और तनकीदी सोच भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? इन्हीं अहम सवालात और उनसे वाबस्ता पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम, नई राहें और चुनौतियाँ। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों की नुमाइंदगी करते हुए अपने तजुर्बात और अफकार हमारे सामईं तक पहुँचाएंगे। तो आएँ बग़ैर किसी ताखिर के उनका तारुफ़ कराते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहनवाज़ हाशमी सर, जिनका ताल्लुक सहाफत से रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफ़ात साहब, जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं। तो सफ़ात साहब, अपने बारे में बताएं और साथ ही साथ लीगल एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी का क्या असर रहा है?
1: मेरा नाम मोहम्मद सफ़ात खान है। मैंने अपनी LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, फैकल्टी ऑफ लॉ से। मेरे को करीब 1 से 1.5 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस लड़ता हूँ। मेरा लॉ से नाता करीब 2017 से जुड़ा हुआ है, जब मैंने अपना CS का कोर्स स्टार्ट करा था, और तब की और आज की पढ़ाई में काफ़ी बड़ा अंतर आ चुका है। उस टाइम पे किताबों पे रिलायंस ज़्यादा थी, ऑनलाइन सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप AI से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो इसका पढ़ाई पे तो ऐसा असर पड़ा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ढूंढनी बहुत आसान हो गई हैं, जो कभी मोटी मोटी किताबें हमें पढ़ने पड़ती थी, अब हम सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं। इसका डाउनसाइड ये रहा है, इसी सिनेरियो में अगर हम देखें, सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं तो एक कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन और डीप लर्निंग जो हुआ करती थी, डीप रीडिंग और थॉरो रिसर्च, वो सब अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक ही सर्च, एक ही सेंटेंस में हम सीधा अपना सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसका फील्ड में मैं बोलूँगा कि उससे भी पॉजिटिव भी रहा है इम्पैक्ट एज एन वकील, पर अगर कोई नया ज्वाइनर है तो उसके लिए काफ़ी बुरा इम्पैक्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि AI बहुत अच्छा है डेटा एनालिसिस में, तो AI आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी पढ़ के आपको आउटकम दे सकता है। जिन चीज़ों में पहले महीने लग जाते थे हजारों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में, AI अब वो 1 घंटे में ही कर सकता है। इससे नुकसान ये रहा है कि जैसे कि AI के और भी फ़ायदे हैं कि AI आपके लिए रिसर्च कर देगा, केस को समराइज कर देगा, जो भी लीगल स्ट्रेटजीज आप लगाना चाहते हो AI उसके साथ, आप AI के साथ बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, AI आपको आंसर्स भी ड्राफ्ट कर देगा, AI आपको पहले से एनालिसिस करके बता सकता है जजेस की जजमेंट पढ़ के कि ये जज किस टाइप की जजमेंट देगा, जिससे आप अपना केस उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पहलू भी निकल के आएंगे। एक जो नया पहलू निकल के आ रहा है वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बेसिकली जिसके लिए पहले आपको वकील हायर करना पड़ता था, अब आपको जो AI की एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी है उससे ही आप सीधा जाके अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते हो। ये खासकर जो आपके छोटे डिस्प्यूट हैं या कोई फैमिली के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले टाइम पे। और सरकार ने इस पर एक लीगल रिसर्च पेपर भी जारी किया था। इम्पैक्ट इसका, बुरा इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका, कि एक तो अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो जो खासकर बड़ी लॉ फर्म्स हैं या बड़े डेटा सेंटर हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि उन डेटा को चुरा के एडवांटेज ली जा सकती है जी। और क्योंकि जो खासकर AI है टेक्नोलॉजी, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है, और जो एल्गोरिदम है वो पिछले डेटा के ऊपर वर्क करता है, तो जो भी पिछले डेटा में बायसेस हैं, ये चीज़ों को लेके फ़र्क रखा गया है जी। वो सारी चीज़ें अब AI के अंदर भी आ रही हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल ये हुआ था कि 2022 या 23 में ये चीज़ निकल के आई थी कि अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उनके डॉक्टर जो उन्हें

0: रिकमांड कर रहे थे वो अप टू द मार्क नहीं था जो गोरे लोगों को दिया जाता था। इससे रिजल्ट ये रहा, इससे ये चीज़ निकल के आई कि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन था जो AI के थ्रू डिटेक्ट हुआ।
1: जी सफा साहब, आपसे बात करेंगे। और आपने किताबों के बारे में बहुत अच्छी बात कही, किताबों को रिप्लेस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है किताबों को रिप्लेस कर रही है एक तरह से। जी शाहनवाज साहब, तो जैसे कि अभी पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, और अभी जैसे सफ़ात साहब बता रहे थे, जैसे किताबें जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर रही है, तो ये कहाँ तक नौजवान को लिए अच्छा है?
2: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किताबों का जो मसला है, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं शाहनवाज हाशमी हूं और दर्स व तदरीस के साथ साथ मेरा सहाफ़त से भी रिश्ता रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी हूं, और जो चीज़ें मैंने देखी और किताबों के हवाले से अगर हम बात करें, किताबों के हवाले से आपने कहा कि रिप्लेस किया जा रहा है, किताबों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये अपने जहन में बैठा लीजिए कि किताब की जो अहमियत है वो मुसल्लम है, थी, है और आइंदा भी रहेगी। अब बात करते हैं हम AI पे। यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं, नो डाउट जो चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, अपने साथ जो भी इनकलाबात हर ज़माने में हुए हैं, अपने साथ कुछ खुश आइन चीज़ों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी लेकर आती हैं। वो चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद हैं। आज के नौजवान यानी हम लोग जो है AI पे बिल्कुल बेस्ड होते जा रहे हैं, उस पर मुनहसिर होते जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए एक तशवीश का बाइस है कि हम उसके ऊपर मुनहसिर होते जा रहे हैं, उसके बिना हम कोई काम ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सहाफ़त की अगर हम बात करें, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, कि सहाफ़ती दुनिया में AI ने बड़ा इनकलाबी रोल अदा किया है,
1: जी
2: और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले हम कुछ लिखते थे, कोई रिपोर्ट लिखते थे, कोई ख़बर लिखते थे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जांचना पड़ता था, छान
1: जी
2: पटक करना पड़ता था, उसके बाद हम उन चीज़ों को लिख पाते थे। AI ने अब ये हमारे लिए ये आसान कर दिया है, इस मस्नूई ज़हानत ने आसान कर दिया है कि हमें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को एक क्लिक में ही, जैसा आपने शुरू में
1: जी
2: कहा कि एक क्लिक में ही वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि इन
1: जी
2: चीज़ों पर पहले लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे किया, कैसे किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपका रिश्ता किताबों से रहा है तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे और समझ पाएंगे कि जो बता रहा है, जो मस्नूई ज़हानत हमें अपनी जहन की तरफ मुतवज्जो कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर
0: ये आप
2: रहा है।
0: सही बोल रहे हैं।
1: जी सर जी, आज जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपेंडेंट नहीं होना है।
2: बिल्कुल
1: आजकल हम जो है डिपेंडेंट हो रहे हैं AI पे, नौजवान जो डिपेंडेंट होता जा रहा है, और जैसे अभी आप बात कर रहे थे डीप फेक की, जो आजकल बढ़ता जा रहा है, तो सफात साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो आप नौजवानों को क्या लेसन एक सीख देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि कैसे वो इससे बच सकते हैं?
0: जी, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम जब साइबर क्राइम की बात करते हैं और डिजिटल फ्रॉड की, तो जो मैं नियम मान के चलता हूँ, इन्हें मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ, वो ये है कि कभी भी अपना OTP या फिर UPI का नंबर या पासवर्ड या कोई भी अपनी बैंक की डिटेल्स पब्लिकली शेयर या फिर किसी को भी व्हाट्सएप पे ना। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ हमेशा, जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है कि फलाना के पास इतने, फलाना को इतने पैसे चाहिए, या आपके अकाउंट में इतने पैसे गलती से आ गए हैं, या फिर एक आजकल बहुत चल रहा है कि आपकी फलाने जगह पर जाते हुए ड्रग्स पकड़ी गई हैं और आप इतने पैसे दे दीजिए नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइबर फ्रॉड के तरीके हैं।
1: जी
0: इनमें सिर्फ तरीका यही है कि आप प्रोसीजर को समझिए कि अगर कभी भी पुलिस आपको अप्रोच करेगी तो वो बिना वारंट के नहीं करेगी, और अगर आपको बिना वारंट के करेगी तो आपको सीधा जेल लेके जाएगी। कभी भी वो आपको फ़ोन पे ये नहीं बोलेगी कि इतने पैसे आप भिजवा दीजिए नहीं तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा।
1: जी
0: ये आपको सिर्फ अरेस्ट कोर्ट के ऑर्डर पे ही करा जा सकता है
2: बिल्कुल
0: और किसी तरीके पे से नहीं करा जा सकता।
2: नहीं, कई बार ऐसा होता है सफा साहब कि मेल भी आते हैं लोगों के पास, और मेल पे बाज़ाब्ता कोर्ट का नाम भी होता है कि दिल्ली
1: जी
2: हाई कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ ये किया है। तो इसको आप क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? और देखिए, आम आदमी इसको देख करके तो डर जाता है, वो अब थाने में जाए या फिर उस एड्रेस पे जाए, क्या करे वो?
0: देखिए, जब भी आपको कोई कोर्ट से ऑर्डर आए या केस का नंबर आए, तो आप सबसे पहले एक वकील से जाके क्रॉस चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर केस का नंबर आया तो केस चल रहा है, और अगर केस चल रहा होगा तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड में हमेशा अवेलेबल होगा। उसके ऊपर ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं आपको, डिटेल्स भी मिल सकती हैं, और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का ही आपने एग्जांपल लिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों से आप घबराएं ना, लिहाजा आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सब एक चुनौती की तरह आती है, लेकिन इनका कोई आउटकम नहीं होता।
2: सुभाष साहब, आप ये बताइए कि आपने जैसा अपना तारुफ करवाया कि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप किताबों से ज़्यादा क्या वेबसाइट पे या इंटरनेट पे या मस्नूई ज़हानत?
1: नहीं, मैं नहीं मानता कि किताबों से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएं। मैंने वही कहा कि डिपेंडेंट अगर आप किसी चीज़ पे हो जाते हैं तो आप समझिए, आप अपना क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, जो आप खुद सोच का जो माइंड है आपका, वो आप ख़त्म कर जाते हैं अगर आप डिपेंडेंट हो जाए किसी चीज़ पे। तो टेक्नोलॉजी पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल सकते हैं। आज का जो आगे वाला जो दौर आ रहा है उसमें अगर हम जैसे हम देखते हैं आजकल किताबें जो हैं वो फुटपाथ पर आ गई हैं और मोबाइल जो हैं वो शोरूम में नज़र आते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें किताबों को वापस उसी जगह पर लेकर जाना है, क्योंकि हम लोग किताबों की आज अहमियत नहीं दिखती है हमें। आज का नौजवान जो है, आप देखिए कितने लोगों के हाथ में आपको किताबें दिखेंगी। मैं भी यहाँ से स्टूडियो तक आ रहा था, रास्ते में मेट्रो में देख रहा था, एक नौजवान के हाथ में भी किताब नहीं थी, पर सबके हाथ में मोबाइल फोन था, टेक्नोलॉजी थी। तो इसमें हम डिपेंडेंट इतने हो चुके हैं कि हम किताबों को छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ हमें किताबों को अपना दोस्त बनाना है, आज हम मोबाइल को दोस्त बना रहे हैं।
2: आपके दोस्तों में से ही, इंक्लूडिंग यू, आप भी उसमें शामिल हैं कि किताबों के साथ कितना वक्त गुजारते
1: हैं? बिल्कुल, आज के दौर में किताबों के साथ जो वक्त है वो मेरा भी बहुत कम होता जा रहा है, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल को जितना हो सके उतना दूर रखा जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को आज इतना कहना चाहिए कि हम मोबाइल के इतना ज़्यादा आदि हो चुके हैं कि उसके बगैर तो शायद आज किसी के जेब में कुछ हो ना हो, मोबाइल ज़रूरी है और मोबाइल में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है आपको। हाँ, कह सकता हूँ मैं कि जब पहले के दौर में जब डिक्शनरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, डिक्शनरी के टाइम में आपको सर्च करना होता था कि भाई डिक्शनरी में ढूंढना होता है, आज एक क्लिक पे आप अपना कोई भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं।
2: लेकिन डिक्शनरी के एक फ़ायदे भी थे कि आप एक लफ्ज़ को ढूंढने जाते थे और आप कम से कम 20 से 50 नए लफ्ज से आपकी शनाशाई हो जाती थी, इतने लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती थी, इतने लफ्जों से आपकी जान पहचान हो जाया करती थी। बिल्कुल
1: जी। तो जैसे कि लाइब्रेरी में अगर मैं देखूं तो अपने हमारी जो लाइब्रेरी थी कॉलेज की, आज लाइब्रेरी में किताबें धूल खा रही हैं, और यहाँ तक कि मैंने देखा है लाइब्रेरी में बच्चे फोन चला रहे होते हैं, तो ये आज की हालत हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो जहन है, जो हमारा कहना चाहिए, और जो तालीम में जो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि आपके पास क्रिएटिविटी हो।
2: बिल्कुल।
1: और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग जो है रोजगार के पीछे दौड़ रहे हैं आजकल। ये बिल्कुल सच बात है। और हमें ये बात, जैसे उर्दू की अगर मैं बात करूं तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू पढ़ नहीं पाती, उर्दू लिख नहीं पाती, लेकिन उर्दू सुनती है तो लुत्फ उठाती है। तो आजकल हम कहां जा रहे हैं, हम रोजगार की तरफ ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कहां रोजगार है वहीं जा रहे हैं, जबकि हम ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि रोजगार जिंदगी के लिए होता है, जिंदगी रोजगार के लिए नहीं होती है।
2: जी हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले भी आपने कहा था और अभी आपने ये कहा कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, जब हम अपने आप को तफरीह के बीच में यानी इंटरटेनमेंट अपना चाहते हैं, तो हम उर्दू की तरफ जाते हैं, उर्दू सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम ये देख रहे हैं, जैसे हम किताबों से अलग होते जा रहे हैं, मस्नूई ज़हानत के करीब होते जा रहे हैं, तो हम यही बात वहीं आ जाती है फिर, मस्नूई ज़हानत को हम किस तरह से अपने अंदर लेकर आएँ और किस तरह से उसका सही इस्तेमाल कर पाएँ। जब तक हम उस लफ्ज़ को समझेंगे नहीं, उस लफ्ज़ से मेरी शनासाई नहीं होगी, हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उस लफ्ज़ के करीब हम कैसे पहुँचेंगे। हमने एआई से कहा कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपने दोस्त को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अब एआई ने एक ऐसा शेर मेरे सामने रख दिया जिसमें ऐसे ऐसे लफ्ज़ थे जिसके माने मुझे खुद पता नहीं, और मैंने वो अपने दोस्त को सुना दिया। तो अब क्या होगा उसका, क्या उस दोस्त को अगर आती है उर्दू और उसने समझा उस शेर में, उसने कहा कि ये मेरी तारीफ़ नहीं बल्कि मेरी तौहीन है। तो आपने तारीफ के बजाय तौहीन कर दी किसी की, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी ना। तो लेकिन एक ये सच है कि एआई जो है, लोगों की जो मेहनत है, जो पढ़ने लिखने की जो ताकत थी, जो सलाहियत थी, उसको कम करती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि बाज़ार में उर्दू के या दूसरी ज़बानों के रोज़गार में भी मौके में कमी आ रही है।
0: जी
2: सफा साहब, आप कुछ कहेंगे कि इस मौके को कैसे बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से इसको दूर किया जाए?
0: देखिए, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में उर्दू के बारे में देखा है या फिर और भी भाषाओं के बारे में, वो ये है कि जब हम उसे अंग्रेज़ी भाषा के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका मीडियम कितना वास्टली अवेलेबल है इंग्लिश का। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में हिंदी या उर्दू, ख़ास करके उर्दू को, तो आप देखेंगे कि उर्दू की ना तो कोई बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर हैं,
1: तो सफ़ार साहब, मुझे आपसे थोड़ा सा ये जानना था कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। आज कुछ टेक्नोलॉजी है, एक महीने बाद कुछ टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जैसे अगर हम AI की ही बात करें तो बदलता जा रहा है, नए नए जो उसके जो वर्जन्स हैं वो आते जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में सुरेन क्या करे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाए, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ लेके चले इसको?
0: जी, इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जब ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो एक प्रिंटिंग प्रेस जब थी, वो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो यूरोप ने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा, पर ऑटोमन एम्पायर ने उसके खिलाफ एक फतवा निकाल दिया कि ये गैर इस्लामिक है। इससे ये फ़र्क पड़ा कि यूरोप जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप करता चला गया और जो ऑटोमन एम्पायर था वो पीछे चला गया। यही फिलॉसफी जो है मैं मानता हूँ दुनिया की सारी आती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर अडेप्ट होती है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हो, आप कभी पीछे नहीं हट सकते उसे अडेप्ट करने से। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं समाज से।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ अगर हम जाते हैं, उसका रद्दअमल ये होता है कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, जबकि वो हवा बहुत तेज़ी से आ रही है और हम उस हवा के साथ नहीं जाते हैं बल्कि उसके मुखालिफ सिफ्ट में जाते हैं। तो मुखालिफ सिफ्ट भी हमें ऐसा तैयार करना चाहिए जो उससे कहीं तेज़ हो। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीछे होते हैं, ये तो सच है।
1: जी शाहनवाज साहब, एक बात मुझे आपसे थोड़ा सा जाननी थी। आपने बताया आप नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन में रहते हैं, तो आपने बताया कि जो नौजवान है वो AI को अपना दोस्त मान रहा है, टेक्नोलॉजी को दोस्त मान रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो है जो जो बच्चा है जिसका जो असल जो दोस्त होना चाहिए वो उससे दूर हो रहा है, अपने माँ बाप से दूर हो रहा है, जो उसको अपने दोस्त बनाने चाहिए वो उनसे दूर हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब आके वो अपने आप को कहीं ना कहीं कहना चाहिए इंट्रोवर्ट करता जा रहा है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। किसी शायर ने भी कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बच के निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है, कि अगर आप ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ये मामला तो हमेशा से रहा है कि आप अपोज़िट चीज़ें आपके पास आती हैं, लेकिन ये आप क्या है यहीं पे सवाल आता है। और आपने जो कहा कि AI को लोग जो है अपना दोस्त मान रहे, दोस्त नहीं मान रहे हैं। एक बात मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो साथी हैं, वो उसको दोस्त नहीं मान रहे हैं बल्कि उसको एक फरार का रास्ता मान रहे हैं कि हमें ये बचा लेगा। दोस्त नहीं है। दोस्त तो क्या करता है, सवाल भी करता है ना। दोस्त से तो उससे उम्मीद भी करता है ना। दोस्त जैसे मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं चाहूँगा ना कि आप मेरे पास भी आए, मुझे भी वक्त दें, सिर्फ मैं ही आपको वक्त क्यों दूँ। लेकिन अगर आप किसी को फरार का रास्ता कहते हैं कि इसके नाम पर हम बच जाएंगे, तो आपने फरार का रास्ता चुन लिया है कि आप अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और आपको अपने इल्म से भागना है, अपने मेहनत से भागना है, अपने करियर से भागना है, अपने समाज से भागना है, अपने घर से भागना है, अपने रिश्तों से भागना है। इन सारी चीज़ों से फरार का जो रास्ता आपको नज़र आया वो मसनूई ज़हानत नज़र आया कि आप उसके पास चले जाते हैं और आपसे कोई काम कहा जाता है कि ये पढ़ कर आना, ये समझ कर आना, आप उसको कह देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, वो आपको जवाब दे देता है, वही जवाब आपके मनवान आकर बयान कर देते हैं। तो सामने वाला समझता है कि आपने इसको पढ़ा है, समझा है।
0: जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो आपने बात करी है वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है कि आजकल AI का इस्तेमाल करके लोग AI को प्रॉम्प्ट ऐसा दे देते हैं कि वो उनके दोस्त ही बन जाए और वो सिर्फ उनसे दोस्तों की तरह बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये वो फरार भी हैं कि उन्हें असली दोस्त ना बनाने पड़े समाज में। कहीं ना कहीं वो इसे एज एन फाइनल रेजोल्यूशन भी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इसे कंपेनियन भी देख रहे हैं कि यही अब हमारा दोस्त है।
2: नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अगर दोस्त बना रहे हैं तो आपको उसके साथ वक्त गुजारना होगा ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि वक्त गुजारना पड़ेगा। आप वक्त नहीं गुजार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि जब ज़रूरत होती है तब उसके पास जाते हैं। आप ज़रूरत के अलावा भी उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसे समझिए, अपनी बात उसको समझाइए, तो समझ में आएगा ना कि वो क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी जी जी शाहनवाज साहब, चलो शाहनवाज साहब ने जैसे अभी सफ़ा साहब कहा कि वो हमें बचा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जॉब जो है वो बचा रहा है या जॉब को खा रहा है AI?
0: देखिए, AI के साथ जो है, AI जैसे जब आते हैं सॉफ्टवेयर्स, खास करके जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे जब iPhone आया था मार्केट में तो बैंकिंग जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी। इससे क्या हुआ था, जो बैंक टेलर्स होते थे उनका जो नौकरियां थी वो ख़त्म हो गई थी। अभी भी बैंक टेलर्स होते हैं, लेकिन अब उतने नहीं होते जितने पहले के ज़माने में होते थे। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी बंदे का काम ऐसे कर दे कि वो कंज्यूमर अपने हाथों से खुद कर दे, जैसे कि AI आज के टाइम पे कर रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ, AI आजकल कर रहा है आपके उसके साथ क्या कहते हैं विजुअल बनाने के साथ, या फिर पोइट्री लिख देता है या फिर म्यूजिक बना देता है, तो ये सारी जॉब्स में सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी लीगल फील्ड में भी ड्राफ्टिंग और रिसर्चिंग में सीधा इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है।
2: नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है। मैंने जैसा कहा था, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने दोस्त बनाया है तो दोस्त बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको जानते हैं। आपने अगर AI को समझ लिया तो आपके लिए जॉब ओरिएंटेड है, जॉब क्रिएटर है। अगर आपने उसको सिर्फ फरार का रास्ता बनाया हुआ है, यानी जब जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह बना रहा है, तो आपकी जगह तो खत्म कर दिया, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। और जमाने की जो मांग है, जो डिमांड है, वो क्या है कि जल्दी है। अब जल्दी जब आप समझ ही नहीं पा रहे तो आपकी जरूरत तो वहां होगी नहीं। तो आपने जैसा कहा कि जॉब खा रहा है, बिल्कुल जॉब खा रहा है। अगर आप AI को नहीं समझते हैं, मस्नूई ज़हानत के ज़हन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी जॉब तो खत्म।
0: इधर एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि जो जॉब्स में वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ना हो के प्रोफेशनल ओरिएंटेड है, जैसे कि रेडियोलॉजी में AI के थ्रू डिटेक्शन करी जा सकती है
2: बिल्कुल
0: परेशानी की, तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं। तो एक जगह जहाँ नौकरी खत्म भी हो रही है वहां नौकरियां बढ़ भी रही हैं। और ये डिपेंड करता है कि AI का कमांड किसके हाथ में, उससे पता चलेगा।
1: बिल्कुल यही बात है। और अगर सहाफत की बात करें तो सहाफत में कहा जाता है कि जो AI है या टेक्नोलॉजी है वो उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रही है।
2: देखिए, रिप्लेस नहीं कर रही है, मैं फिर वही कहता हूँ कि रिप्लेस नहीं कर रही है, तेज कर रही है। और जब तेज कर रही है और आप उस तेजी के साथ उसके कदम से कदम जब आप नहीं मिलाकर चल पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप पिछड़ जाएंगे। और आप जब पिछड़ जाएंगे तो कोई दूसरा जो उस तरह से उसके अंदर उतनी तेजी है, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आएगा। और तेज चलने वाले आप देखेंगे कि हर जगह अगर 10 लोग चलने वाले हैं तो 10 लोगों में से तेज चलने वाले 50% नहीं होंगे, मुश्किल से 30% होंगे। यानी तीन लोग ही, 10 में से 3 लोग ही तेज चल पाएंगे, तो बाकी 7 लोग तो पिछड़ गए ना। तो इस तरीके से नौकरियां भी खत्म होंगी, नो डाउट। अब इसमें यह हुआ है कि सहाफती दुनिया में जहां पे हमें बहुत तहकीक की जरूरत पड़ती थी, रिसर्च की जरूरत पड़ती थी, उस तहकीक और रिसर्च को इसने बहुत आसान कर दिया है कि जब हम उसको डालते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो सारी चीजें हमें बता देता है, एक क्लिक में बता देता है कि ये चीजें कहाँ कहाँ कैसे हुई हैं, और इस सानहे को, इस वाकये को या इस खबर को यहाँ तक पहुँचने में किन किन चीज़ों के साथ मिलकर के यहाँ तक पहुँची है या किन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा है, ये एक चीज़ समझ में आ जाती है तहकीक के हवाले से। दूसरा मामला ये आता है कि पहले हम ग्राफिक के ज़रिए फोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी करते थे, बनाते थे, चीज़ों को बनाते थे, तो उसमें भी वक्त दरकार होती थी, काफ़ी वक्त लगता था उसमें, और कई लोग मिल करके एक ग्राफिक तैयार कर पाते थे। अब क्या हुआ है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वो ग्राफिक सेकंड में तैयार कर देता है, मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में तैयार कर देता है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राफिक बनाने वाले जो लोग थे उनकी जगह तो कम होगी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, अगर ग्राफिक बनाने वाले ने AI को अपना दोस्त बना लिया है, AI को वो समझता है, तो वो उसके अंदर भी कमियां निकालेगा और उससे कहीं बेहतर ग्राफिक खुद तैयार करेगा, उससे लेने के बाद भी उसमें ऐड ऑन करके वो अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी उसमें ये कॉपीराइट का बहुत बड़ा सवाल आता है फाज साहब, एक सवाल आता है कॉपीराइट का, जैसे उन्होंने बताया कि जनरेटेड जो AI जनरेटेड कंटेंट होता है, टेक्नोलॉजी कोई भी कंटेंट बना रही है, तो उसका कॉपीराइट का हक किसके पास है, कौन उसका ओनर कहलाएगा?
0: यहाँ पे AI के मामले में क्या परेशानी चल रही है कि अभी AI में जो AI बनाने वाली कंपनियां हैं और जो प्रॉपर्टी या कॉपीराइट ओनर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें आगे जाके हम लीगल केसेस भी देख सकते हैं। इस सिनेरियो में अभी बोलना मुश्किल है कि आउटकम क्या रहेगा, क्योंकि ये पता चलेगा कि जजमेंट किसके फेवर में फ्यूचर में आती है। एक टाइम था जब ना गूगल में भी फ्री बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी, फिर गूगल का बहुत फेमस लीगल केस चला था जिनमें गूगल हार गया था, तो उसके बाद से गूगल बुक्स स्टोर पर आपको पेड बुक्स मिलने लगी थी। लेकिन ये जो चीज़ों के आउटकम है ये अभी एग्जैक्टली नहीं बताए जा सकते। एक इसी से जुड़ा हुआ मेरे मन में एक लीगल सवाल भी आता है जिसका भी मैं खुद भी जवाब ढूंढ रहा हूँ, वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले एक केस आया बड़ा इंटरेस्टिंग
2: जी।
0: एक बच्चा एज एन कंपेनियन की तरह AI को इस्तेमाल कर रहा था, वो डिप्रेस था
2: जी।
0: और एआई को इस्तेमाल कर रहा था एज इन थेरेपी, तो उसने सुसाइड कर ली। और जब इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि एआई जो था उसे प्रमोट कर रहा था सुसाइड करने में। तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं या फिर कोई गलत एडवाइस जा रही है या कोई एआई जो है आपको कई नुकसान पहुंचा देता है इंटरेक्शंस में, सोशल इंटरेक्शन में, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर किस पे आएगी?
2: बिल्कुल
0: तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि ना तो हम बंदे के ऊपर नाम डाल सकते हैं।
2: बेहतर है सफा साहब, आपने जो कहा वाकई ये सोचने का मकाम है और इस पे सोचा भी जा सकता है और सोचा जा रहा है यकीनन, कि जैसा इन्होंने कहा कि सुसाइड के लिए उसको आगे बढ़ाया, एआई ने उसको प्रमोट किया। उसके अलावा आज जो पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, जो अपना असाइनमेंट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, पेपर देने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, अपनी किताबों की समरी हासिल करता है उससे,
1: जी
2: तो क्या आपको लगता है कि हमारा नौजवान तबका इससे बाहर निकल कर एआई को उसी अंदाज में इस्तेमाल करेगा जिसकी हकीकतन उसकी ज़रूरत है, या फिर वो वैसे ही फरार का रास्ता इख्तियार करेगा?
1: देखिए, अभी मुझे जहाँ तक लगता है जो नौजवान नस्ल है, जो हम लोग हैं, वो एआई का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं छोटी सी, अगर छोटा सा एक आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखने के लिए भी बच्चा आजकल इस्तेमाल कर रहा है एआई का, तो अगर उसे एक एआई, एक एप्लीकेशन खुद से लिखना नहीं आएगी तो वो आगे जाके क्या करेगा? तो उसको अगर इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का, करे, पर उसको साथ लेकर चले। खुद का जहन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ आई, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर्स आए, जो भी चीज़ें आई, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही उसकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं असर डाला। जैसे टीवी आया था तो उसने बहुत हद तक बच्चों के जो सोचने का तरीका था या उसका जो क्रिएटिव माइंड था, उसको कहीं ना कहीं असर डाला। बहुत सारे राइटर्स ने लिखा भी इस बारे में। पर एआई जो कर रहा है वो उनका दिमाग बन रहा है, तो हमें उसके साथ लेकर चलना है। हम नौजवान नस्ल अभी तैयार इतनी हद तक नहीं है, पर हम तैयार हो सकते हैं।
2: नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको?
1: इसके पीछे नहीं चलें, हम लोग इसके डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसको पकड़ के चल रहे हैं, तो ये
2: बहुत
1: हमें नहीं करना है।
2: बहुत बेहतर, आपने कहा कि हमें इसका डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मुनहसिर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे साथ लेकर चलना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दोस्त बनाना चाहिए, न कि फरार का
1: जी
2: रास्ता
1: जी जी जी
2: बनना
1: बिल्कुल
2: चाहिए।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने शनवास साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ात साहब आपका भी। आपसे भी हमने बहुत चीज़ें जानी कि लीगल के रिलेटेड भी जानी और साइबर क्राइम के रिलेटेड भी, और शनवाज साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। आज की गुफ्तगू से एक बात वाजे होती है कि टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, असल बात उसके इस्तेमाल की होती है। हम नौजवानों के लिए ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग हैबिट, इंसानी अखलाक और अपनी ज़ुबान और तहजीब से भी मजबूत रिश्ता कायम रखें। मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त दिया और अपने अफकार हमारे साथ बांटे। मैं हूँ मुदस्सिर आशीष शमसी, अब आपसे लेता हूँ इजाज़त।

0: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस समय एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the 21st century India is working towards the goal of becoming a developed nation. Addressing a community event in Melbourne today, Mr. Modi said, "Today's India believes in aspiring higher and achieving more." Describing his current visit to Australia as a hat-trick in 12 years, he said it reflects the growing strength of India-Australia ties.
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
4: We now take you live to the Prime Minister Modi's address.
1: आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको

सूचित किया जाता है कि हेमंत पुत्र देवपाल, जिनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है, वह 3 जून 2026 से अपनी मां को घूमने के लिए बोलकर गया लेकिन वापस नहीं आया। उनकी कोई सूचना यदि आप रखते हैं तो कृपया थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर को जानकारी दें। ये जानकारी हमें मिली है जीजे कॉलोनी सेक्टर 16 नोएडा से। ईशा पुत्री सुखचंद, जिसकी उम्र 19 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 8 इंच है, वह 18 मई 2026 से अपने घर काम के लिए कहकर निकली लेकिन वापस नहीं आई। उसके विषय में सूचना थाना फेस 1 नोएडा को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राजकुमार, उम्र 35 वर्ष, शरीर औसत, कद 5 फुट 7 इंच, सरस्वती लैंडमार्क द एपिटोम लग्जरी लिविंग, वहां से घर जाने के लिए निकला लेकिन पहुंचा नहीं। उसके विषय में कोई जानकारी अथवा सूचना थाना बिसरक जिला गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है अमर पुत्र पप्पू, निवासी नगला, भीमसेन थाना सहावर कासगंज से। अमर, जिसकी आयु 24 वर्ष, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, कद करीब 5 फुट, वह गली नंबर 5 सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा से अपनी पत्नी से मिलने दिल्ली कहकर गए लेकिन मिले नहीं। उनसे संबंधित कोई भी जानकारी थाना सेक्टर 39 नोएडा से प्राप्त की जा सकती है। गुमशुदा का नाम मंजू, पति हरपाल, सेक्टर 122 नोएडा से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी मंजू, उम्र 42 वर्ष, शरीर सामान्य, रंग गेहुआ, कद 165 सेंटीमीटर है, वह लापता है। उनसे संबंधित कोई सूचना या जानकारी यदि आप रखते हैं तो कृपया थाना 113 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। ये सूचना हमें मिली है तुगलपुर ग्रेटर नोएडा से। राजकुमार सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी रेखा, जिसकी आयु 33 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, शरीर औसत और रंग गोरा है, वह 27 मई 2026 से शाम 6 बजे से लापता है। सूचना देने वाले को ₹2000 पुरस्कार में दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए थाना नॉलेज पार्क गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। रोहित तोमर पुत्र लखीचंद, ग्राम लाखन थाना पिलखुआ जिला हापुड़ से सूचित करते हैं कि उनका भाई मोहित, जिसकी उम्र 37 वर्ष, शरीर औसत, कद 5 फुट 5 इंच है, वह 31 मई 2026 से अपने घर से लापता है। मोहित से संबंधित कोई जानकारी यदि आपके पास है तो आप थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को दे सकते हैं। और ये सूचना हमें मिली है नगरिश के बारे में, जिनकी आयु 25 वर्ष, जिस्म इकहरा, रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत और कद 5 फुट 3 इंच है, वह 12 मई 2025 रात 12 बजे से लापता है। नगरिश के पिता का नाम रहमान है। उनकी जानकारी थाना रघुपुरा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। तो ये थे हमारे खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं जिंदगी भी एक खेल है, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। और आज की दुनिया में सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी सही फैसले लेना उतना ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी आकाशवाणी पर, एक ऐसा मंच जहां युवाओं की आवाज, उनके सपने और उनके विचार बनते हैं पहचान। मैं हूं साक्षी और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट वान्या।
1: धन्यवाद साक्षी, और मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: वान्या, आज का युवा एक साथ कई मैदानों में खेल रहा है। एक मैदान है स्पोर्ट्स का, जहां जीत मेहनत, अनुशासन और टीम स्पिरिट से मिलती है, और दूसरा है डिजिटल वर्ल्ड का, जहां छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए आज से फिट रहना ही नहीं, साइबर स्मार्ट रहना भी उतना ही जरूरी हो गया है।
1: एब्सोल्युटली साक्षी, आज हम अपने फोन में बैंकिंग भी करते हैं, पढ़ाई भी, शॉपिंग भी और एंटरटेनमेंट भी। लेकिन जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी ही स्पीड से साइबर फ्रॉड्स भी आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे खेल हमें सिखाता है कि हर मूव सोच समझकर खेलना चाहिए, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड भी हमसे हर क्लिक सोच समझकर करने की उम्मीद करता है।
0: तो आज की इस खास शाम में हम बात करेंगे दो ऐसे ही विषयों की जो हर युवा की जिंदगी से जुड़े हैं, साइबर सिक्योरिटी यानी डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की समझ, और स्पोर्ट्स यानी वो जज्बा जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाता है।
1: तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां मिलेगा नॉलेज भी, इंस्पिरेशन भी और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी भी।
0: और इसी शानदार शुरुआत के साथ आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत।

0: वाह क्या बात है, जिद्दी दिल की ये धुन हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी में हर चुनौती का सामना हिम्मत और भरोसे के साथ किया जाता है।
1: बिल्कुल वान्या, चाहे खेल का मैदान हो जहाँ हर खिलाड़ी अपने जज्बे से जीत हासिल करता है, या फिर डिजिटल दुनिया जहाँ हर क्लिक सोच समझ कर करना जरूरी है, सफल वही होता है जो सतर्क रहे। और इसी सोच के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज की बात की ओर।
0: साक्षी, शुरू करने से पहले आज सुबह मैंने ना एक दिलचस्प खबर पढ़ी थी। उसमें कहा गया कि आजकल 67% लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने वाले रिश्तों को खत्म कर रहे हैं और कम लेकिन अच्छी दोस्ती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
1: सच में वान्या, शायद इसलिए क्योंकि दोस्तों में संख्या नहीं, भरोसा और अपनापन ज्यादा मायने रखता है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, अगर आपको पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ 3 दोस्तों को चुनना हो तो आप क्या चुन पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सच्ची दोस्ती फॉलोअर्स या कॉन्टेक्ट से नहीं बनती बल्कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से बनती है।
1: बिल्कुल वान्या। वैसे पता है वान्या, अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हुआ। तो वो इंसिडेंट ये था कि मेरी फ्रेंड के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर KYC इमीडिएटली। उसने लिंक खोला और शायद वहीं अपनी डिटेल्स भर दी।
0: बस यही तो साक्षी आजकल का सबसे बड़ा साइबर ट्रैप है। दोस्तों, ऐसे फेक SMS, फेक कॉल्स और फेक लिंक्स आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना।
1: मतलब वान्या, सिर्फ एक क्लिक और हमारी सारी मेहनत की कमाई भी जा सकती है।
0: बिल्कुल साक्षी, इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड में जितना स्मार्ट होना जरूरी है उतना ही अलर्ट रहना भी जरूरी है। याद रखिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचिए। अपना OTP पिन या फिर पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और अगर कोई ट्रांजैक्शन समझ में ना आए तो तुरंत अपने बैंक और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत कीजिए।
1: वान्या, हम अपने घर का दरवाजा तो लॉक करके निकलते हैं, लेकिन कई बार अपने मोबाइल फोन का डिजिटल डोर जरूर खोल जाते हैं।
0: वाह साक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा है। एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
1: तो आज का हमारा छोटा सा टेक अवे बस इतना है, थिंक बिफोर यू क्लिक, क्योंकि सेफ क्लिक ही स्मार्ट क्लिक है।
0: और इसी सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। सुनिए एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि मुश्किलें चाहे कैसी भी हों,

0: वाह, क्या जोश, क्या जुनून। चकले इंदे का हर शब्द यही कहता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।
1: बिल्कुल वान्या, खेल सिर्फ मेडल जीतना नहीं सिखाता, ये हमें गिर कर फिर उठना, खुद पर विश्वास रखना और आखिरी पल तक हार ना मानना भी सिखाता है। और जब ऐसे ही जज्बे की बात होती है तो कुछ कहानियां सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं होती, वो पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की ओर, जहां आज हम जानेंगे एक ऐसे युवा खिलाड़ी की प्रेरणादायक सफलता की कहानी, जिसने अपने खेल, अपनी मेहनत और अपने हौसले से लाखों दिलों को अपनी पहचान बनाई है। वान्या, क्रिकेट टीम सिर्फ एक खेल नहीं, भारत में तो ये एक जज्बा है। और जब मैदान पर तिरंगे वाली जर्सी पहनकर

0: भी खिलाड़ी उतरता है तो सिर्फ रन नहीं बनते, करोड़ों उम्मीदें भी साथ चलती हैं। आज की मन से माइक्रोफोन तक की कहानी ऐसी ही एक युवा खिलाड़ी की है जिसने अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपनी मुस्कान और अपने आत्मविश्वास से भी लाखों दिलों को जीता है।
1: बिल्कुल साक्षी, हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स की। वैसे साक्षी, क्या आपने कभी गौर किया है, मैच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जेमिमा के चेहरे की मुस्कान शायद ही कभी गायब होती है।
0: बिल्कुल वान्या, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेशर कितना भी हो, स्कोर बोर्ड कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कभी नहीं बदलता। यही तो एक असली खिलाड़ी की पहचान होती है।
1: लेकिन साक्षी, ये सफर इतना आसान नहीं था। मुंबई की गलियों से लेकर भारतीय टीम की नीली जर्सी तक का सफर, अनगिनत घंटों की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और खुद पर अटूट भरोसे से होकर गुजरा है ये सफर। उन्होंने सिर्फ अपने शॉट्स पर नहीं बल्कि अपने माइंडसेट पर भी उतनी ही मेहनत की है।
0: और यही बात आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है वान्या। हम अक्सर सक्सेस देखते हैं लेकिन उसके पीछे की सुबह की प्रैक्टिस, बार बार की असफलताएं और लगातार सीखते रहने की आदत नहीं देख पाते। जेमिमा हमें सिखाती हैं कि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन मंजिल तक सिर्फ कंसिस्टेंसी ही पहुंचाती है। और वान्या, मुझे उनकी एक और बात बहुत पसंद है। वो मैदान पर अपनी टीम के लिए खेलती हैं लेकिन मैदान के बाहर वो हमेशा यंग गर्ल्स को यही संदेश देती हैं कि अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने की जिद हो।
1: बिल्कुल साक्षी, और शायद यही वजह है कि आज जेमिमा रॉड्रिक्स सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं लिखी जाती, जीत पहले इंसान के हौसले में जन्म लेती है।
0: इसी प्रेरणादायक एहसास के साथ चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनिए एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि सपनों की उड़ान हौसलों के पंखों से ही पूरी होती है।

0: जब हौसला, मेहनत और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा एक साथ मिल जाए तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है। अब वक्त है हमारे सबसे मजेदार सेगमेंट क्विक बज का, और आज हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम, ट्रू और ट्रैप। दोस्तों, आज भी हमारे साथ खेलिए और मन ही मन जवाब जरूर सोचिएगा। तो पहला सवाल साक्षी, अगर पासवर्ड में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ रख दें तो अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा ना?
1: अरे नहीं वान्या, ये तो हैकर्स के लिए सबसे आसान गैस होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही है जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का सही कॉम्बिनेशन हो। अब मेरी बारी, क्या सिर्फ टैलेंट के दम पर टीम इंडिया तक पहुंचा जा सकता है?
0: नॉट रियली साक्षी, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मेहनत, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ही आपको चैंपियन बनाती है। तो साक्षी, अगला सवाल, पब्लिक वाईफाई मतलब बिल्कुल सेफ ना?
1: बिग नो वान्या, फ्री वाईफाई अच्छा जरूर लगता है, लेकिन बिना सावधानी के इस्तेमाल करना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खतरे में डाल सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या हारने वाला इंसान भी कभी विनर बन सकता है?
0: बिल्कुल बन सकता है। हर चैंपियन की कहानी में हार का एक चैप्टर जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी नई शुरुआत करते हैं।
1: तो दोस्तों, आज के क्विक बस का टेक अवे बस इतना सा है, थिंक स्मार्ट, प्ले स्मार्ट एंड स्टे सिक्योर। और याद रखिए, मैदान हो या मोबाइल फोन, सही डिसीजन ही आपको विनर बनाता है। और इसी हौसले, जुनून और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जो मुश्किलों से डर जाए वो मंजिल तक कैसे पहुंचे।

0: तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, वो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपनी पहचान छोड़ जाती हैं। और 9 जुलाई भी ऐसी ही एक तारीख है। तो वानिया, एक सवाल पूछूं मैं आपसे?
1: जरूर साक्षी, पूछो।
0: अगर मैं कहूं कि आज की तारीख ने दुनिया को एक ऐसी परंपरा दी जिसे जीतना हर टेनिस खिलाड़ी का सपना होता है, तो क्या आप बता पाएंगी?
1: शायद ओलंपिक्स।
0: गुड गेस, लेकिन नहीं। आज ही के दिन, दैट्स 9 जुलाई 1877, दुनिया के सबसे खास टेनिस टूर्नामेंट विम्बलडन की शुरुआत हुई थी। सफेद ड्रेस कोड, हरी घास का कोट और खेल भावना की एक अनोखी पहचान। और यही वजह है कि सिर्फ यही एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि एक्सीलेंस का प्रतीक माना जाता है। और शायद इसी सीख से हर एक खेल के मैदान तक ये बात सीमित रहती है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या डिजिटल वर्ल्ड। हर जगह सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों, आज के टुडे इन हिस्ट्री से बस एक ही सीख, हिस्ट्री सिर्फ तारीखों से नहीं बनती, हिस्ट्री बनाने के लिए हौसला, मेहनत और निरंतरता चाहिए होती है।
1: बिल्कुल वान्या, और अब वक्त है इस प्रेरणादायक सफर में थोड़ी सी मधुरता और पुरानी यादों की खुशबू घोलने का। पेश है फिल्म कटी पतंग का सदाबहार गीत, श्याम मस्तानी।

0: Vanya, before we wrap up today's episode, can I ask you something? Not as my co-host, but as a friend.
1: अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है. पूछिए.
0: So if life was a match, would you play to win or just to avoid losing?
1: वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है. क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग सफल होने से ज्यादा असफल होने के बारे में सोचते हैं.
0: Exactly. We keep asking ourselves, what if I fail? What if people judge me? What if I'm not good enough? But how often do we ask this to ourselves, that what if I actually make it?
1: और शायद साक्षी, यही बात एक खिलाड़ी और एक चैंपियन के बीच का फर्क तय करती है. एक खिलाड़ी सही मौके का इंतजार करता है, लेकिन एक चैंपियन अपना मौका खुद बना लेता है.
0: True, Vanya. Whether it's a sports person preparing for a final or a student preparing for an exam, pressure is something everyone faces. But pressure doesn't decide your future. Your response to it does.
1: बिल्कुल. तो इस हफ्ते अपनी यात्रा की तुलना किसी और की सफलता से मत कीजिए. बस कल से बेहतर करने की कोशिश कीजिए.
0: Because medals may be won on the field, but champions are made long before the match begins. Through discipline, consistency and the courage to keep going even when nobody is watching.
1: और शायद आज के पूरे कार्यक्रम का सार भी यही है. खुद पर विश्वास रखिए, हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और कभी हार मत मानिए.
0: So here's a song that celebrates courage, determination and the spirit of never backing down. Presenting, आरंभ है प्रचंड

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: क्या ही शानदार सफर रहा आज का साक्षी। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने से लेकर खेल भावना का जश्न मनाने तक और ये समझने तक कि हर चुनौती एक नए अवसर में बदली जा सकती है।
1: एंड विद दैट, हियर इज अ थॉट दैट वी वुड लाइक टू लीव यू विद। द फ्यूचर डजंट बिलोंग टू दोज हु वेट, इट बिलोंग्स टू दोज हु डेयर टू बिगिन। We will be back with more stories, more conversations and more inspiration in our next episode. Till then, keep dreaming big, keep believing in yourself and keep listening to Yuvvani on Akashvani.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में श्री मोदी ने सिडनी में प्रवासी भारतीयों से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे मेलबर्न के लोगों से भी बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4था T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that 21st century India is

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अतुल भाई, हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम में अलग अलग लोक गीतों को लेकर। और सबसे पहला लोकगीत आप कौन सुनवाने जा रहे हैं?
1: तो सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को ऋषिपाल खदाना और उनके साथी की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: नाजुक नरम शरीर मेरा,
1: बहुत ही अच्छा और प्यारा लोकगीत अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुना, ऋषिपाल खदाना और मीनाक्षी की आवाज़ में। और कुसुम बहन अब अपने भाइयों को मनोरंजन करवाते और सुनवाते हैं।
2: अगले कलाकार हैं राजबाला, तो आइए सुनते हैं इनसे ये लोकगीत।

0: कह दी पिया जी, देवर से कोई घबराने की बात थोड़ी ना, वो तो बच्चा है, उसे तो एक चॉकलेट दे के अपने फेवर में कर लूंगी मैं।
1: लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
0: कह दे।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे राज बाला की आवाज में ये लोकगीत पियाजी तेरी एक ना मानूंगी फिल्म चंद्रावल देखूंगी।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और बहुत ही बढ़िया लोकगीत था। और अब चलते हैं आगे, और हमारी अगली कलाकार है सुधा श्रीवास्तव।
0: तो सुनते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज में ये लोकगीत।

0: यशोदा नंद को छलिया रही हमें जोगनिया बनाए गए रे। बहुत ही बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तवा को। और आइए आगे बढ़ते हैं अतुल भाई, अगले कलाकार कौन है हमारे?
1: तो सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई और उनकी पार्टी से ये प्यारा सा लोकगीत।

तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उनके साथियों की आवाज में ये सुंदर सा लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
1: अमीषा पटेल
0: का नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अमीषा, आज फुटबॉल वर्ल्ड कप की अंतिम जो 8 टीमें हैं उनके बीच मुकाबलों की शुरुआत आज की तारीख में होनी है। हालांकि भारतीय समय के अनुसार रात 1:30 बजे से ये मुकाबला होगा। फ्रांस की टीम आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरने वाली है और रनर्स अप है पिछली बार की, तो उस पर निगाहें हैं। साथ ही विंबलडन के मुकाबले भी चल रहे हैं और भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है। T20 सीरीज चल रही है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं आया है, आज चौथा मुकाबला होना है। तमाम खबरें हमारे पास शुरुआत

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने मुकाम की तरफ बढ़ चला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 48 टीमों का काफिला अब सिर्फ 8 टीमों तक सिमट गया है। भारतीय समय के अनुसार देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच मैच के बाद कारवां और सिमटता जाएगा। शेष 8 टीमों में से 4 सेमीफाइनलिस्ट, 2 फाइनलिस्ट और 1 चैंपियन टीम सामने आएगी। टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाने थे, जिनमें से 96 मैच खेले जा चुके हैं और 40 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। इनमें ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें भी शामिल हैं। फ्रांस और मोरक्को के अलावा स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने भी अंतिम 8 टीमों में अपनी जगह बनाई है। यूरोप में फुटबॉल का क्रेज उच्चतम स्तर पर माना जाता है। इसकी झलक क्वार्टर फाइनल की टीमों से भी मिलती है। 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से, स्पेन का बेल्जियम से, नॉर्वे का इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का स्विट्जरलैंड से होना है। 19 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होने वाले फाइनल तक पहुंचने के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो का होगा। हम आपको बता दें कि कतर विश्व कप 2022 के 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट में से 4 टीमों ने एक बार फिर अंतिम 8 में जगह बनाई है। इनमें अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और मोरक्को शामिल हैं। 2022 में इंग्लैंड को छोड़कर बाकी तीनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल पार किया था। अर्जेंटीना और फ्रांस फाइनल तक पहुंचे थे। इस बार भी दोनों टीमें ड्रॉ के अलग अलग हिस्से में हैं। ऐसे में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल देखने की संभावना बनी हुई है। बेल्जियम, मोरक्को, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की टीमें पहली बार विश्व चैंपियन बनने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। जहां तक फ्रांस और मोरक्को के बीच पहले क्वार्टर फाइनल की बात है, फॉक्सबर्ग के बोस्टन स्टेडियम में 2022 विश्व कप के बाद दोनों टीमों की ये पहली भिड़ंत होगी। ऐसे में एटलस लायंस इस बार उस हार का बदला लेने और जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगा। कोच दिदिर डैशचैम की टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है। फ्रांस ने अपने सभी 5 मुकाबले जीते हैं और 13 गोल किए हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी उम्मीद एक बार फिर एम्बाप्पे पर टिकी होगी। वे इस विश्व कप में 7 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में हैं। एक और गोल करते ही वे अब मेसी की बराबरी कर लेंगे। हालांकि फ्रांस के लिए मिडफील्डर ओरिलियन चुआमेनी की फिटनेस चिंता का विषय है। जांग की चोट के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। दूसरी ओर मोरक्को ने 2022 विश्व कप के ऐतिहासिक प्रदर्शन को इस बार फिर आगे बढ़ाया है। यह टीम ग्रुप सी में दूसरे स्थान पर रही। मोरक्को की नजर इस बार भी अपने खिलाड़ी उनाही पर होगी, जिनकी जवाबी हमलों की क्षमता फ्रांस की मजबूत रक्षा को चुनौती दे सकती है। हालांकि मोरक्को को अपने शीर्ष स्कोरर इस्माइल साबरी की कमी खल सकती है, जो हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे हैं। यदि वह नहीं खेल पाए तो सुफियान रहीमी को शुरुआती एकादश में मौका मिल सकता है। डिफेंडर चाडी रियाद भी पूरी तरह फिट नहीं है और उनकी जगह रेडवाने हलहल उतर सकते हैं। दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए बोस्टन में एक रोमांचक और कांटे की टक्कर की पूरी उम्मीद है। आज के मैच और क्वार्टर फाइनल की फेवरेट टीमों के साथ साथ सेमीफाइनल की संभावित टीमों के बारे में हमने बात की भारत की राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी अनादि बरुआ से।
1: पहला क्वार्टर फाइनल फ्रांस और उसके सामने मोरक्को की टीम है, क्या आज उम्मीद है इस मुकाबले को लेकर?
2: बहुत ही रोमांच वाला मैच होगा। 2022 में भी फ्रांस जीती थी, लेकिन इस बार मोरक्को थोड़ा अलग है। अफ्रीकन चैंपियन 2025 में बनी और बहुत अच्छा खेल रही है। बहुत बढ़िया फुटबॉल जो खेलना है, अप एंड डाउन फुटबॉल है। हर प्लेयर स्ट्रेंथ एजिलिटी बहुत अच्छा है और प्लेयर इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं। मैच में जो मजा आएगा फ्रांस वर्सेस मोरक्को के अंदर, दोनों का फॉर्मेशन सेम है, 4-2-3-1, 4-2-3-1। अब देखते हैं कि किसका पटला भारी है।
1: अगर फ्रांस की बात करते हैं, एम्बाप्पे के आसपास ही वो टीम घूम रही है। दूसरी तरफ पर अगर मोरक्को की बात करते हैं तो पूरी टीम एकजुट होकर खेलते हुए दिखाई दे रही है।
2: आपकी बात से एकदम सहमत हूं, क्योंकि एकजुट होकर खेलना और ऐसे खेलने में बहुत अंतर है। और ये अनबीटन 34 मैच खेल के जीत के आई है मोरक्को। रही बात इनके जो की प्लेयर है मेरिम डायज, ये अच्छे प्लेयर है। जो लास्ट मैच देखा था तो इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, जो बोलते ना हीरो मोरक्को टीम का। और लेकिन फ्रांस, क्योंकि ये बहुत तजुर्बेकार टीम है और कब पासा पलट दे कुछ नहीं पता फुटबॉल के अंदर।
1: और अगर क्वार्टर फाइनल के अन्य मुकाबलों की बात करें, स्पेन का सामना बेल्जियम से होना है, नॉर्वे को इंग्लैंड से खेलना है और अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड से खेलेगी, तो ये जो लाइनअप है क्वार्टर फाइनल का, इसमें कैसे आप देख रहे हैं टीम?

0: ये बहुत टफ हो गया है इस बार। इस वर्ल्ड कप में रोमांच ज्यादा रहा। रही बात स्पेन और बेल्जियम, बेल्जियम एक बहुत शक्तिशाली टीम है, स्पेन तो टिकी टाका खेलती है, लेकिन मेरे को लगता है नॉर्वे इंग्लैंड के मैच में दोनों टीमें सॉलिड है। एरियल फुटबॉल है, हैरी केन को लेते हैं, वो गोल मारता है हेड से, तो इसमें नॉर्वे उनके जो मेन प्लेयर है जो आराम से गोल मारते पूरे मैच के अंदर, दो या तीन टेस्ट करते हैं लेकिन गोल मारने में सक्षम है।
1: और एक मुकाबला रह गया अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का, इसमें फेवरेट टीम आपकी कौन सी है?
0: ये तो कहना, मेरे को तो अर्जेंटीना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेसी है और अच्छे प्लेयर है, लेकिन इसके पहले जो स्विट्जरलैंड टीम है और हर टीम के अंदर वो सॉलिड खेलती है, इनका जो गेम है वो यूरोपियन स्टाइल में बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलती है और बड़े बड़े झटके भी उन्होंने सब टीमों को दिए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि उनके 72 साल के बाद ये पहुंचे हैं तो बड़ा मैच अच्छा होगा।
1: फेवरेट टीमों की अगर बात करें सेमीफाइनल की तो वो आपकी लाइनअप क्या होगी?
0: देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मेरे को लगता है फ्रांस भी आ सकता है, बेल्जियम भी आ सकती है और अर्जेंटीना को समझ में नहीं आ रहा क्या कहूंगा अभी। नॉर्वे और इंग्लैंड को भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड अच्छी टीम है, खेल के ऊपर है, जो जीता वो सिकंदर।
2: जी तो अब चलते हैं क्रिकेट के पिच की तरफ, जहां आज भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। नॉटिंगम में भारतीय टीम को निराशा का सामना करना पड़ा था क्योंकि इंग्लिश टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत के हाथों से 125 रनों से जीत छीन ली थी, जो भारत के T20 इंटरनेशनल्स के इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। नॉटिंगम में भारतीय टीम के लिए सुधार के कुछ केंद्र भी दिखे। पिच की मांग को देखते हुए जहां अधिक धैर्य और सावधानी से खेलने की जरूरत थी, वहीं टीम अपनी अति आक्रामक रणनीति में बदलाव नहीं कर पाई। जोफ्रा आर्चर और जॉश टोंग की रणनीति बेहद साधारण थी, जो कि बॉल को शॉर्ट रखना था। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 7 विकेट चटकाए। उनकी तेज रफ्तार और एक्स्ट्रा बाउंस के सामने भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। भारत की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि
3: You're absolutely so. You don't become a batting something if the opposition plays better than you. You don't assess the conditions better. You don't read the conditions better. Sometimes reading the game is equally important as well. So we haven't done that since Ireland. And there are the results. If you don't read the conditions and you don't play the conditions better, you will end up being on the losing side. If you see the last two T20s, we've got 190 on the board in both the T20 games. So sometimes when you play a high-risk, high-reward game, these things can happen. You can get bundled out for the score, and that is what has made us successful, and we'll try and continue to play the same way. We've always believed that in a T20 game, it's all about going out there and expressing yourself, and sometimes you do get the results, and sometimes you don't get the results.
2: T20 इंटरनेशनल में 2018-19 के बाद भारत पहली बार लगातार दो सीरीज हारने के मुहाने पर खड़ा है, और इससे बचने के लिए भारत को इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में अंतिम दोनों मुकाबले जीतने होंगे। वहीं अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच खेले गए कुल 33 T20 इंटरनेशनल में से भारत के खाते में 18 और इंग्लैंड के खाते में 14 मुकाबले आए हैं, और एक मुकाबला बिना किसी परिणाम के रहा है। पिच की बात करें तो ब्रिस्टल की पिच में पारी की शुरुआत में सीम गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीदें हैं, क्योंकि यहां लगातार गति और उछाल देखने को मिल रहा है। शुरुआती उछाल कम होने के बाद बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, जिसमें खिलाड़ी बीच के ओवरों में खुलकर शॉट खेल सकेंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड बेहतरीन लय में है, जहां जॉस बटलर से कप्तानी हैरी ब्रुक के पास जाने के बाद इंग्लैंड ने इस प्रारूप में अपने पहले के पूर्व मैचों में से 18 मुकाबले जीते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इतिहास में एक बेहद दिलचस्प रिकॉर्ड है। जब भी इन दोनों के बीच कम से कम दो या उससे ज्यादा मैचों की T20 सीरीज खेली गई है, इंग्लैंड उसमें भारत को एक भी सीरीज नहीं हरा पाया है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ जो सीरीज जीती है वो सभी सिर्फ एक मैच की एक लौती सीरीज थी, यानी मल्टी मैच सीरीज में भारत का दबदबा हमेशा कायम रहा है। हालांकि इस बार उनके पास एक सुनहरा मौका है। अगर इंग्लैंड यह सीरीज जीतने में सफल हो जाता है तो यह निश्चित तौर पर ब्रूक और ब्रेंडन मैकलम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं अगर बात करें महिला क्रिकेट की तो 10 से 13 जुलाई के बीच क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मैदान और क्रिकेट का घर कहे जाने वाले लॉर्ड्स में इतिहास रचा जाएगा। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स पर आयोजित होने वाला पहला महिला टेस्ट मुकाबला होगा। खास बात यह है कि इस मैदान पर पुरुषों का पहला टेस्ट मैच 142 साल पहले खेला गया था, लेकिन महिला टेस्ट का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। महिला टेस्ट क्रिकेट और पुरुष टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा अंतर मैच की अवधि का है। महिला टेस्ट 4 दिनों का होता है, जबकि पुरुष का टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। अगर दोनों टीमों की हालिया फॉर्म की बात करें तो T20 विश्व कप में इंडिया सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका था, जबकि इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वहीं इंग्लैंड ने भी अपना पिछला टेस्ट गंवाया था। हालांकि आमने सामने के रिकॉर्ड में इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले 4 टेस्ट मैचों में से 3 जीते हैं और 1995 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं हारा है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की सरजमी पर भी इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उसने अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। मैच के पहले इंडिया को एक बड़ा झटका भी लगा है, जहां सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल घुटने की चोट के कारण यह एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर हो गई है। उनकी जगह प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंडिया ए के लिए लगातार 2 अर्धशतक लगाकर शानदार फॉर्म दिखाई है। इस बीच भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार ने टीम की तैयारियों और इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: It just boggles my mind that it's just the first test match here at Lord's. But having said that, really fortunate and you know, would like to extend my wishes to everyone who is involved in this, and it's a great occasion, and we're looking forward to it. I mean, it's a dream to play a test match for any Indian cricketer, leave alone you know, playing at Lord's. So I'm sure you know everyone who would wear those whites tomorrow would be proud of them being there at Lord's to play the test match. And we've always maintain this in the dressing room that we've done traditionally. We have done really well in the test matches, and everyone was talking about the test match at Lord's even before the World Cup started. So I guess the time is now. So I guess they'll be excited about it. I would like to say that Pratika Rawal has been ruled out of the test match due to her injury in the India A match. She's got a cut on her knee, which required some stitches. So I guess she's out for the test match, and Priya Punia has been added into the squad. I think all we need to do is just stay in the present. You know, what is gone, we cannot change it. We know it, we have discussed about it as within the squad, and we can't change that what has happened. All we need to do is look forward and you know, prepare the best we can for the event ahead. So I guess that's been the talk, and that's, you know, I'm sure, you know, all the players are looking forward for the test match.
2: दोनों टीमों में कई नए चेहरे शामिल हैं। इंडिया की ओर से हरलीन देओल, श्रीचरणी, नंदिनी शर्मा और साइली सदघरे पहली बार टेस्ट क्रिकेट में मौका पा सकती हैं। वहीं इंग्लैंड ने भी एलिस कैप्सी, एलेनोर थ्रेलकेल्ट एंड टिली कॉटिन कोलमैन जैसे युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। इस मुकाबले में इंडिया की नजरें कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंदना पर होंगी, जबकि इंग्लैंड के कप्तान नैट सेवरब्रंट से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। कुल मिलाकर 10 से 13 जुलाई तक लॉर्ड्स में खेला जाने वाला यह एकमात्र टेस्ट मैच महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है।
5: ये तो थी बात क्रिकेट की, और अब टेनिस का भी तो रोमांच चल रहा है। विंबलडन में एक से बढ़कर एक मुकाबले चल रहे हैं, सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, कल पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। बात विंबलडन की ही करते हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस के मुकाबले सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाने हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल कल होंगे। महिला वर्ग के अंतिम 4 के पहले मैच में कोको गॉफ का सामना कैरोलिना मुचेवा से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोस्तियुक बनाम लिंडा नोस्कोवा के बीच टक्कर होगी। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 7वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए हमवतन और 4थी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से हराकर पहली बार विंबलडन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेंटर कोर्ट पर खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गफ ने एक सेट से पिछड़ने के बावजूद दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। उनका पावर खेल और वापसी की ताकत खासियत रही है। उधर 14वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने भी अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अपने खेल में निरंतरता के लिए मशहूर 29 वर्षीय मुचोवा ने अपनी एथलेटिक क्षमता और शॉट की विविधता के दम पर क्वार्टर फाइनल के एक रोमांचक मुकाबले में जापान की चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नौमी ओसाका को 7-6, 6-4 से हरा कर कोको गफ के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलने की पात्रता हासिल की है। मुचोवा अब तक चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक तो पहुंची हैं, लेकिन चैंपियन नहीं बन सकी हैं। देखना होगा कि इस बार उनका सपना पूरा होता है या नहीं। दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की एक और खिलाड़ी 9वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा ने जगह बनाई है। कल कोर्ट 1 पर भीषण गर्मी के बीच 1 घंटे और 50 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नोस्कोवा ने शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा और बेल्जियम की एलिस मर्टेस के खिलाफ 6-3, 7-5 से जीत हासिल करके विंबलडन के अपने पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब 21 वर्षीय नोस्कोवा का सामना आज सेमीफाइनल में यूक्रेन की 12वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्त्युक से होना है। उधर यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक भी अपने करियर के पहले विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंची हैं। कोस्त्युक ने कल अंतिम 8 में सेंटर कोर्ट पर इटली की जैस्मीन पाओलिनी के खिलाफ 6-3, 6-2 से जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये मुकाबला सिर्फ 1 घंटा और 9 मिनट तक चला। अब आइए सुनते हैं कि कोस्त्युक ने अपनी क्वार्टर फाइनल जीत के बाद क्या कहा।
6: It was a very good match. Happy was the performance. I think I did everything well tactically. And it's never easy to go out for the first time on the center court. I didn't know how I'm going to handle this and how I'm going to perform. So happy with everything. It was more expected to happen on clay for myself. So I don't know. I feel like grass season is generally so short that it's always difficult to predict how it's gonna go and how you're gonna adapt to it. So I don't know. I think I'm gonna go with clay still, but we'll see. Maybe if I win, I'm gonna say it's something different. Well, I think I worked on a lot of things for a long period of time, and I cannot point out some.
5: महिला सिंगल्स की सेमीफाइनल लाइनअप से साफ लगता है कि दोनों मैच कांटे के होंगे। एक छोटी सी भूल भी किसी खिलाड़ी के सपने को तोड़ने के लिए काफी होगी, चाहे जो भी हो। लेकिन इस बार महिला सिंगल्स में कोई नया विजेता मिलना तय है। मेंस सिंगल्स में आज कोई मैच नहीं है, लेकिन कल होने वाले सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है। अंतिम चार का पहला मैच गैर वरीय और वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री पाने वाले ब्रिटिश खिलाड़ी आर्थर फेरी और दूसरी सीट जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 7वीं वरीयता वाले चेक गणराज्य के महारथी नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर के बीच होना है। अनजान से खिलाड़ी फेरी ने कल क्वार्टर फाइनल में सबको हैरान करते हुए 9वीं वरीयता वाले इटली के फ्लाविओ कोबोली को 3 सेट के आसान मुकाबले में 6-4, 7-6, 6-0 से पराजित किया। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल मैच में अमेरिका के टेलर फिट्स को लगातार सेट में 6-4, 6-4, 6-2 से मात दी। इस शानदार जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल खेले गए अपने क्वार्टर फाइनल मैच में ज्वेरेव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फिट्स को कोई भी ब्रेक प्वाइंट नहीं हासिल करने दिया। ग्रास कोर्ट पर यह जीत ज्वेरेव के लिए बेहद खास रही, जो उनके शब्दों से भी जाहिर हुआ।
7: Happy to be in the semi-finals for sure. I think especially against someone like Taylor, who I struggled with over the past 2 years. It's been a pretty one-sided tennis match that always went his way. So I'm very pleased with how I played, and to be in the semi-finals is great. I think winning Roland Garros definitely helps for sure. There's no question about it. But I think, I changed my game a bit for grass, and it's working quite well this year. I think I spoke about it the previous matches, my return position, my position generally on court has changed. And I tried it the last couple of years, but I never felt comfortable doing it, which this year feels a bit different. So, of course, I'm very pleased and very happy about that.
5: विंबलडन की ही बात करें तो बालक वर्ग में समय भारत के अर्णव विजय का मुकाबला अमेरिका के जॉर्डन ली के साथ चल रहा है और वहां से खबर ये आ रही कि पहला सेट जॉर्डन ली ने 6-2 से जीत लिया है। दूसरे सेट में भी ली ने 4-3 की बढ़त बना ली है और इस समय वापसी करनी होगी भारतीय खिलाड़ी अर्णव विजय को अगर इस मुकाबले को जीत कर आगे बढ़ना है। और अब चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग में, वहां पर क्या कुछ हो रहा है बता रही है हमारी साथी।
8: ए
2: एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाजों ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: 51 किलोग्राम वर्ग में तनु ने थाईलैंड की केवाली नौरा सिंह को 5-0 से हराया। 54 किलोग्राम वर्ग में निशा ने कजाकिस्तान की अलियाक सर सिम्बात को 5-0 से मात दी। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने कोरिया की ये जिन ओ को पहले राउंड में आरएससी के आधार पर हराया। 60 किलोग्राम की बात करें तो 60 किलोग्राम वर्ग में निकिता चांद ने चीनी ताइपे की शेन युवांग ये को तीसरे राउंड में आरएससी से पराजित किया। वहीं 65 किलोग्राम वर्ग में काजल ने जापान की अरिंदा अकीमोटो को 4-1 के विभाजित फैसले से हराया। वहीं 48 किलोग्राम वर्ग में निधि को कजाकिस्तान की गुलनाज बुरीबाएवा के खिलाफ 3-2 के विभाजित फैसले से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मुक्केबाजों में तनु 51 किलोग्राम, निशा 54 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम, निकिता चंद 60 किलोग्राम, काजल 65 किलोग्राम, शिवानी 70 किलोग्राम, मुस्कान 75 किलोग्राम, नैना 80 किलोग्राम और प्रियंका प्लस 80 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही इन सभी ने अपने अपने वर्ग में कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह प्रतियोगिता 5 से 16 जुलाई तक जकार्ता में आयोजित की जा रही है और भारत के उभरते मुक्केबाजों के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच है।
1: और अब बॉक्सिंग से चलते हैं आर्चरी की तरफ। मैड्रिड में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 के मुकाबले चल रहे हैं और रिकर्व मेंस क्वालिफिकेशन से भारत के लिए मिलीजुली खबर है। भारत के धीरज बोम्बा देवरा दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन में रहे, नीरज चौहान 8वें, अतानु दास 26वें नंबर पर रहे, यशदीप भोगे 54वें नंबर पर रहे और वीमेन्स क्वालिफिकेशन में कीर्ति शर्मा 4थे, कुमकुम महोद 14वें, अंकिता भगत 15वें, दीपिका कुमारी कुल मिलाकर जो है वो सबसे नीचे 56वें स्थान पर रही। यशदीप भोगे को छोड़कर सभी भारतीय पुरुष खिलाड़ी रिकर्व के एकल मुकाबले के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला रिकर्व में दीपिका बाहर हो गई हैं जबकि सिंगल्स में कीर्ति, कुमकुम, अंकिता तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में अमरीका से 0-6 से हार गई है और महिला टीम 2-6 से क्वार्टर फाइनल में पराजित हुई है। रिकर्व और कंपाउंड मिक्स टीमों के शुरुआती मुकाबले भी आज होने हैं और वहां उम्मीद है कि भारतीय निशानेबाजों के जो हमारे तीरंदाज हैं उनके निशाने सटीक लगेंगे और बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएगा। अब बात एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की जो ऑडोस चीन में चल रही है और हैमर थ्रो में वहां से खबर यह है कि पुरुष वर्ग में भारत के हर्षित कुमार 6ठे स्थान पर रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 54.44 मीटर का रहा। स्वर्ण पदक चीन ने जीता। महिला वर्ग में हैमर थ्रो में भारत की कोई चुनौती नहीं थी। 800 मीटर पुरुष वर्ग की जो दौड़ है उसमें शकील और विनोद कुमार बनोत फाइनल में पहुंच गए। दोनों ने काफी बढ़िया प्रदर्शन अपने अपने हीट में किया। महिला वर्ग में वैष्णवी रावल और भुवनेश्वरी देवी ने भी बेहतर प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बना ली है। भुवनेश्वरी देवी ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है वैष्णवी के साथ साथ। और चलते हैं एक बार फिर क्रिकेट की तरफ। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी घोषणा 11 जुलाई को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में होगी। गांगुली हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर होंगे। 54वें जन्मदिन पर गांगुली को यह बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। इसी दिन उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक भी जारी किया जाना है और हम आपको बता दें कि जो गांगुली हैं वो मैच फिक्सिंग विवाद के बाद 2000 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ और बाद में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। उनकी कप्तानी में भारत ने 2002 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2003 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, 2004 में पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती और ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचों की टेस्ट जीत की लय को भी तोड़ा था। गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट में 7212 रन बनाए जिसमें 16 शतक शामिल हैं। 311 वनडे में उनके नाम 11363 रन और 22 शतक दर्ज हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 132 विकेट भी लिए। बल्लेबाज

नाराजगी के बाद वे बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जानकारी यह भी है कि गांगुली के शामिल होने के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के खिलाड़ियों की संख्या 12 हो जाएगी। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी, नीतू डेविड और महेंद्र सिंह धोनी ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। तो ये खबर क्रिकेट के मैदान से, और अब शतरंज के बिसात पर भी चलते हैं। पुणे में भारत के शीर्ष वरीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक के साथ खिताब जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अश्वथ एस 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे और इसी के साथ उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत का 98वां ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। ग्रैंड मास्टर कुशाग्र मोहन ने 6.5 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि पुणे के फिडे मास्टर अद्विक अग्रवाल ने 5 अंक के साथ अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नॉर्म हासिल किया। 9वें और आखिरी दौर में अभिजीत ने श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर LMST डिसिल्वा को हराकर खिताब अपने नाम किया।

0: बेंगलुरु में हिताशी बक्सी ने हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 10वें चरण के पहले दौर में 2 अंडर 70 का स्कोर बनाकर शानदार वापसी की और 2 शॉट की बढ़त हासिल कर ली। मेरिट ऑर्डर में शीर्ष पर चल रही हिताशी ने प्रेस्टीज गोल्फ शायर में 6 बर्डी लगाई, लेकिन साथ ही एक डबल बॉगी और 2 लेट बॉगी भी गंवा दी। वो 2 अन्य अनुभवी सितारों अमनदीप ड्राल और नेहा त्रिपाठी से आगे हैं, क्योंकि वो मुख्य तिकड़ी बनाते हैं। प्रतिभाशाली शौकिया खिलाड़ी मन्नत बरार, खुशी खनिजो, अनिशा अगरवाला और जैस्मिन शेखर सहित 4 खिलाड़ी 2 ओवर 74 के स्कोर के साथ 4th स्थान पर बराबरी पर हैं। 9वें चरण की विजेता विधात्री उर्स, जिनके राउंड में 3 बॉगी और कोई बर्डी नहीं थी, ने कीर्ति चौहान के साथ 8वां स्थान साझा किया, जबकि रिया झा, आस्था मदन और शौकिया खिलाड़ी कीर्तना राजीव ने 4 ओवर 76 पर 10वां स्थान हासिल किया। हिताशी ने हाल ही में सिंगापुर लेडीज मास्टर्स में 3रा स्थान हासिल किया था। उन्होंने पहले 9 होल में 5 बर्डी और 8वें होल में 1 और बर्डी लगाई। हिताशी ने बर्डी के साथ राउंड की शुरुआत की और 5वें से 7वें होल तक 3 और बर्डी लगाई। 8वें होल पर उन्होंने डबल बॉगी लगाई और फिर 9वें होल पर 1 शॉट वापस किया। उन्होंने 3 अंडर 33 का स्कोर बनाया। और लड़कों के वर्ग में विंबलडन से खबर यह है कि विजय ने वापसी कर ली है और जो मुकाबला चल रहा है उसके 2रे सेट में वे 5-5 की बराबरी पर हैं। और अब घड़ी की सुइयां कह रही है कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ अपने दोस्त धर्मेंद्र और
1: अमीशा पटेल
0: को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको

0: 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India driven by the mantra, Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
2: While crediting the Indian community for strengthening bilateral

0: अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्चक्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मंडलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम अनवरतम समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारंभः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखंड राज्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यांतर्गतं निर्धारितान् वयस्क

0: राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम
1: राम, राम। तो कुसुम बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के, और भाई आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें हम अपने भाइयों का मनोरंजन करते हैं भाई उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा। लेकिन हम समय समय पर अपने सभी बहन भाइयों से भाई चर्चा भी करते रहते हैं।
0: बिल्कुल चर्चा भी करते हैं और लोक संगीत का भी आनंद लेते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्राम संसार का कार्यक्रम है तो हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए हम बताते हैं कि जो मेले जो होते हैं ना अतुल भाई, उसका क्या सामाजिक और आर्थिक महत्व होता है। बहुत ही महत्व होता है उसका, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक समरसता और आजीविका के मुख्य आधार है भारत। ये ग्रामीण संस्कृति को संरक्षित करते हैं, स्थानीय कारीगरों को रोजगार प्रदान करते हैं और सीधे उपभोक्ताओं तक कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प पहुंचाकर स्थानीय बाजार को गति देते हैं ये मेले।
1: बिल्कुल, देखिए ये जैसे कि आपने बताया है ना, ग्रामीण समाज, ये समाज परंपरा, समुदाय और प्राकृतिक वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध को बहुत महत्व देते हैं कुसुम बहन। और ग्रामीण समाजों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खाद्य उत्पादन और संसाधन प्रबंधन में मूलभूत भूमिका भी निभाते हैं। और जैसे कि आपने बात कही है मेलों की, तो आर्थिक संस्था के तौर पर विभिन्न मेले असंख्य कुशल लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल अतुल भाई, क्योंकि जहां तक आर्थिक महत्व की बात है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि रोजगार और आय का साधन है। मेलों में स्थानीय कारीगर जैसे कुम्हार, छोटे व्यापारी अपने उत्पाद बेचकर अपनी आय कमाते हैं, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ का काम करते हैं। और यहाँ पे जो मेले होते हैं इसमें ग्रामीण मेलों में बिचौलियों का कोई काम नहीं होता, सीधा व्यापार होता है, तो इसलिए किसानों और कारीगरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है।
1: बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है एक गति मिलती है। और कहते हैं ना कि देखिए जो इनके जीवन यापन हेतु मेलों की जो दुकानें होती हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी होती है। और ये मेले वाले जो हैं, आपने देखा होगा कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, जो है ये अलग अलग गांवों में अपनी दुकानें जो हैं और स्टॉल लगाते रहते हैं।
0: बिल्कुल, और अतुल भाई ये एक तरह से जो मेले होते हैं ना, वो कहते हैं कि कृषि विपणन का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है। वो अपने जो भी उनकी वस्तुएं होती है पारंपरिक मेलों में, कृषि उपकरणों, बीजों और पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देती है और पर्यटन और स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो सामाजिक महत्व भी है कि सांस्कृतिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है, पारंपरिक मनोरंजन करवाती है, रिश्तों का जुड़ाव और बहुत सारे कार्यक्रम एक जगह
1: बिल्कुल
0: हो जाते हैं।
1: इन मेलों के माध्यम से समाज में लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। भाई कोई मेला यहाँ लगा है, कोई 20-25 किलोमीटर बाद में लगा है जाकर के, तो वहां भी लोग जाते हैं, एक दूसरे से लोगों से मुलाकात होती है, मेल जोल बढ़ता है और आर्थिक सहायता भी एक दूसरे की हो जाती है। भाई क्या आप जैसा कि आपने बताया है कि कृषि जुड़े हैं, चाहे वो पशुओं का व्यापार हो या अपनी अनाज की कोई मंडी हो या अपनी कोई फसल बेचने जाना हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किसान
0: भाई। और एक और बड़ा बात होती है इन मेलों का, जो महत्व ये होता है कि मेलों के माध्यम से सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और नई कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक भी कराती हैं।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी भाई ग्रामीण मेलों का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व क्या है। और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो हैं योगेश शर्मन, के लिए भी SMS हमारे पास में आ गई हैं। देखिए ये SMS हमें मिला है रामगढ़ कैंट से, भेजने वाले हैं महेंद्र मोदी और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और इनका पूरा परिवार। भोला कलानी घरौना जिला करनाल हरियाणा से हमें SMS मिला है, भेजने वाले हैं बिजेंद्र कुमार जयजान और इनका पूरा परिवार। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामूरिया और इनका पूरा परिवार। गांव चौहल्दा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढेंगिया और इनका पूरा परिवार।
0: बिल्कुल, और योगेश शर्मा को ही सुनना चाहते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम नबी अजारी, और ये भेजा है मैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। बेहर वाला सुर्ख सिरसा से बलवंत जाखड़ और समस्त जाखड़ परिवार का भी हमें SMS मिला है। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश और समस्त परिवार का भी हमें मेल आया है।
1: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाई भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मेलोट पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। गाँव फरासी जिला हिसार से फरमाई भेज रहे हैं राजकुमार डुड्डी और इनका पूरा परिवार।
0: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और उनका समस्त परिवार, उन्होंने मैसेज भेजा है हमें, एसएमएस किया है शारदा सिन्हा। इन्होंने कहा है कि कोई भी रागनी सुनवा दें और महेंद्र मोदी और समस्त परिवार की फरमाइश है। इसके अलावा हमें नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणि से भी हमें एसएमएस आया अकरम हुसैन और समस्त परिवार का। इसके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो और रोजी डिकेस्ट्रो और समस्त परिवार का भी हमें एसएमएस आया है।
2: नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश।

0: विजनी मुर्शद जहानाज और उनका पूरा परिवार। फातिमा कलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं नासिर शेख और इनका पूरा परिवार। संबलपुर काकेर से फरमाइश भेज रहे हैं फाकुराम यादव और इनका पूरा परिवार। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और इनका पूरा परिवार। योगेश शर्मा को ही सुनना चाह है जिला नादेड़ ऐताला महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं शंकरलाल जायसवाल और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से हमें फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ हमें फरमाइश भेज रहे हैं भाई पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। ये फरमाइश हमें मिली है सोन बिल कुदाली आसाम से भेजने वाले हैं हितेंद्र दास मनहस दास और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव खोकरावली श्रीगंगानगर से भेजने वाले हैं विनोद वारसा और इनका पूरा परिवार।
1: जी हाँ, और योगेश शर्मा को ही सुनना चाहते हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इसके अलावा हमें मैसेज भेजा है दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का। भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज आया धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार का। साथ ही हमें ये मैसेज आया है पलारी छत्तीसगढ़ नितेश कुमार देवांगन और समस्त देवांगन परिवार का जो सुनना चाहते हैं योगेश शर्मा को।
0: चंडीगढ़ से हमें फरमाइश मिली है भेज रहे हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें फरमाइश भेज रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी और इनका पूरा परिवार। कलानौर से हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश रहे मेहर अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर योगेश शर्मा की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे योगेश शर्मा की आवाज़ में ही रागनी, और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो है लोकेंद्र। इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गई हैं। ये SMS मिला है सूरतगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिश्रा और उनका पूरा परिवार। मेरठ कैंट से हमें फरमाइश भी रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। और ये फरमाइश हमें मिली है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं रोशनलाल देवांगन और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश भेजने रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश भेजने PS नाहवकर और इनका पूरा परिवार।
1: और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायड़े और समस्त तायड़े परिवार का भी हमें मैसेज आया है, ये भी सुनना चाहते हैं लोकेंद्र को। साथ ही छत्तीसगढ़ डोगरा गाँव से राष्ट्रपाल और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। इसके अलावा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता और समस्त परिवार का भी मैसेज आया है, जिसमें उन्होंने फरमाइश की है सुनना चाहते हैं लोकेंद्र को।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से हमारे पास फरमाइश है, भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल और उनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार। चक 5 MD पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार। खेल बाजार पानीपत से फरमाइश भेज रहे हैं नरेश मल्होत्रा नीटू और इनका पूरा परिवार। संत रोहिदास रेडियो श्रोता संघ पोस्ट मुंगी सेवा गांव जिला अहिल्यानगर से फरमाइश भेजने बाबा साहेब कंगणकर और इनका पूरा परिवार। गांव खारी अढ़ानी जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश भेजने सतवीर सिंह बिजनारिया और इनका पूरा परिवार। GTV मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेजने मोहम्मद अनवर

0: अंसारी और इनका पूरा परिवार।
1: दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजार और समस्त परिवार, इन्होंने फरमाइश की है लोकेंद्र की। और साथ ही हमें मैसेज आया है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और समस्त परिवार का। घनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी और नौशाद सलमानी और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया। इसके अलावा हमें मैसेज आया है बटिंडो रोड मंडी डबावली से राजेंद्र नारंग और समस्त नारंग परिवार का। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें दिनेश वर्मा करुणा वर्मा का भी मैसेज प्राप्त हुआ है। इन्होंने भी फरमाइश की है सुनना चाहे लोकेंद्र को। छत्तीसगढ़ हमदा नंबर 2 से कमलेश साहू और समस्त साहू परिवार का भी हमें मैसेज आया है। इसके अलावा दादरी गेट से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा और समस्त मेहरा परिवार का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। हरीश चंद्र तारा मती को भी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हमें फरमाइश की है फरमाइश करता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी और समस्त मिगलानी परिवार।
0: पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन, इनका पूरा परिवार। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन शाह और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय और इनका पूरा परिवार। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से भी फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमें मिली है गांधीनगर गुजरात से भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं महिपाल सिंह शौरान और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजेवा से फरमाइश भेज रहे हैं शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर लोकेंद्र की आवाज में ये रागनी।
2: धरती की

0: धरती की शोभा सृष्टि रवि तारे चांद गगन की, भाई बहुत ही सुंदर उपदेशिक रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी लोकेंद्र कुमार की आवाज में।
1: बिल्कुल अतुल भाई, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन है और इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों विशेषकर गरीब और कम आय वाले परिवारों को बिना किसी न्यूनतम राशि यानी जीरो बैलेंस के बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है।
0: बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बताया है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब प्रधानमंत्री जी ने लागू की तो इसके अवसर को गरीबों यही लागू इसलिए ही लागू किया कि गरीबों को दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का उत्सव जो है प्रधानमंत्री जी ने बताया। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन भी से कहा, जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन प्रदान करना और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था। और देखिए और होता क्या है कि इसका उद्देश्य यही है कि हर घर के लिए कम से कम एक आधिकारिक बैंक खाता
1: बिल्कुल
0: अवश्य हो।
1: और अतुल भाई, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खाता किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास शून्य बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। तो इसमें ऐसा कोई शंका नहीं आती किसी के मन में कि आपके पास पैसे नहीं है।

0: खाता जाके खोल सकते हैं, जब भी पैसे आए तो आप उसमें डलवा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा इस योजना के द्वारा, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी और लाभ सीधे इस खाते में आते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए आप ऋण भी ले सकते हैं, बीमा भी करा सकते हैं, पेंशन भी इसमें आ सकती है आपकी, और वैसे बहुत ऐसी वित्तीय सेवाएं हैं जो आप उससे ले सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो रही भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकारी। और SMS भी देखिए हमारे पास में काफ़ी आ चुके हैं हमारे सभी भाइयों के, तो इन्हें भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और ये SMS हमारे पास में जो आया है कुसुम बहन, ये मिला है हमें भाई कुलम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में आया है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेजी थी हमें मुकेश बत्ता और इनके पूरे परिवार ने। बक्सर बिहार से हमारे पास में फरमाइश भेज रहे हैं सफुद्दीन अंसारी और इनका पूरा परिवार। डुमराव बिहार से भी हमारे पास में फरमाइश भेजने वाले हैं डॉक्टर W अंसारी इनका पूरा परिवार। सहारनपुर बक्सर से फरमाइश भेजी राजा SD अंसारी और इनके पूरे परिवार ने।
0: बिल्कुल, और सुरेंद्र सिंह भाटी को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। सुनील पाठक और समस्त पाठक परिवार। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर और समस्त परिवार की फरमाइश आई है। इसके अलावा दंतरेगी के भागत से भागत वर्मा शांति देवी और समस्त परिवार का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। गांव लोहगढ़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत और समस्त प्रजापत परिवार का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी और सीता और गीता इन्होंने भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई है। गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है।
1: और ये फरमाइश हमारे पास में ही कुविदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बलराम बया और इनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई थी खेल बाजार पानीपत से भेजने वाले हैं नरेश मल्होत्रा नीटू और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे हमें मिली थी गाँव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले से रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। तो सभी श्रोताओं की फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हुए अपने सभी श्रोताओं से भाई विदा लेते हैं। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों

0: को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 7:05 हो चुके हैं और ये समय है अगले कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। तो कुसुम बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और इसमें भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा भी होगी और बातचीत सुनवाएंगे, योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और मनोरंजन तो हमेशा की तरह होगा ही।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अतुल भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक सुनवाते हैं बातचीत। मक्का एवं बाजरा फसल का प्रारंभिक प्रबंधन डॉक्टर रमनजीत कौर, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। आइए सुनते हैं।
0: तो उसमें लेते हैं थोड़ी सी जानकारी।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आज बातचीत करेंगे मक्का एवं बाजरा फसल का प्रारंभिक प्रबंधन। और आज विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रमनजीत कौर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज जैसे कि हमारा विषय है मक्का एवं बाजरा फसल का प्रारंभिक प्रबंधन, तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि मक्का और बाजरे की खेती कब की जाती है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और किस तरह का मौसम जरूरी है।
1: सबसे पहले तो किसान भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो जो आज का समय चल रहा है मॉनसून सीजन, वैसे तो मक्का की बिजाई जो है सारा ही सीजन चलती है, सारा साल, तो ज्यादातर जो 80% बोलते हैं जो खेती है मक्का की, और लगभग 90% खेती जो बाजरा की है वो इसी सीजन में होती है। इसको जो हम बोलते हैं खरीफ सीजन
0: जी,
1: जो वर्षा ऋतु वाला होता है, और वर्षा आधारित ही खेती होती है दोनों फसलों की ज्यादा, और ज्यादा पानी की जरूरत इनको नहीं पड़ती। और मिट्टी जो है, एक तो इनका जो जलवायु है, पहले बताएं कि जलवायु जो थोड़ा सा गर्म वाला और थोड़ा सा ह्यूमिड जो बोलते हो आप, जैसा आजकल जून में होता है
0: जी, जी।
1: वो बिल्कुल अनुकूल है। और जो तापमान की बात करें तो 20 से लेके 30-35 तक जो तापमान है वो जो फसलें जो झेल लेती हैं। और आप बात करो मिट्टी की, अगर बाजरे की करें वो तो वैसे ही जो एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज हैं जिनको बोलते हैं हम, जो कम फर्टाइल होती हैं
0: जी,
1: उसमें भी हो जाता है, ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती इरिगेशन की। पर जो मक्का है बहुत ही, एक तो क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं, जो हमारी सीरियल क्रॉप्स है उसकी रानी कहा जाता है, और इसका जो पोटेंशियल यील्ड है काफी ज्यादा है। इसकी वजह से इसको एरिड सेमी एरिड में तो नहीं, बट जो मीडियम टू हैवी सॉइल है, जहां हम बोलें कि जो दुर्मट मिट्टी होती है, उसमें ये बहुत अच्छे से उगाया जाता है। और अच्छी प्रैक्टिसेस से अगर उगाएंगे किसान भाई तो उनको सुनिश्चित ही बहुत ही फायदा होगा इसको उगाने का।
0: जी हाँ, और अगर हम बात करते हैं, हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वो इस बार मक्का और बाजरे की खेती के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से वो तैयारी शुरू करें, बिजाई कब कर सकते हैं और किन किन बातों का खास ख्याल उन्हें रखना होगा।
1: जो बिजाई का समय बिल्कुल अनुकूल अब चल रहा है, जैसे ही बरसात शुरू होती है तो किसान भाई वेट कर रहे होते हैं कि कब पहला शावर आए मॉनसून का, तो साथ के साथ ही बिजाई जो है वो शुरू कर देते हैं। जो 15 जून से लेके जुलाई 15 तक या 30 तक भी कई बार लोग जो है इसकी की बिजाई है जो कर सकते हैं। ये तो हो गया उचित समय, और उचित समय से अगर इसकी बिजाई करी जाए तो सुनिश्चित ही बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है, और जो किसान भाई हैं वो फायदे में रहेंगे। ठीक समय से बिजाई से कीड़े मकोड़े भी कम आएंगे, उसके अलावा खरपतवार भी कम आएंगे। जैसे बोलते हैं कि यील्ड जो रिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी अगर हमने समय को संभाल लिया तो, क्योंकि जो मक्का है खास करके, ना तो वो ज्यादा जो बोलते हैं कि ड्राउट कंडीशन है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए पानी का, खड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा समय तक वो सूखा भी नहीं पड़ना चाहिए। वो इतनी संवेदनशील फसल है कि ना तो वो सूखा सहार सकती है ना ही ज्यादा वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, पानी खड़ा होगा। इसके लिए जो हम बोलते हैं कि इसकी जो बिजाई करनी है मेड़ों पर करें, और जो सॉयल है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए, निकास प्रॉपर हो जाना चाहिए। जैसे ज्यादा बारिश आ गई तो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे पानी ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो आपकी फसल जो है पहले पीली पड़ जाएगी, बाद में वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसमें जो यील्ड है काफी रिडक्शन होती है। तो ये ध्यान रखना है। और बिजाई कैसे करनी है, खेत को अच्छे से तैयार करना है, पहले अच्छे से डिस्किंग करनी है, उसके बाद जो कल्टीवेटर है वो 2-3 बार करके पाटा दे के अच्छे से खेत को तैयार करना है, उसमें ढेले वगैरह नहीं होने चाहिए। और ज्यादा हम सिफारिश करते हैं कि अगर जैसे, क्योंकि बरसात का मौसम है
0: जी,
1: तो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इस पर। एक तो बेड पे भी आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आती है कि पानी की बचत करो हम बोलते हैं, तो जहाँ तो वो रिज पे जो मेड़ों पर बिजाई करो या फिर बेड पे करो, जिससे कि हमारे जो खाद्य पदार्थ वो भी बचेंगे और पानी की बचत भी होगी और खरपतवार भी ज्यादा नहीं आएंगे, और साथ के साथ जो उपज है उसमें भी बढ़ोतरी रहेगी डेफिनेटली। और रिज जो है ईस्ट वेस्ट जो बोलते हैं पूर्व पश्चिम की तरफ सीधे उसकी साउथ साइड पे जो सीड लगाना है, तो उससे क्या होता है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी होती है और उसको सूरज की किरणें जो हैं जो उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए वो अच्छे से मिलेंगी, तो वो अच्छा सा अपनी उपज देगी
0: जी।
1: एक और बात का ध्यान रखना है, अगर जैसे बाजरा की बिजाई करनी है तो बाजरा में हम बोलते हैं कि इनमें स्पेसिंग का भी होता है कि लाइन टू लाइन कितना फासला चाहिए और प्लांट टू प्लांट फासला भी चाहिए। अगर बाजरा की बात करें तो 20 से लेके 30-35 सेंटीमीटर हम रखते हैं एक कतार से लेके दूसरी कतार तक फासला जो है, और 5-10 सेंटीमीटर रख

सकते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे का। और लगभग हम बात करें रफली 1.5 से 2 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में होने चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होगी तभी अच्छी उपज आपको मिलेगी किसान भाई को। ऐसे ही हम मक्का की बात करें तो उसकी सिफारिश करते हैं हम कि बेड पे करो, चाहे 2 लाइन लगाओ, बेड की चौड़ाई कितनी है। अगर तो 60 टॉप है उसका 60 सेंटीमीटर, तो 1 ही लाइन आएगी। अगर 1 मीटर है तो हम 2 लाइन

0: और उसमें अगर स्पेसिंग की बात करें तो उसमें टिलरिंग नहीं होती, वो काफी हार्डी थोड़ा प्लांट होता है। एक एक सीड को ही हम सोइंग करते हैं डिबलिंग मेथड से, तो उसमें जो एक कतार से दूसरी कतार का फासला है लगभग 60 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हाइब्रिड आ गए, हाइब्रिड का थोड़ा पौधा और फैल जाता है, तो उसमें स्पेसिंग जो नॉर्मल वैरायटी है 60 होती है, किसी में फैलाव कम होता है
1: जी।
0: जो ज्यादा फैलती है उसमें 70 सेंटीमीटर 75 तक जा सकते हो आप। ऐसे ही अगर पौधे से पौधे देखें फासला तो 20-30 सेंटीमीटर उसमें आएगा, तो लगभग आप अगर हेक्टेयर की बात करोगे तो 60-70 हज़ार प्लांट्स जो है पर हेक्टेयर में होने चाहिए एक अच्छी उपज लेने के लिए।
1: जी, अब खेत की तैयारी तो हो गई है, तो अब हमें बात करनी है बीजों की। तो एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी इसके लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो कौन सी होगी, और इसके साथ साथ बीजों की मात्रा हम कितनी रखेंगे, और क्या बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर?
0: बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शुरू में ही उसको कंट्रोल कर लिया बीमारी को या कीट को तो वो बाद में हमें इतना परेशान नहीं करेगी। तो बीज उपचार से वो बीमारियां जो कि कई बार बीज के द्वारा आगे जाती हैं उनको हम वहां ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसान भाई ने अभी खेती करनी है मक्का की या बाजरा की, अगर बीज उपचार कर लोगे तो काफी बीमारियों से जो है राहत मिल जाएगी। उसके लिए कार्बेंडाजिम करके एक दवाई है, एक है थीरम करके
1: जी,
0: तो 2-3 ग्राम हम सिफारिश करते हैं 1 kg बीज के लिए, तो वो आराम से मिल जाएगी दवाई भी बाजार से। बट कोशिश करें कि कोई जो सर्टिफाइड डीलर्स हैं आपके ट्रस्ट वाले उसी से लें, ताकि वो काम भी करे, ऐसा ना हो कि आपका पैसा ही खराब हो। तो सी ट्रीटमेंट जो है बीज उपचार बहुत जरूरी है, वो करिए, बीमारियों से काफी आपको राहत मिलेगी जो भी क्रॉप को फ्यूचर में होएंगी। ऐसे ही बाजरा में भी सेम कर सकते हैं
1: जी।
0: अगर हम बाजरा की बात करें तो 2-5 kg जो बीज है 1 हेक्टेयर के लिए काफी है बाजरा के लिए। मक्का का सीड थोड़ा सा मोटा होता है तो 20-25 किलो लगता है हेक्टेयर का, तो कई बार वो किसान भाई ज्यादा भी 30 तक भी चले जाते हैं, बट 20 किलो हम सिफारिश करते हैं। उससे क्या होता है कि प्लांट पॉपुलेशन भी सही होएगी और जो उपज है वो भी अच्छे से आएगी, और जो पौधे हैं अच्छे से बढ़ेंगे, उनको सारा कुछ नॉर्मल मिलेगा।
1: और अब बात करते हैं हम खरपतवार की, तो अगर हम खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं यहाँ?
0: हाँ, क्योंकि दोनों फसल की बात करें तो दोनों ही आजकल जो मॉनसून सीजन चल रहा है या खरीफ चल रहा है, आजकल आपको पता है पानी खेत में रहता ही है, तो जो वीड्स हैं वो एक बार नहीं आते कि आपने आज फसल को उगा दिया तो एक बार ही आएंगे फील्ड में, दोबारा नहीं आएंगे। बट वीड की जो आदत है वो डिफरेंट फ्लशेज में आते हैं, 15 दिन बाद फिर एक दूसरा फ्लश आएगा, 30 दिन बाद और फ्लश आएगा, क्योंकि सीड बैंक जो है वो सॉइल में जमा है। तो उनको नियंत्रण करना है, जो एक थंब रूल है बहुत ही आसान तरीका है कि जो 20 से लेके आपका पहला जो 1.5 महीना है, अगर आपने तब तक अपनी फसल को खरपतवार के बिना मेंटेन कर लिया तो दोबारा जो आपकी फसल 45 दिन की हो गई उसके बाद जो खरपतवार आएंगे वो नीचे ही रह जाएंगे, वो ज्यादा आपकी जो फसल है उसके साथ कम्पीट नहीं करेंगे, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपके पास केमिकल कोई दवा करनी है तो उसके लिए जो बाजरा है उसके लिए तो एक दवाई है, सभी किसान भाई मुझे जानते ही होंगे, पेंडीमेथिलीन करके है। तो पेंडीमेथिलीन करना है प्री इमरजेंस बोलते हैं कि जैसे आज बिजाई करी 2-3 दिन के अंदर अंदर 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट के बेस पे बोल रही हूँ, पर हेक्टेयर के बेस पे उसको करना है 2-3 दिन के अंदर अंदर 500 लीटर पानी में घोल के बाजरे के लिए
1: जी।
0: उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 20-25 दिन के बाद आप एक निराई गुड़ाई बोलते हो उसको कर सकते हो मैनुअल वीडिंग। इसी के साथ अगर हम बात करें मक्का की, मक्का में भी प्री इमरजेंस एक है एट्राजिन करके, किसान भाई ज्यादा जानते होंगे, बहुत पुरानी है, एट्राजिन करनी है। और इसके बाद अगर जरूरत है तो एक मैनुअल वीडिंग जो बोलते निराई गुड़ाई कर दीजिए 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद, जैसे भी आपको मौका मिले, बारिश ना हो, खेत आपका सूखा हो, जाने लायक हो कि उसमें निराई गुड़ाई हो सके तब। अगर किसी वजह से लेबर नहीं मिलती, थोड़ी सी स्कार्सिटी है लेबर की, तो एक पोस्ट इमरजेंस भी आजकल हर्बिसाइड आ रहे हैं, जो फसल है अगर 20-25 दिन की हो गई है तब भी आप कर सकते हो। इधर भी रिसर्च करी है हमारे फील्ड में भी, टेम्बोट्रायोन करके केमिकल है, खरपतवार नाशी है, जो कि हम स्प्रे कर सकते हैं 20-25 दिन के बाद, तो वो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो काफी वीड्स को कंट्रोल कर लेता है
1: जी। हाँ, और डॉक्टर साहब अब जैसे मॉनसून सीजन भी चल रहा है तो सिंचाई की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो सिंचाई का क्या तरीका रहेगा और किस तरीके से सही समय क्या रहेगा सिंचाई का?
0: वैसे तो दोनों ही फसलें, क्योंकि हम बात तो मक्का की कर रहे हैं बाजरा की कर रहे हैं, दोनों ही फसलें आज जो मॉनसून सीजन है तो पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी क्योंकि मैंने मक्का

0: की बात करी, वो ज्यादा सूखा भी नहीं सहारती, ज्यादा वाटर लॉगिंग या पानी भी नहीं खड़ा, दोनों हालात में वो संवेदनशील है। हर फसल की कुछ संवेदनशील जो बोलते हैं सेंसिटिव स्टेजेस होती हैं, जिन पे अगर पानी नहीं मिले और बारिश भी ना आए तो उपज में काफी कमी नुकसान होता है
1: जी।
0: तो एक तो है कि उस एक नी हाई स्टेज होती है, जब आप घुटने तक आता है ना पौधा, इतना बड़ा हो जाता है तब जरूरी करना है अगर बारिश नहीं हुई। उसके बाद एक स्टेज होती है जब फ्लावरिंग या टेस्लिंग सिल्किंग बोलते हैं और ग्रेन फिलिंग, ऐसे ही बाजरा में है। उसका जब फ्लावरिंग होती है, एक उसकी ग्रेन फिलिंग, वो बहुत ही संवेदनशील जो दो स्टेजेस है जिसपे के जो पानी की कमी उसको नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी वहां होती है तो काफी उपज में नुकसान होएगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है किसान भाइयों ने।
1: और अभी चलते चलते एक सवाल और रहता है कि कीट अगर प्रबंधन हम करते हैं तो उससे हम किस तरह से कर सकते हैं।
0: एक मक्का में खासकर एक कीट है, काफी 3-4 साल से आया है, पहले इंडिया में नहीं था, वो 2018 में ही आया है, आर्मी फॉलवॉर्म। तो एक तो है कि वो जैसे क्रॉप आपकी आएगी 20 दिन की होएगी तो वैसे ही आ जाता है, तो वो एक कैटरपिलर है, सुंडी है ब्राउन से कलर की, और काफी नुकसान करती है वो पूरा आर्मी का मतलब है ग्रुप में,
1: ग्रुप
0: तो ग्रुप में रातों रात आपकी पूरी फसल को नुकसान करता है। तो उसके दो है केमिकल, एक तो है इमामेक्टिन के बेंजोएट और दूसरा है स्माइनेटोरम, जो भी मिले उसको लेके स्प्रे करना है। और त्रिका स्प्रे का ये है कि जो पौधा है आपका सपोज 20 दिन का है या 25 दिन का है, उसका जो पत्ता निकल रहा है उसके अंदर बैठा होता है ये कीड़ा, तो उसके अंदर तक आपका स्प्रे जाना चाहिए जो वॉल्यूम है उसका। जैसे कि कोई भी बंदा स्प्रे कर रहा है मैनुअली, एक एक पौधे के पास जाके उसको अंदर जो है लिक्विड या तो जो भी दवा यूज कर रहे हो उसको अंदर जाएगी, तभी वो कीड़ा मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो वो ध्यान से करना है, तो वो ध्यान रखना है, खेत में विजिट करना है, जब 15-20% लगे कि पौधे खराब हो रहे हैं तभी वो केमिकल यूज करना है, नहीं तो 15-20% से कम है तो वो शायद अपने आप रिकवर हो जाता है कई बार। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग करनी है, रोज खेत में जाना है और पानी का खास ध्यान रखना है, खरपतवार का भी ध्यान रखना है और कीड़े मकौड़े का भी ध्यान रखना है।
1: जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाइयों को इससे जरूर ही लाभ मिलेगा। और श्रोताओं, आपने सुना आज मक्का और बाजरा फसल का प्रारंभिक प्रबंधन, और आज हमारे बीच रही रमनजीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद।
2: तो कुसुम बहन, अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे मक्का एवं बाजरा फसल का प्रारंभिक प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रही डॉक्टर रमनजीत कौर, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। इनसे बातचीत कर रही थी सीमा सती। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिली है कि जो मक्का और बाजरे की जो हमारे किसान भाई फसल करते हैं भाई, उनको किस प्रकार से जो उनका पहला चरण है यानी कि फसल का जो जमाव से लेकर के और पौधे में बीज बनने तक, यानी कि बाजरे की बाल बनने तक और मक्के में कुकड़ी बनने तक कह सकते हैं, तब तक थोड़ा सा देख रेख जब हमारे किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो पैदावार है वो बढ़ती है।
1: बिल्कुल।
2: और ये कहते हैं ना कि भाई मोटे अनाज खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, तो कभी किसान भाइयों पैदावार को थोड़ा बढ़ाएं भी मोटे अनाज भी।
3: अतुल भाई, आपने बीजों की बात कही है, तो देखिए जो भारत हमारा है कृषि प्रधान देश है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन बदलती जलवायु, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़ और नए कीट रोग किसानों के लिए बड़ी चुनौती का बढ़ाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब उन्नत एवं जलवायु अनुकूल बीजों का चयन खेती को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लाभदायक रहता है और ये बीज कठिन मौसम में बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे में जलवायु उन्नत और जलवायु अनुकूल बीजों का महत्व और बढ़ जाता है। अतुल भाई, बदलती जलवायु के प्रभाव से फसलों की सुरक्षा करते हैं, सूखा या अधिक वर्षा, गर्मी और कुछ रोगों को सहन करने की क्षमता रखते हैं ये बीज और संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देते हैं ये।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए फसल की जो गुणवत्ता है और उपज में देखिए वृद्धि तभी होती है जब हमारे जो बीजों का चयन है वो अच्छा होता है, और किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने में भी इनकी बहुत मदद होती है।
3: बिल्कुल।
2: और कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई जो हमारे किसान भाई हैं वो खाद्य सुरक्षा में टिकाऊ कृषि को भी ये बढ़ावा देते हैं। और देखिए जैसे कि आपने बात की है उन्नत एवं जलवायु अनुकूल बीजों की विशेषताओं के बारे में, तो अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं भाई सूखा एवं गर्मी सहनशील होती है, जल भराव की स्थिति में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं ये बीज, प्रमुख कीटों एवं रोगों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी भी होते हैं, कम अवधि में भी तैयार होने वाली किस्में भी उपलब्ध होती हैं, मिल जाती हैं बाजार में, और जल एवं उर्वरकों का बेहतर उपयोग भी ये बीज करते हैं।
3: बिल्कुल। तो इन सब की जानकारी सभी को होनी चाहिए।

0: हमारे किसान भाई बहनों को इन सभी बीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया इसके बारे में। तो आइए अब हम मनोरंजन करवाते हैं, आपको सुनवाते हैं, कलाकार हैं राजेंद्र जाटव।
1: तो सुनते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज में ये उपदेश।

0: धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। बहुत ही सुंदर उपदेश अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुना राजेंद्र जाटव की आवाज़ में। इस उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसके अंदर हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।
1: वेलकम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 137 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वाहनों को भी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किया। दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए और दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने क्षेत्र में वर्षों से संचालित खुली बिजली की तारों को सुरक्षित इंसुलेटेड केबल और भूमिगत विद्युत लाइनों में परिवर्तित करने की परियोजना का शुभारंभ किया।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की ओवरहेड बिजली लाइनों का चरणबद्ध तरीके से भूमिगतकरण और इंसुलेटेड केबलों में परिवर्तन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में नगर निगम के 137 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्राथमिक कचरा संग्रहण वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन

0: को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिसमें केशवपुरम जोन में 37, रोहिणी जोन में 46, नरेला जोन में 24 और सिविल लाइन्स जोन में 30 वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के संचालन से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और नागरिकों को स्वच्छता सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5,633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। इसके अंतर्गत पॉक्सो जागरूकता, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और नियमित निरीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि राजधानी के सभी विद्यालयों में गुड टच और बैड टच को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
2: दिल्ली के सभी स्कूल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूलों में लड़का हो या लड़की सिखाया जाएगा क्या होता है बैड टच और गुड टच एनिमेटेड फिल्म्स के माध्यम से। सरकार द्वारा जारी की गई है चेकलिस्ट, जिसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हर स्कूल को 15 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी कि क्या उनके सभी सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं, क्या उनका पब्लिक इंफ्रा रिस्क पे तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ है कि नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टाफ का और बच्चे का प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि दुर्घटना घट जाती है और बाद में तकलीफ रह जाती है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सक्षम योजना के अंतर्गत शालीमार गांव स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कई आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें एआई इंटीग्रेटेड स्मार्ट स्कूल, टॉयलेट, स्टेम इनोवेशन लैब, आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इस अवसर पर स्टेम इनोवेशन लैब्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 विद्यार्थियों को यूनाइटेड स्टेट स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पूर्णता प्रायोजित हवाई टिकट भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की मजबूत नींव आधुनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आधारित शिक्षा से ही तैयार होगी।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं तो हर व्यक्ति से, हर संस्था से यही कहती हूँ कि कोई भी राज्य तब तरक्की कर सकता है जब सरकार और समाज मिल करके काम करे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा।
1: दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल प्रारंभ हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। श्रीमती गुप्ता ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश और निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया, जिससे पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल सांस्कृतिक पहचान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिले और पुरानी दिल्ली एक विश्व स्तरीय विरासत क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज एक विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन

0: जब्त किए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने विशेष अभियान के अंतर्गत पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जहां तापमान संवेदनशील ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन निर्धारित 2-8 डिग्री सेल्सियस की जगह सामान्य कमरे के तापमान पर रखे हुए पाए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे भंडार को जब्त कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और भंडारण से जुड़े मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ड्रग्स कंट्रोल विभाग को राजधानी में औचक निरीक्षण और विशेष अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वॉल निर्माण कार्य से की गई। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार नागरिकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में मेजेंटा लाइन पर 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की 7 प्रमुख लाइनों से जुड़कर राजधानी की कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा। कॉरिडोर का कार्य पूरा होने पर ये सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस विस्तार के पूरा होने के बाद मेजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी। ये कॉरिडोर बोटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह चालक रहित मेट्रो सेवा के रूप में संचालित किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में कल शाम एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। श्री गुप्ता ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से क्रेडिट कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी अवैध कॉल सेंटर का संचालन भी कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास से 5 मोबाइल फोन और एक पावर बैंक जब्त किया गया है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी जोन में बरसाती नालों का डिसिल्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। DDA ने बताया कि पिछले वर्ष मॉनसून पूर्व अभियान के दौरान बरसाती नालों से लगभग 33,380 मीट्रिक टन गाद हटाई गई थी। इस वर्ष अब तक 57,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70% से अधिक की वृद्धि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और भारी वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों को बेहतर बनाना है। दिल्ली वासियों की सुबह आज भारी बारिश और आंधी के साथ हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कल हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज शहर में भारी बारिश के मद्देनजर 2400 घंटे लोक निर्माण विभाग मॉनसून कंट्रोल रूम पहुंचकर शहर भर में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न स्थानों की निगरानी कर फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा अधिकारियों को पूरे मॉनसून सत्र के दौरान अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जल भराव की दृष्टि से 45 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी स्थानों पर केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े 189 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने शहर भर में 167 स्थानों पर 754 स्थायी पंप तथा 273 स्थानों पर 305 अस्थायी पंप तैनात किए हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रवाद, अनुशासन और सेवा की भावना जागृत करने में ABVP की भूमिका सराहनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किया। दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। अगले 45 मिनट तक हम सुनेंगे ऐसे सदाबहार फिल्मी गीत जो कभी मुस्कुराएंगे, कभी गुनगुनाने पर मजबूर करेंगे और कभी पुरानी यादों की सैर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरों की महफिल सजी है, दिलों का साथ निभाइए, मुस्कुराते रहिए और गीतों का आनंद उठाइए।

अरे वाह, लगता है इस गाने के बाद कुछ श्रोताओं को अपने पुराने दिन याद आ गए। लेकिन याद रखिए, अगर सचमुच होश उड़ जाए तो सबसे पहले पानी पीजिए और फिर अगला गीत सुनिएगा।

अब जरा ध्यान रखिएगा, कहीं गाना सुनते सुनते आपका भी झुमका, चश्मा या मोबाइल ही ना गिर जाए। अगर गिर जाए तो पहले उठा लीजिए, फिर कार्यक्रम का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, सपनों का क्या है, आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छे गीत हमेशा दिल में बने रहते हैं, जैसे ये अगला गीत।

दिल का चैन पाने के कई तरीके बताए जाते हैं। कोई योग करता है, कोई चाय पीता है, और हमारे श्रोता सुनते हैं प्यारे प्यारे से गीत।

दोस्तों, दिल चुराने की इजाजत फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में तो बस दुख चुराइए, तकलीफ चुराइए और खुशियां बांटिए।

श्रोताओं, पहले लोग अजनबियों से बात करने के लिए पूरा पूरा गाना गा देते थे। आजकल तो हाय का जवाब भी 2 दिन बाद आता है।

श्रोताओं, शाम हो, संगीत हो और साथ हो मुस्कुराहट का, फिर क्या कहना इस खूबसूरत महफिल का।

श्रोताओं, कुछ लोग दिल के पास रहते हैं और कुछ लोग मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही रह जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत हमेशा दिल के ही पास रहते हैं।

0: अरे अरे,
1: अभी कहाँ जाइएगा, कार्यक्रम खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। चाय पी लीजिए, लेकिन रेडियो की आवाज़ कम मत कीजिएगा।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई

0: ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा।

0: विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more. Addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia."
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalised the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy programme and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Following the India-Australia CEOs Forum, they agreed to accelerate negotiations.

0: since Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Carolina Muchova of Czech Republic has reached women's singles final. 10th seed Muchova defeated 7th seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kotsyuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज़्यादा तरक्की करो, ज़्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायज़ा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है ताकि मुल्क में उनकी मैनुफैक्चरिंग को फ़रोग दिया जा सके। ईरान ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बूशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नज़दीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संग मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए

0: ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत

0: दुनिया की आला तरीन तीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इक्तिसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: बाहमी शराकत दारी के लिए भारतीय बिरादरी को क्रेडिट देते हुए जनाब मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। मैनुफैक्चरिंग के एक ऐसे इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए जो चिप्स से शिप्स तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अदवियात साजी के तमाम शुबों में एक आलमी ब्रांड है। कलीदी नौयत की सिक्योरिटी और इख्तिरात की तरफ तवज्जो करते हुए वजीर आजम ने भारत के अपने घरेलू दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आलमी भरोसेमंदी को उजागर किया। उन्होंने बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के मुतय्यन शुदा निशानों का

0: एक रिपोर्ट।
1: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन व सताइश के बुलंदबांग नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज़्यादा बुलंदी अख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत जो आलमगीर मैनुफैक्चरिंग फतूहत से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वुर है, ये साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वज़ीर आज़म अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इकतसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेज़ी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वज़रा की मीटिंग आज कोची में ख़त्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरका मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वज़रा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं ताकि मेम्बर मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स ख्वातीन उज़रा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मर्तबा ख्वातीन उज़रा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान ख्वातीन की क़यादत में तरक्की के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन को मज़बूत बनाने की सिमत एक अहम संग मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई 4 रोज़ा मीटिंग में ब्रिक्स ख्वातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स ख्वातीन उज़रा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज़ का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इरादा किया गया कि ख्वातीन की क़यादत में तरक्की जामे और पायदार मुआशी व समाजी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। कोची से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
2: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि साफ मुतबादल ईंधन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ फौरन मुंतकिल होना सड़क ट्रांसपोर्ट शोबे में तब्दीली की एक अहम तरीन ज़रूरत है। गांधीनगर में 3 रोज़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने रिवायती ईंधन पर इन्हिसार की बहुत ज़्यादा इक्तसादी और माहौलियाती लागत को उजागर किया और सड़क ट्रांसपोर्टरों से जोर देकर कहा कि वो मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मुतबादिल ईंधनों को पुरजोश तरीके से इख्तियार करें। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा है कि भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर 2047 तक काया पलट के लिए बुनियादी साइंसेस में मजबूत जड़ें कायम करना बहुत ज़रूरी है। भुवनेश्वर के नज़दीक जटनी में साइंसी तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट की 15वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी एतबार से खुद किफालत मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की और आलमी क़ियादत के लिए अहम तरीन उनसर होगी। तेज़ी से फैलती हुई तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART शोबे में बेजाबतगियों से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने आज एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील दी है। यह कमेटी IVF क्लिनिक्स, तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART मराकज और गैमेट बैंक से मुतालिक कवानीन और इंजिबाती फ्रेमवर्क का जामे जायज़ा लेगी।

शाद के पेशे नज़र ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने आज एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील दी है। यह कमेटी IVF क्लिनिक्स, तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी, ART मराकज और गैमेट बैंक से मुतालिक कवानीन और इंजिबाती फ्रेमवर्क का जामे जायजा लेगी। इस जायजे का बुनियादी मकसद ख्वातीन के तौलीदी हुकूक, वक़ार और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट की साबिक जस्टिस आशा मेनन माहिर

इम्कान है। फीफा आलमी कप में बोस्टन में आज रात देर गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। क्वार्टर फाइनल के बाकी मैचों में नॉर्वे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इतवार की सुबह स्विट्जरलैंड से होगा। मर्दों के क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मैच में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। गेम में अपने आप को बरकरार रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी ज़रूरी है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज़्यादा तरक्की करो ज़्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्मुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की 3 आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबिस से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायज़ा लेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को

0: 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर हैं, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वस्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models, but ultimately all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकंड पिलर है वो होगा इनोवेशन, क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ

0: यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सिलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है। डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: Discussion on evolving situation in West Asia, implications for India's energy security. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Anubha Rohatogi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: Insights.
2: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Shakti Singh. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलियाई भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने की चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलावों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के रूप में खेलों का जिक्र करते हुए दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं कल दूसरे मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ज, DRM 810 किलोहर्ज पर। 10:30 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार हैं सरफराज हुसैन खान। आप सुनेंगे राग बिहाग। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना गायन कलाकार सरफराज हुसैन खान, आपने सुना राग विहाग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11:10 हो चुके हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और आपकी फरमाइश तो क्यों ना सबसे पहले आपकी फरमाइश ही ले ली जाए। हमारे पास मैसेज आया है, सबसे पहले सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, फिल्म संगीत की फरमाइश भी साथ में लिखकर भेजी है, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ यासीन जी का आया है हमारे पास, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, अब बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ आपने ये संदेश हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ये कहेंगे बहुत खूबसूरत सा ये गीत आपने लिखकर भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव टोरोवाल, ज़िला नवाशहर, पंजाब से, गगनदीप थांडी, तिप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रिय थांडी, बेबी वार्मिका और वाणी थांडी आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। गाँव हमने नाम ले लिया, टोरोवाल, नवाशहर, पंजाब, फिल्म संगीत की फरमाइश भी साथ में है। संगीत की फरमाइश की तादाद लंबी होती जा रही है, पहले सुनते हैं आपकी फरमाइश से ये गीत।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और हमारे पास अगला मैसेज आया है अनिल कुमार गोहांकर जी का। फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ इन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गोहांकर राहे, श्रीमती सरिता गोहांकर, प्रिंस एकांश गोहांकर, साथ ही साथ बदलापुर मुंबई से प्रणेता गोहांकर, सिद्धांत गोहांकर, अर्जुन गोहांकर टुक टुक साथ में है, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गोहांकर, एकांश सुमित गोहांकर, कुमारी ध्वनि गोहांकर परी लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है नारायण खर्चे जी का। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, हमें कौन सी फिल्म का गीत सुनाएंगे? तो आपको हम बता रहे हैं कि जो आपकी फरमाइश से आएगा वही आपको हम सुनवाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगला मैसेज लेते हैं आप लोगों की ही आप लोगों के, जिसमें क्या है ना कि एक ही मैसेज लगातार इतनी बार आ गया है कि वो नेक्स्ट पेज मुझे पलट के देखना पड़ रहा है कि आपने कौन सा मैसेज किसने भेजा हमें। मरहा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबिहा अंजुम खान लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक लिखकर भेज रहे हैं। शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जिनके मैसेज को हमने ले लिया अभी फिलहाल उनके नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि जब कुछ ना मिले तो ज़रूर लेंगे। हमारे लिखने वाले हमारे श्रोता है कैथल हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा जी, और बहुत बड़ा लंबी सी लिस्ट भी आपने हम तक पहुंचाई है। जो हर बार आप हमें लिखकर भेजते हैं वो हम तक पहुँच गया है और हमने उसे पढ़ भी लिया है, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताराम और कुसुम नेताराम लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ राजेश वर्मा जी का मैसेज हम तक आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ। राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार लिखकर भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज लेंगे हमारे श्रोता का। हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की फरमाइश से ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। अगला मैसेज लेंगे हम नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान नायडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर लिखकर भेज रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी साथ में है, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज लेंगे हमारे श्रोता का, पहले चेक कर लें कि हमने किन्हीं का नाम मिस तो नहीं किया। नहीं, हम एक लाइन से ही आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि किसी को किसी भी नाम को हम मिस ना कर जाएं। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, आपार ढींगिया जी लिख रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी है, गज़ल के लिए आपने फरमाइश भेजी है, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरवी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह लेकर भेज रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास अगले श्रोता का आ गया है और उस नाम को हम जरूर लेना चाहेंगे। गाने के बोल लिख कर भेजे हैं दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है, अपने पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए लिख कर भेज रहे हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, आपने फूल बना दिया है वो बीच में, तलहत जहानाज, फरह जहानाज, रितत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाही नाज और नाजिया नूरी नाज, हम बहनों को प्रणाम, प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। आपका शुक्रिया है कि आपने हम तक अपने मैसेज पहुंचाए, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव जी लिख कर भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमारे पास है हमारे श्रोता का, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा जी लिख कर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश अनेजा जी लिख कर भेज रहे हैं गीत की फरमाइश के साथ, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी, और खूबसूरत गीत आपने हम तक तो पहुंचाई है, जरूर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की फरमाइश से ये गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और आपको ये बताना चाहेंगे सतीश अनिजा जी कि आपका ये सॉन्ग हमारे पास नहीं है, लेकिन आप कुछ और भेजना चाहें तो जल्दी जल्दी लिखकर भेज दीजिए जिसमें कि हम उसे ढूंढ कर निकालें और आप तक पहुंचा दें। फिलहाल लेते हैं अगला मैसेज। गाँव फ्रांस हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल मोहन जी का मैसेज आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, पहाड़गंज मुल्तानी ढारा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, लिखकर भेज रहे हैं आदा पूजा जी, आपके सॉन्ग प्रोग्राम का अलग ही मज़ा होता है, धन्यवाद आपका। लता जी की आवाज़ में इनको सॉन्ग सुनना है। फिल्म संगीत की फरमाइश आपने पहुँचाया है मोहम्मद जी कोहत पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके इस मैसेज को पूरा कर दें। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का और इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुँचाने के लिए। और अगला मैसेज लेंगे हमारे श्रोता का हरजिंदर शिंदे जी का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता लेकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है हमारे श्रोता का फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, लिखने वाले हैं नाम गांव शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की फरमाइश से ये गीत।

आपकी फरमाइश में आपका मैसेज। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जिनका नाम जो जैसे दिख रहा है वैसे ले रहे हैं। और सतीश जी, हमने आपको कह दिया ना कि आपका वो सॉन्ग हमारे पास नहीं जो आपने लिखकर हम तक पहुंचाया था, तो आप कुछ और हम तक पहुंचा दीजिए लिखकर। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, अनिल मोहन जी का। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी धाड़ा से आपने मैसेज हम तक पहुँचाया फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश लिख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे श्रोता का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदा छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। और अगला मैसेज और लेना चाहेंगे जिस नाम को हमने नहीं लिया अभी तक, लिखने वाले हमारे श्रोता है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार और पवन सुधार जी लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही

अगला मैसेज आया है हमारे पास, चेहरा है या चांद खिला गाना सुनना चाहते हैं, सत प्रकाश गोयल और रोहिणी दिल्ली से ये मैसेज आपने हम तक तो पहुंचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है सुनील पाठक जी का, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक जी लेकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज लेंगे हम वरिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोरा लिख के भेज रहे हैं, शुक्रिया। ताज मोहम्मद जी का मैसेज हम तक आया है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से लेकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अहमद जी का आया है हमारे पास मैसेज, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है, शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है जिला नांदेड़ इटाला महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल लेकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक तो पहुंचाई है, खूबसूरत गीत आपने पहुंचाया है, कोशिश करेंगे ज़रूर प्ले करें। साथ ही साथ अगला मैसेज आया यवतमान विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष गढ़ से और विनोद गढ़ से जी लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज लेंगे हमारे श्रोता का, फिल्म संगीत की फरमाइश, बॉर्डर वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू गगनेजा जी का आया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। संजय साहू जी लिखकर भेज रहे हैं पोटिया कला दुर्ग से, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी का आया है मैसेज अस्तु पूरा जिला मऊ से, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुर गंज गाजीपुर से, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया। साथ ही साथ एसपी गोयल जी का आया है सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से लिखकर भेज रहे हैं और बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखकर हम तक तो पहुँचाए हैं, कोशिश करेंगे ज़रूर प्ले करें। अगला मैसेज लेने से पहले चलिए सुनते हैं आप लोगों की पसंद से ये गीत।

आज की गीत जो है बिल्कुल भी रोने वाले अब हमारे श्रोताओं ने हम तक तो पहुंचा दिए हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ हंसने वाले भी गीत हम तक तो पहुंचा देते तो शायद हम भी कुछ गुनगुना लेते। फिलहाल चलते हैं आपके मैसेज को लेते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया आपका। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे पास हाजी मजहर जी का, सुरपुर मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरपुर गंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी लिखकर भेज रहे हैं, धन्यवाद। और लेना चाहेंगे आपके मैसेज को अश्विनी जी का, अश्विनी जी ने फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे, भाविक और ढिंगरा जी लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया लिखकर भेज रहे हैं अश्विनी चुग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम तक मैसेज पहुंचाया। वसंत कुमार सिन्हा जी का आया है हम तक मैसेज और आपके मैसेज को हम ओपन करें। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, नन्ही गुड़िया रानी, अन्विका और पिहरा बाजार, झुमरी तलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी शाह, जय प्रकाश साहु, अनिरुद्ध बाबू, रिया जिया, टूसी आयुषी, गुड्डू कुमार गुप्ता, खदान कोठी, बोरो पारा चौक, बसबीरिया, वेस्ट बंगाल से नाम शामिल करने हेतु दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शालिनी दीदी जी लिख कर भेज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, प्रकाश जी का, मनोहर लाल गांधी, पहला सॉन्ग इनको पसंद आया, आपका शुक्रिया, मुझे भी बहुत पसंद आया था। और ऐसे गीत आप सभी भेजते हम तक तो हमें और आनंद आता, लेकिन खैर आपकी फरमाइश है इसलिए आप अपने हिसाब से ही हम तो पहुंचा रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है मनोहर लाल गांधी गाज़ियाबाद से लिख रहे हैं, शुक्रिया मनोहर लाल जी। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे राम बालक दास जी का, राम बालक दास, हुगली गुराप कोलकाता से, नमस्कार, मैं इस प्रोग्राम का दीवाना बन चुका हूँ, मैं तो आप लोगों की दीवानी हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने खूबसूरत मैसेज पहुँचाए हैं, बस एक ही कमी रह गई कि ज़्यादातर सॉन्ग्स जो है वो सैड सॉन्ग्स ही प्ले हुए। इस प्रोग्राम की प्रस्तुति देने वाले आरजे की आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, फरमाइश कोई भी मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत सुना दे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की पसंद में मोहम्मद रफ़ी के कई सारे सॉन्ग आपने सुने होंगे, तो शायद आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। पटेल नगर मलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया, गुड्डू जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है, आरजे मैम जी को प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब, और गीत में शामिल कर रहे हैं हम आपका, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा हबीबा, शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ स्वर्ण सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह लिखकर भेज रहे हैं, गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से, शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज लेने से पहले शायद एक मैसेज और हम ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने को है। हमारे पास अगला मैसेज आया है रियासत हुसैन सिद्दीकी जी का, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जी लिखकर भेज रहे हैं। और आखिरी सॉन्ग की तरफ अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, आप लोगों की फरमाइश से, ये बात सच है कि सभी की फरमाइश हमने प्ले नहीं किया है यहाँ पे और प्ले करना पॉसिबल भी नहीं है, कोई नाम तो नहीं रह गया, बस ये सोच रही हूँ। एक नाम है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी, और मेरे हिसाब से नाम तो हमने कोशिश की है सभी के शामिल कर लेने को। आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा जी लेकर भेज रहे हैं। फिर यही कहेंगे कि अगर कोई नाम रह गया हो तो हमें माफ़ कीजिएगा और आप लोगों की फरमाइश पूरी करने में शायद कोई गाना भी रह गया हो उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। फिलहाल कहते हैं कि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप लोगों के खूबसूरत मैसेज का जो इंतज़ार रहता है वो आप पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को है। अब समाचार होंगे। समाचारों के बाद 12:10 पर इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में

हम बात कर रहे हैं आदेश श्रीवास्तव के बारे में। जी हाँ, संगीतकार और गायक आदेश श्रीवास्तव का जन्म 4 सितंबर 1964 को जबलपुर में हुआ था। संगीत के प्रति उनका जुनून इतना प्रबल था कि उन्होंने संगीतकार के रूप में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया और बहुत ही कम उम्र में मुंबई चले आए। पेशेवर से संगीतकार बनने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक के रूप में काम किया था। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना कि जब कुछ पाना होता है तो बहुत मंझना होता है, और यही काम किया आदेश श्रीवास्तव ने। इन्होंने 1993 में फिल्म कन्यादान से अपना पहला ब्रेक लिया। जी हाँ, यहाँ तो पहला ब्रेक मिल गया, लेकिन उनकी पहली गीत को सराहा गया कि नहीं? तो आपको बता दें कि जब इन्होंने सुरीली लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया तो दुर्भाग्यवश फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और उनका काम गुमनाम रह गया।

आदेश श्रीवास्तव को इतना ही नहीं बल्कि उनकी अगली फिल्म तमन्ना में भी बुरी तरीके से नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर से कमबैक किया, वापसी की और फिल्म आओ प्यार करे से उन्हें एक मौका मिला आगे बढ़ने का। लेकिन

हिट फिल्में कहाँ से शुरुआत हुई ये बताएंगे इस गीत के बाद, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी कई फिल्मों में कुछ अलग अलग तरीके से काम करके। क्या था वो जानेंगे, लेकिन एक और गीत सुनेंगे जहाँ से वो हिट हुए, कहाँ से वो आगे बढ़े। आइए सुनते हैं उस गीत को।

जी हाँ, शास्त्र फिल्म से इस गीत को लिया गया और इस फिल्म ने इन्हें एक पहचान दिलाई और फिर कई ऐसे फिल्में आईं जिन्होंने आदेश को अपनी सुर्खियों में ले लिया, क्योंकि गीत बिल्कुल उस समय से हटकर था, लीक से हटकर था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब गीतों का सिलसिला, उसकी झड़ी ऐसी लगी थी जहाँ पर रोमांटिक फिल्म, रोमांटिक गाने और सारा जो म्यूज़िक था वो रोमांटिक की दिशा में आगे बढ़ चुका था। वो 90, 80, 90 का वो दशक, जब सारे गीतों को अगर देखा जाए और सुना जाए तो रोमांटिक था। तब इन्होंने इस तरीके के गाने लाकर, कुछ अलग गाने लाकर उनमें म्यूज़िक को इस तरीके से ढाला कि आदेश श्रीवास्तव एक अलग तरीके से सुर्खियों में आ गए थे और फिर उनके गाने हिट होने लगे थे और फिर उन्होंने अपना रुख एक अलग दिशा में भी मोड़ लिया। कैसे? क्योंकि जब उनके गाने इस तरीके से हिट होने लगे तब उन्होंने उस पर एक रिसर्च किया और गीतों को अलग दिशा में लेकर उनकी म्यूज़िक, उनके जो सुर हैं उन सब में उन्होंने कुछ ऐसा मिक्स किया कि गीत हिट हो गए। और वो कौन सा गीत था, सुनते हैं।

1998 में फिल्माए अंगारे, उसके भी संगीत हिट रहे थे। आदेश ने कई गाने भी गाए, जैसे सोना सोना जो अभी हमने सुना अमिताभ बच्चन के साथ,

उन्होंने शाबा शाबा भी गाने गाए। गुस्ताखियां और उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक गुरनालोग इश्क मीठा। आदेश श्रीवास्तव ने वर्ष 2000 में कुवारा, तरकीब और शिकारी में अपने काम के लिए प्रशंसा हासिल की। इन्होंने सफलता, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म बस इतना सा ख्वाब है, जो 2001 में रिलीज हुई थी, सिनेमाघरों में हिट रही और इनके गीत सुपर डुपर हिट रहे। इसी फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

आदेश श्रीवास्तव ने जिन फिल्मों में संगीत दिया उनकी धुन अलग तो थे ही, लेकिन जहाँ पर उन्होंने आवाज़ दी, जहाँ पे उनके गाने हिट हो गए उनकी आवाज़ में, जहाँ शास्त्रीय संगीत का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें भी म्यूज़िक कुछ अलग सा ही फ्यूज़न सा डाला जिससे उनके गाने हिट हुए। और कहा जाता है कि जब आदेश श्रीवास्तव ने पार्श्व गायक में हाथ आजमाया 2010 में, जब उनकी फिल्म आई राजनीति जिसका गीत अभी हमने सुना था, शास्त्रीय गीत मोरा पिया बहुत बड़ा हिट हुआ था उस वक्त। और 2005 में की बात करें तो आदेश श्रीवास्तव एक टीवी सिंगिंग रियलिटी शो में जज के रूप में दिखाई दिए और अगले ही साल उन्हें सना नामक एक लघु फिल्म के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखने का मौका मिला। आदेश के बारे में ये कहा जा सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा के शुद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका लगाव उनकी रचनाओं को दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में कई गाने गाए और वो हिट भी हुए। फिर अगर डांस नंबर की बात हो तो मधुर प्रेम गीत हो या फिर कोई मनोरंजन ट्रैक, आदेश ने दो दशकों के छोटे से लेकर करियर से शुरुआत करने के बाद सब कुछ कर दिखाया। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया, एक संगीतकार के रूप में उनका विकास हुआ, उनकी धुनें और अधिक मधुर होती गईं और उन्होंने हर फिल्म के साथ अपनी शैली में बदलाव लाने की कोशिश की।

आदेश श्रीवास्तव सिर्फ अपने संगीत करियर में ही आगे नहीं बढ़े, अपने जीवन में भी संगीत को लेकर ही आगे बढ़े। कहने का मतलब है कि आदेश ने अपने घर में एक ऐसी दुल्हन लेकर आए जो अभिनेत्री पार्श्व गायिका थी। जी हाँ, उन्होंने विजेता पंडित से शादी की, जो संगीतकार जोड़ी जतिन ललित, सुलक्षणा पंडित और संध्या सिंह की बहन थी। अपने बॉलीवुड करियर के अलावा उन्होंने 100 फिल्मों में और कई एल्बम में अपने संगीत का जादू भी खेला। आदेश श्रीवास्तव एकमात्र भारतीय कलाकार थे जिन्होंने एकॉन, टीपेन, नोरा जोन्स, सोल्जर बॉय और वाकिफ जीन, क्वीन लतीफ़ा और शकीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ भी सहयोग दिया। ऐसा व्यक्ति जो हर क्षेत्र में अपने झंडे गड़वा कर आता था, यानी कि हर क्षेत्र में उनका मान रखा जाता था और वो हिट रहते थे। करियर में आगे बढ़ना और खूब नाम कमाना हर किसी के वश का नहीं होता, लेकिन जब कोई बिल्कुल अपने करियर चूज करने में, उन्हें सिलेक्ट करने में बिल्कुल उसमें डूब जाए, तो वो है आदेश श्रीवास्तव। इन्होंने अपने इस फील्ड को अपना जीवन बना लिया था और इसीलिए उन्होंने कई ऐसे लोगों के साथ काम किए जिन्होंने इनके जीवन को माँच दिया। जी हाँ, इन्होंने कभी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश नहीं की, हर एक क्षण कुछ न कुछ सीखते गए और सीखने की कोशिश करते रहे।

लंबे समय से असाध्य रोग बीमारी से जूझते हुए आदेश श्रीवास्तव ने 5 सितंबर 2015 को अपने जन्मदिन के अगले ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पास निश्चित रूप से अभी भी बहुत कुछ देने को था। आदेश श्रीवास्तव ये वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी हर रचना में स्वच्छ, ताजा और सरल संगीत से और साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिन्हें हम कभी भी नहीं

सकते हैं। शुरू का सफरनामा में आज बस इतना ही। अगली बार एक दूसरे कलाकार के साथ फिर से मिलेंगे। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। एक बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए

0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैलोलिना मोचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 है। 1:10 हो चुके हैं, समय हो चला है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, गोल्डन एरा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम

फिल्म पतंगा से आपने सुना इस गीत को शमशाद बेगम लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ ही साथ साथी भी थे। और अगर कहें कि पुराने गीतों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो कहाँ ही रुकता है, ये चलता ही जाता है क्योंकि हजारों हजार गाने और सब एक से बढ़कर एक। जैसे यही ले लीजिए जो अब हम सुनेंगे मुकेश की आवाज़ में।

0: दीवानापन है,
1: ये मेरा दीवानापन है। इस गीत के दीवाने उस वक्त भी लोग थे और आज भी हैं। वाकई में ये गाने का दीवानापन है जो हर किसी के मन में छाया है। मुकेश की आवाज़ में आपने फिल्म यहूदी से इस गीत को सुना। गीतों का सिलसिला शुरू है, जी हाँ, गोल्डन एरा के गीत संगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे में, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

फिल्म गुड्डी से आपने सुना इस गीत को शमशाद बेगम और साथी की आवाज में। उस वक्त भी ऐसे गीत बन रहे थे जब संगीत का खूब आनंद लिया जा सके, और उस वक्त से लेकर आज तक ये दौर कभी खत्म नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा, क्योंकि संगीत यानी धुनों को निकालना और उन्हें एक तार में पिरोना बहुत बड़ी बात है। और फिर ये बड़ा काम इसके साथ साथ कई चीज़ों का फ्यूज़न लेकर कई संगीतकार और गीतकार आए और फिल्मों में उनके गीतों में अलग से जान डाल दी। तो फिर जब हम बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो वो भी तो उस वक्त नए थे, और जब वो नए नए आए और जब उनके गीत उनकी धुनों ने लोगों पर जादू करना शुरू कर दिया, जिसका आज भी वो जादू हमारे सर पर ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि पुराने गीतों का सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं सकता और न ही कभी वो पुराना हो सकता है। तो आइए तरोताज़ा करते हैं एक और इसी सुनहरे गीत को सुनकर।

आपने सुना मुकेश की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इस गीत को, फिल्म गुड डे। श्रोताओं, जब हम पुराने गानों की बात करते हैं तो शमशाद बेगम हो, सुरैया हो, मुकेश हो, मोहम्मद रफ़ी हो, लता मंगेशकर, आशा भोसले, एक से एक गीतकार, संगीतकार और संगत देने वाले कलाकार, सब के सब बढ़ के थे, सब अपने काम में निपुण थे। और फिर जब बात करी उस समय के गानों की, तो फिर ये गाना क्यों पीछे रहे। गीतों में ऐसे कोशिश किए हैं कि सारे गीत बिल्कुल उसी ज़माने के हों जो आपके कान में मधुरता घोलते जाएं।

और गीतों का कॉम्बिनेशन देखिए, सुरैया और शमशाद बेगम दोनों की ही आवाज़ में इस गीत को बनाया गया, और आवाज़ जब इन दोनों के गीतों को आवाज़ों को एक साथ लिया गया तो गीत तो हिट होने ही थे, और वो समय भी आ गया था जब इस गीत को रिलीज़ किया गया, और वक्त ने बिल्कुल सारे संगीत को, सारे गीत को पलट के अलग कर दिया और इसे अपने आँखों में समा लिया, अपने कानों में समा लिया। जी हाँ, गीत ऐसे ही तो बने थे उस वक्त के गीतों में, यही तो था जो आज भी हम लोग सुनते हैं, वो हिट लगते हैं। उन गीतों को सुनना, उन्हें सराहना और अपने हर एक समय के हिसाब से उन गीतों में ढल जाना, यही तो कला था उन पुराने गीतों का, यही जादू था उन पुराने गीतों का।

जी हाँ, गोल्डन एरा के गीत सुन रहे हैं आप सुनहरे गीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और पुराने गीतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शुरू होता हुआ एक वक्त ऐसा भी आ गया कि ये आधे से ज़्यादा संपन्न हो गया, लेकिन फिर भी सुनहरे गीत अभी भी बाकी हैं। उन्हीं गीतों को आप भी फिर से दोहराते हैं जो गीत हमारे जीवन में अलग रंग लेकर आया। जी हाँ, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है जिसे आप सुनेंगे और कहेंगे कि वाकई में इस गीत को कितनी खूबसूरती से गाया गया है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म माया जाल से आपने सुना इस गीत को सुमन कल्याणपुर और शमशाद बेगम की आवाज़ में। वो ज़माना ही यही था, शमशाद बेगम, सुरैया, सुमन कल्याणपुर। और अगर बात करें मेल सिंगर की तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार, मुकेश, इतने सारे सिंगर थे। और फिर उनकी भी तो एक अलग दुनिया बन गई। पहले के ज़माने में संगीतकार, गीतकार सारे एक साथ काम करते थे और एकजुट होते थे। गीतों में प्यार मोहब्बत की झलक

भी हम देख पाते हैं जब गीतों को प्यार से और प्यार के लिए ढाला जाए, और पुराने ज़माने के गीत इसका परिणाम है जो हमें बताते हैं कि गीतों को कैसे बनाया गया और किस तरीके से ढाला गया। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

बाबुल फिल्म से आपने शमशाद बेगम के आवाज़ में इस गीत को सुना। फिल्म सुनहरे गीत, जहाँ सुनहरे गीत को ही लिया गया है। और ये गीत आपको कितना सुनहरा लगा, अगर आपके ज़ुबान पर चढ़ गया तो समझ गए सबसे सुनहरा गीत आपके लिए यही था। जी हाँ, सुनहरे गीतों की यही तो खासियत थी, गीत ज़ुबान पर हमेशा बने रहे। इन गीतों को इस तरीके से ही तो बनाया गया था, और यही कारण है ये गीत अपने समय से लेकर इस समय तक भी यूं ही तरोताज़ा नज़र आते हैं। इन गीतों में से एक गीत और भी है, आइए सुनते हैं।

ब्लफ मास्टर से सुना आपने इस गीत को, आवाज़ मुकेश की। आवाज़ वाकई में जादू बिखेरने वाले सारे होते थे, चाहे वो मुकेश को लीजिए, चाहे मोहम्मद रफ़ी लीजिए, चाहे किशोर कुमार लीजिए, चाहे हेमंत कुमार ही क्यों न ले लीजिए, या फिर केएल सहगल की बात करें तो कैसा रहेगा। ऐसे ही गीतों में कई गीत ऐसे आए जो आप किसी भी गीतकार को बुलाकर उनसे उसके संगीत को आप सुरों में ढाले हो कहें तो वो इतने आसानी से गीत को, संगीत को एक बद करके खूबसूरत धुनें निकाल कर उन्हें इस कदर बना देते थे कि हर कोई दिन रात अपनी जुबान से उसी गीत को गुनगुनाने लग जाता था। और एक समय ऐसा भी था जब फिल्म के हर गाने ऐसे ही हिट होते थे। दूसरा समय ये आया जब गाने, उन गानों में से एक गाना हिट हो रहा है तो कुछ गाने ऐसे रहे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं गोल्डन एरा की, जिस वक्त सारे के सारे गाने हिट होते थे।

मुकेश की आवाज में आपने तीसरी मंजिल से इस गीत को सुना। गीतों का सिलसिला चल रहा है गोल्डन एरा के, और इस गीत में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। गीतों का सिलसिला चलता ही रहेगा क्योंकि ये पुराने जमाने के वो गीत हैं जिन्हें आज हम गोल्डन एरा कह रहे हैं। जी हाँ, उस एरा में अनगिनत गीतों का सफर चला और वो अनगिनत बार हिट हुए। उन्हीं गीतों में से एक गीत और आपके सुनवाते हैं क्योंकि कार्यक्रम अब संपन्न होने को है। फिलहाल आपसे यही कहेंगे, इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि पूजा भारती को दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपने सुना इस गीत को मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाज में फिल्म आरंभ से। सुनहरे गीत का ये सफर अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है अब। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबले में 0-0 की बराबरी है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत बहार का। गीत बहार फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम, जी हाँ, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आई श्रोताओं, शुरू करते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत बहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 3 बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के

0: देशों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। PIB ने नागरिकों को गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the 3rd annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy programme and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress and economy.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात की ठीक 3:10 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीतों और गजलों का। आज के गीत गजल कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रात तो वक्त की है पाबंद, ढल जाएगी। रात तो है वक्त की पाबंद, ढल जाएगी। देखना है चराहों का सफ़र कितना है।

मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डर।

जाने से पहले शहर अपना मैंने दुल्हन सा सजाया था। जाने से पहले शहर अपना मैंने दुल्हन सा सजाया था। लगी न महबूब को मेरे कि वो मेरे मातम में आया था।

आशा भोसले की आवाज के साथ है गीत गजल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का ये लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे अर्चना। प्रातः 4:20 हुए हैं। ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे येल्ला वेंकटेश्वर राव का तालम आदि में ताल वाद्य कचहरी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से अवगत करा देते हैं। प्रातः 5:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन के बारे में। देशभक्ति गीत ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 5:20 पर। प्रातः 5:30 पर सुनेंगे आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा प्रातः 6:45। प्रातः 7:10 पर संगीतिका।

0: 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:45 पर आप सुन सकते हैं सैयद अहमद खां का सितार वादन। 9:15 पर गांधी चर्चा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम। 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर आप सुन सकते हैं सबरस कार्यक्रम। 11:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जावेद अली खां का राग जौनपुरी में गायन। 12:10 का वक्त है महिला कार्यक्रम घर आंगन का। 1:10 पर एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म एक दूजे के लिए। 2:30 पर एक ही कलाकार, आज के कलाकार हैं असद भोपाली। 2:00 ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3री यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की

बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रातः 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं। यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आए। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस

0: प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
2: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
2: यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
3: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
2: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
1: आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंडित एल के पंडित का राग अहिर भैरव में गायन।